ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओ, आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 16वीं तिथि, तदनुसार 7 जुलाई 2026 सुबह के 5:58 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की ये प्रसारण सभा। इस सभा में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है।

आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में सुनिएगा हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री जयशंकर खाड़ी देशों की अपनी 4 राष्ट्र की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। यात्रा के अन्य चरण में कुवैत और ओमान भी शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूता उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। इन सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से जारी है। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा कर्नाटक में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आइए सर्वप्रथम सुन लेते हैं ये मातृवंदना।

समूह स्वर में ये मातृवंदना अभी आप सुन रहे थे। रचना थी वीरेंद्र मिश्रा की और अब सुनिए ये कबीर भजन।

ये भजन अभी आपने सुना, स्वर था लता मंगेशकर का, रचना थी संत कबीर दास की, और अब सुनिए ये भक्ति रचना।

पंडित भीमसेन जोशी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में ये कृष्ण भजन अभी आप सुन रहे थे। इसी के साथ भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम अर्चना अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 मेगा हर्ट्ज़ पर।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:25 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आपसे कुछ ही समय पश्चात प्रातः 6:30 पर सुनिएगा श्री रामचरित मानस का संगीतमय पाठ। गायन स्वर होगा शोभा जोशी का, भूले बिसरे गीत। ये कार्यक्रम सुनिएगा प्रातः 6:40 पर। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार होंगे सुबह 6:55 पर। प्रातः 7 सुनिए सुबह सुबह कृषि संकेत, आप सुन सकेंगे प्रातः 7:05 पर। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रादेशिक समाचार हम रिले करेंगे सुबह 7:10 पर। मन चाहे गीत, ये कार्यक्रम होगा प्रातः 7:20 पर। और सुबह 7:45 पर आप सुनिएगा संगीत सरिता।

समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे सुबह 8 बजे से। लोक संगीत का कार्यक्रम होगा प्रातः 8:15 पर। सुबह 8:30 पर सुनिएगा पॉडकास्ट विद आकाशवाणी सागर। विषय होगा उर्दू अदब और शायरी। गेस्ट शायर होंगे आदर्श दुबे, भेंटकर्ता दीपक निषाद। जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से हम रिले करेंगे सुबह 10 बजे से। सुबह 10:05 पर सुनिएगा शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रागिनी आपकी पसंद। यह कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सुबह 10:30 पर। सुबह 11 बजे सुनिएगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। प्रादेशिक समाचार होंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। समय होगा 2:10। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार हम रिले करेंगे 2:15 पर। इस घंटे की सुर्खियां आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से शाम 5 बजे से। युवा साथियों को संबोधित कार्यक्रम युववाणी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से आप सुनिएगा। समय होगा शाम के 5:02। शाम 5:30 पर सुनिएगा संगीत सरिता। सदाबहार गीत ये कार्यक्रम होगा शाम 6:30 पर। शाम 6:45 पर सुनिएगा लोक रंग। हिंदी में समाचार होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से शाम 7 बजे से। प्रादेशिक समाचार सुनिएगा आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। समय होगा शाम के 7:10। खेती गृहस्थी का कार्यक्रम किसानवाणी, समय याद रखिएगा शाम 7:20।

चित्रपट संगीत। यह कार्यक्रम होगा रात्रि 8 बजे से। रात्रि 8:20 पर सुनिएगा संगीत सरिता। समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे। समय होगा रात्रि के 8:45। मन चाहे गीत, यह कार्यक्रम आप सुनिएगा रात्रि 9 बजे से। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 MHz पर। सुबह के 6:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। गायन स्वर है शोभा जोशी का। हम आपको सुनवा रहे हैं इसकी 41वीं कड़ी।

भगवान शंकर के विवाह का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास ने इन शब्दों में किया है। जैसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करवाई। शिव ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया, देवताओं ने हर्ष ध्वनि की, श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और सर्वत्र आनंद छा गया। विदा के समय जामाता को अनेक उपहार देकर हिमाचल ने हाथ जोड़े, हे शिव, आप तो स्वयं पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूं। हिमाचल पत्नी मैना ने विनती की, उमा मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, आप इसके सभी अपराध क्षमा कीजिएगा। और बेटी के लिए मां के वचन थे, हे पार्वती, तुम सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। तत्पश्चात शिव पार्वती कैलाश पर्वत के लिए विदा हुए।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। गायन स्वर था शोभा जोशी का। अभी आपने सुनी इसकी 41वीं कड़ी। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:40 हुए हैं। अब सुनिए भूले बिसरे गीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये पहला गीत।

0: आज़ाद इस फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें थीं लता मंगेशकर और चितलकर की। गीत के बोल लिखे थे राजेंद्र किशन ने, संगीत था सी रामचंद्र का।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
3: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: अब बढ़ेगा आपका व्यापार, आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770432297।

0: मधुमती इस फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना। आवाज़ थी मुकेश की, गीत लिखा था शैलेंद्र ने, संगीतबद्ध किया था सलिल चौधरी ने।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आपके सवाल, आपके विचार, सुनिए सागर संवाद, जहां हर नागरिक बनता है अपने शहर की आवाज। आप भी बोलिए, क्योंकि आपकी बात ही बनेगी सागर की बात। सागर संवाद, अपनी बात आकाशवाणी के साथ। सुनिए सागर संवाद आकाशवाणी सागर से महीने के पहले और पांचवें शुक्रवार को रात्रि 8:30 बजे से।
0: और अब सुनिए कार्यक्रम में ये अगला और अंतिम गीत।

बरसात, इस फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना, स्वर था लता मंगेशकर का, शब्द रचना थी रमेश शास्त्री की और इस गीत को संगीतबद्ध किया था शंकर जयकिशन ने। इस गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:55 होने वाले हैं, थोड़ी देर में सुनिएगा संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए सुबह सुबह।

सुबह सुबह सुन रहे आप सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है, लेकिन केवल चाहने से कोई व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। उसे सफल होने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति केवल एक बार में ही सफल नहीं हो जाता, उसे लगातार एक तीर की भांति आगे बढ़ते रहना होगा। और जो व्यक्ति पूरी लगन से मेहनत करता है, वो व्यक्ति सफल जरूर होता है। एक बात तो पूरी तरह स्पष्ट है कि इस दुनिया में हर व्यक्ति जीतना चाहता है, लेकिन जीतना इतना आसान नहीं है। जीतने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। वो कीमत होती है अपने जीवन का एक लंबा समय और उस लंबे समय में किया हुआ अतः परिश्रम। हमें चाहे किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त करना हो, उसके लिए समय देना पड़ेगा। ये संसार भी ऐसे लोगों को ही याद रखता है जो इस दुनिया में सफल हुए हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्रों में विजय पताका फहराई है। एक लक्ष्य बनाकर उस दिशा में प्रयत्न करना पड़ता है, नियमित रूप से लगातार परिश्रम करना पड़ता है, तभी हम निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक रेस में दौड़ने वाले हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि फिनिशिंग लाइन कहाँ है, तो क्या आप जीत पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसीलिए आपको एक निश्चित गोल की आवश्यकता होती है। आपको ये जानना जरूरी है कि आप जीवन में किस दिशा में जा रहे हैं और इसकी फिनिशिंग लाइन कहाँ है। लक्ष्यहीन तरीके से काम करने के बजाय लक्ष्य तय करें और उसकी तरफ काम करना शुरू करें। हम कभी भी कोई कार्य करते हैं तो ये जरूर सोचते हैं कि अगर मैं ये काम नहीं कर पाया तो क्या होगा, जिसके डर से बहुत से लोग अपना कार्य अधूरा ही छोड़ देते हैं, जो किसी भी प्रकार से सही नहीं है। डर के भागना बहुत बड़ी मूर्खता है। कभी भी असफलता से डरे नहीं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करें। यकीन मानिए, आप अवश्य ही सफल होंगे। श्रोताओं, सुबह सुबह में आज इतना ही। आपका दिन शुभ हो।

बढ़ेगा आपका व्यापार। आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770432297। आपके सवाल, आपके विचार, सुनिए सागर संवाद, जहां हर नागरिक बनता है अपने शहर की आवाज। आप भी बोलिए, क्योंकि आपकी बात ही बनेगी सागर की बात। सागर संवाद, अपनी बात आकाशवाणी के साथ। सुनिए सागर संवाद आकाशवाणी सागर से महीने के पहले और पांचवें शुक्रवार को रात्रि 8:30 बजे से।

0: आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कृषि संकेत। विषय है मुनगा की उन्नत खेती से रोजगार एवं लाभ। विशेषज्ञ स्वर है आरडी चौबे का।
1: मुनगा का जो बीज का अंकुरण है 3 से लेके 20 दिन के बीच में हो जाता है। पौधे हमारे 4 से 6 इंच की हो जाएं तो उनको उठाकर हम पैकेट से सीधे जहां गड्ढे हमने तैयार किए हैं उन गड्ढों में रोपित करें। रोपित करने के बाद उनको चारों तरफ अच्छे से मिट्टी से दबा दें और कोशिश करें कि यदि आपके पास ड्रिप सिंचाई की व्यवस्था है तो उसमें ड्रिप सिंचाई की लाइन खिंचवा दें उसमें, और यदि पानी नहीं गिर रहा है बारिश के मौसम में भी तो पानी अवश्य दें। और कोशिश ये करें कि जैसे ही हमारा पौधा 2 से 3 फीट का होता है तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि 3 फीट ऊपर होने के साथ ही उसको किसी तेज धार वाले कैंची से या उसके उसको जो मेन तना ऊपर जा रहा है उसको काट दें। उससे क्या होगा कि जो पत्ते में अच्छी ब्रांचिंग होगी और पौधा घना होगा। घना होने से क्या होगा कि जब ब्रांचिंग अच्छी होगी तो फल भी अच्छे आएंगे। तो प्रथम साल तो उसका लगभग 6 से 8 महीने में फलन शुरू होता है और साल में 2 बार हम इसकी फसल ले सकते हैं। एक पौधे से लगभग जब उत्पादन 2 साल बाद शुरू होता है अच्छा, तो प्रति

0: पौधे से 200 से 300 किलो फलियां हम ले सकते हैं प्रति पौधे के हिसाब से, और यदि हम 5-6 साल बाद अच्छा का उत्पादन लेना चाहें तो 500 किलोग्राम प्रति पौधे तक फलियां आ सकती हैं। तो ये मान के चलिए कि जो हमारी आर्थिक यदि उसका विश्लेषण करें हम, तो लगभग 4 से 6 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम किसान भाई हमारे इससे उत्पादन प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें खास बात ये भी है कि इसके पौधे में एक खास बात यह है कि ये इसकी पत्तियां भी काम आती हैं, इसके फल भी काम आते हैं, इसकी जड़ भी काम आती है, इसके फूल भी काम आते हैं और इसके तने भी काम आते हैं। तो ये ऐसा पौधा है कि जिसके हर अंग उपयोगी है। तो जैसे पत्तियों की जहाँ तक बात करें, जिन किसान भाइयों को पत्तियों का उपयोग करके खेती करना है कि पत्तियाँ बेचना है उन्हें, तो 70 से 80 रुपये किलो पत्तियाँ उनकी सुखाने के बाद बिक जाती हैं। बसरते सुखाने में हमें ये ध्यान रखना है कि दूसरे पौधों की पत्तियाँ उसमें मिक्स ना हो जाएं और उसमें गंदगी या धूल आदि ना हो। और यदि आप चाहो कि हम खेती भी करें और उसकी प्रोसेस भी करें, तो पल्पलाइजर आते हैं मुनगा के पाउडर बनाने के लिए, उन पल्पलाइजर को घर पे लगा के आप उससे पाउडर तैयार करके बेच सकते हैं। और पाउडर की जो बिक्री हो रही है वर्तमान में, उसकी काफ़ी डिमांड है। USA या अरब कंट्रीज में ऐसे मुनगे का पाउडर लगभग 800 रुपये से 1000 रुपये किलो तक बिक्री हो रहा है। तो यदि चाहते हैं कि हम घर के सदस्यों को रोजगार दें, तो वो मुनगा की खेती करके और खुद भी उगाएं और फलियां भी उगाएं, पत्तियां भी उगाएं, जड़ फूल सब उसको बिक्रय करके आप अपने परिवार की आमदनी बढ़ा सकते हैं, किसान भाई अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं और लगभग 10 से 12 साल तक आप ये आमदनी लगातार प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपको लगता है कि नहीं हमें इस फसल को बदल देना है, तो आप उसको अलग करके दूसरी फसल फिर लगा सकते हैं। और इंटरक्रॉपिंग के रूप में जहां बीच में जो जगह है 3 मीटर की बताई हमने आपको, इसके बीच में हम पपीता लगा दो आप, या किसी प्रकार की सब्जियां लगाना चाहते हैं। अभी जैसे मुनगा के साथ साथ आप हल्दी की खेती कर दीजिए, हल्दी भी बढ़िया आराम से इसमें हो जाती है, क्योंकि हल्दी के पौधे ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, उनको छाया की आवश्यकता होती है, तो मुनगा की छाया भी पर्याप्त है। तो कहने का आशा है एक पौधा अनेक गुणों के साथ, इसमें विटामिन सी भी होता है, प्रोटीन भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, दूध से 7 गुना प्रोटीन पाया जाता है, मतलब स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखें। और इसकी आजकल बहुत सारी संस्थाएं इसकी बिक्री करके इसके पराठे बना रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी प्रति सप्ताह हफ्ते में 2 बार मुनगा के पराठों का उपयोग कर रहे हैं, इसके पापड़ बनाए जा रहे हैं, इसकी चाय बनाई जाती है, इसका पाउडर तैयार किया जाता है, इसका अचार बनाया जाता है, इसकी बड़ी बनाई जाती है। तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो इससे हम उपयोग ना कर सकें। और एक और हमारे मध्य प्रदेश शासन ने कुछ जिलों को चिन्हित किया है जहाँ कुपोषित जो बच्चे हैं उनको मुनगे का सूप बना के या मुनगे का लिक्विड बना के उन पर प्रयोग किया जा रहा है। यदि वो प्रयोग सफल रहता है तो पूरे मध्य प्रदेश में आगामी वर्षों में मुनगा के जो पेय पदार्थ हैं उनके बारे में काफ़ी अच्छा काम होगा।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कृषि संकेत। विषय था मुनगा की उन्नत खेती से रोजगार एवं लाभ। विशेषज्ञ स्वर था RD चौबे का। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 MHz पर। सुबह के 7:10 होने वाले हैं। थोड़ी देर में सुनिएगा प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को मिलेगी मजबूती। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉ.

0: मोहन यादव ने कहा, उन्नत खेती और पशुपालन से बढ़ाएंगे किसानों की आमदनी। और मौसम विभाग के अनुसार आज 31 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। इससे भारत और इंडोनेशिया अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए तैयार है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा से समुद्री और आर्थिक संबंध सुदृढ़ होंगे और उभरते क्षेत्रों में सहयोग गहरा होगा। राजदूत ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के संबंध सकारात्मक दिशा में अग्रसर हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा इस प्रवृत्ति को और बल देगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की पहल की घोषणा कर सकते हैं। इनमें रक्षा और समुद्री सुरक्षा, व्यापार और निवेश, खाद्य सुरक्षा और उर्वरक सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिज, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। कल नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि वे आगामी रथ यात्रा के लिए रेलवे की तैयारियों की समीक्षा करेंगे ताकि सुचारू संचालन और श्रद्धालुओं की निर्बाध यात्रा सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन पर 30,000 यात्रियों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाएगी। श्री वैष्णव ने यह भी बताया कि रेलवे इस साल ओणम उत्सव के दौरान 100 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाएगा।
1: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओणम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: यह प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इस नेटवर्क के माध्यम से रोगी संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश के सभी मरीजों और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किसानों की आमदनी केवल एक फसल से नहीं बल्कि उन्नत खेती और पशुपालन से बढ़ेगी। इस बात को ध्यान में रखकर सरकार खेती के साथ साथ पशुपालन को विशेष बढ़ावा दे रही है। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कल ग्वालियर में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्नत कृषि पर हुई संभागीय कार्यशाला में मौजूद किसानों से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कार्यशाला में जैविक और प्राकृतिक खेती पर किसानों के अनुभव सुने। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर है। हम अगले 5 वर्षों में मध्य प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 राज्य बनाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने कल भोपाल में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने दतिया विधानसभा उपचुनाव के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। नामांकन का कार्य शुरू हो चुका है। 13 जुलाई नाम निर्देशन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी। 14 जुलाई को नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। 16 जुलाई को नाम निर्देशन पत्र की वापसी की तारीख है। 30 जुलाई को मतदान और 3 अगस्त को मतगणना होगी। उन्होंने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा है कि आदर्श आचार संहिता का पूरी तरह से पालन करें। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा से कल मध्य प्रदेश संवर्ग 2025 बैच के चयनित भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने पुलिस मुख्यालय में सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर मकवाणा ने कहा कि प्रशिक्षण पूरी तन्मयता से प्राप्त करें ताकि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का उत्कृष्ट क्रियान्वयन कर सकें। उन्होंने उन्होंने नौ चयनित अधिकारियों से कहा कि प्रशासनिक सेवा केवल एक पद नहीं बल्कि जनता की सेवा का दायित्व है। उन्होंने अधिकारियों से ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और जन सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में नए आपराधिक कानून, साइबर सुरक्षा, साइबर फ्रॉड, नारकोटिक्स और नशा मुक्ति जैसे विषय प्रशासनिक अधिकारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा पांचवी और आठवीं की पुनः परीक्षा का परिणाम आज दोपहर 2 बजे घोषित किया जाएगा। विद्यार्थी और अभिभावक राज्य शिक्षा केंद्र के वेब पोर्टल www.rskmp.in पर परिणाम देख सकेंगे। इसके साथ ही इसी पोर्टल पर शिक्षक, संस्था प्रमुख अपनी शाला का विद्यार्थी वार परिणाम भी देख सकेंगे। राज्य शिक्षा केंद्र ने संचालित शासकीय छात्रावासों में रिक्त स्थानों पर प्रवेश के लिए विद्यार्थी अंतिम चरण में 20 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। इस वर्ष से प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन की गई है। इसके लिए विभाग ने एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से विशेष हॉस्टल प्रबंधन प्रणाली विकसित की है। प्रदेश में भारी बारिश का सिस्टम सक्रिय है, जिसके चलते पिछले 6 दिनों से राज्य के अधिकांश जिलों में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज 31 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राज्य में अब तक सामान्य से 1% बारिश कम हुई है, जबकि जून में यह 33% कम थी। अब तक भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में सामान्य से अधिक वर्षा हो रही है। देवास में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बारिश हुई है। जकार्ता में अंडर 23 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के दूसरे दिन आज 50 किलोग्राम भार वर्ग के एशियाई चैंपियन विश्वनाथ सुरेश ने उज्बेकिस्तान के अमीरबेक इस्माइलोव को हराकर भारत का शानदार प्रदर्शन जारी रखा। पुरुष वर्ग के 55 किलोग्राम भार वर्ग में गंगा ने मंगोलिया के अमगाला नबातर बुलगुंग को 5-0 से हराया। वहीं महिलाओं के 51 किलोग्राम भार वर्ग में तनु ने कोरिया की रेंग्योंग किम को 5-0 से पराजित किया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में महारानी लक्ष्मीबाई विद्यालय में कल विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। पन्ना जिले में बीती रात हुई लगातार बारिश के चलते केन, मिनासन और पत्नी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। झाबुआ के शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में एकलव्य योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी हेतु 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रारंभ हो गई है। सतना जिले में पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा लगभग 100 स्ट्रीट डॉग्स का एंटी रेबीज टीकाकरण किया गया। मंडला जिले की घोघरी तहसील में कल आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:20 हुए हैं। लीजिए आप सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये पहला फरमाइशी गीत।

मुहरा, इस फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें थीं अलका याग्निक और उदित नारायण की। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत था वीजू शाह का। फरमाइश थी आप सभी की। जालंधर से संदीप मक्कड़, ज्योति, मन्नत, भरत, कमल और आपके सभी साथी। गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी, प्रांजल, यहीं से ओम प्रकाश, उषा, अमित कुमार, हैप्पी और आपके सभी साथी। सतना से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही और आपके परिवार के सभी सदस्य। राजस्थान से महेंद्र छीपा, कपिल, ईशान, पूजा और आपके साथी। जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, करमजीत कौर और आपके सभी साथी। बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता, साक्षी, जयश्री, मेहत्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय और आपके सभी साथी। और अब सुनिए कार्यक्रम में ये फरमाइशी गीत।

गुरु, इस फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना। आवाज़ थी श्रेया घोषाल की, संगीत था AR रहमान का, पसंदगी थी आप सभी की। जाफराबाद से सुधाकर राजे, प्रशांत राजे, संचित, प्रथमेश प्रणाली, सर्वद सानवी, हर्षदा देशमुख और आपके सभी साथी। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, जगदीश जौहरी और आपके सभी मित्रगण। खंडवा से ममता मार्कंडीय, संजय, किट्टू और आपके सभी साथी। भिलाई छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुमार, प्रमिला, आसमा, दीपक, अनुश्री। बिजनौर से सितारा बेगम, नसरीन, रोजी, बिट्टू, साजदा, हिना और आपके सभी साथी। छत्तीसगढ़ से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार और आपके सभी साथी। बुलंदशहर से मोहम्मद सईद, निगहत, शहनवाज, फरदीन और अबान। और अब सुनिए कार्यक्रम में ये गीत।

0: तेजाब, इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ें थीं अनुराधा पौडवाल और अमित कुमार की। गीत लिखा था जावेद अख्तर ने, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। पसंदगी थी आप सभी की। उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति, कार्तिक आर्यन और आपके सभी साथी। मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी, आर्यन, कृष्णा, पीहू और आपके सभी साथी। बठिंडा पंजाब से करणवीर, प्रेम सिंह, मंजीत, करणवीर, दीपेंद्र, कुलदीप, सीमू, एकम, दमन, अभिजोत और आपके सभी साथी। मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप, साहिल और आपके सभी साथी। दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से फरमान, सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस। पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस, निखिल, यश और आपके सभी साथी। महाराष्ट्र से गंगाधर, येमकर, प्रमोद, प्रदीप और आपके सभी साथी।
1: रितेश, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है?
2: डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा शायद, लेकिन मुझे डर है कि हॉस्पिटल का ब्लड सेफ है या।
1: अगर लाइसेंस हॉस्पिटल या लाइसेंस ब्लड बैंक है तो सेफ ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड स्टोर करने की अथॉरिटी सिर्फ लाइसेंस ब्लड बैंक और लाइसेंस हॉस्पिटल के पास ही है। और ये भी सुनिश्चित कर लेना कि ब्लड HIV टेस्टेड है या नहीं, क्योंकि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से HIV एड्स जैसे कई बीमारियों की संक्रमण का भी डर रहता है।
2: अच्छा, अब तो मैं लाइसेंस ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से ही ब्लड लूंगा।
1: हाँ, और इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 1097 पर कॉल कर लेना।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: मन चाहे गीत, ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 MHz पर। सुबह के 7:45 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए संगीत सरिता।

0: ये गज़ल अभी आपने सुनी उस्ताद अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ों में। कलाम था डॉक्टर हसरत जयपुरी का।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: बढ़ेगा आपका व्यापार। आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770432297।
1: और अब सुनिए कार्यक्रम में ये गीत।

कैलाश खेर की आवाज़ में ये गीत अभी आप सुन रहे थे, और इसी गीत के साथ कार्यक्रम संगीत सरिता अब संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 MHz पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में सुनिएगा समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। मांगे पूरी नहीं होने पर 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की दी चेतावनी। भारत ने अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण सहित कुल 20 पदक जीते। और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की जाएगी। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान भी करेंगे।
3: प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10:30 बजे औपचारिक स्वागत समारोह से होगी। इसके बाद अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के संसद परिसर में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे। वे एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, जहां श्री मोदी प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान करने के लिए चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। इस साझेदारी की स्थापना उनकी 2018 की यात्रा के दौरान हुई थी। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
2: इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी।
4: India and Indonesia are very close and strategic partners.
5: भारत और इंडोनेशिया बेहद करीबी और रणनीतिक साझेदार हैं। निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंडोनेशिया के आचे से मात्र 160 किलोमीटर दूर है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो की बेहद सफल यात्रा के बाद हमारे संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा इसे और भी मजबूती देगी।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर 4 खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। विदेश मंत्री ने शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन में प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। डॉक्टर जयशंकर कुवैत और ओमान भी जाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बनाया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता विभाग ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
6: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
2: मंत्रालय की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि 30 क्षेत्रों में फैली 85 लाख से अधिक सहकारी समितियों और 32 करोड़ सदस्यों को सम्मिलित करने वाला एक एकीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाया गया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स की भूमिका का विस्तार किया है, इससे वे साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से 300 से अधिक सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।
6: आज पूरे देश के पैक्स एक ही बायलॉज के तहत काम कर रहे हैं। मॉडल बायलॉज को स्वीकार कर लिया, 300 गतिविधियों को 55,000 पैक्स के माध्यम से हम सीएससी की सेवाएं दे रहे हैं।

0: 15 आउटलेट किया है और 300 पैक्स गैस के वितरण में लग गए हैं और लगभग 150 पैक्स जल आपूर्ति योजना का मेंटेनेंस का भी काम कर रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पीओके में बढ़ती राजनीतिक उथल-पुथल के बीच जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने एक औपचारिक घोषणा में कहा कि उनका मौजूदा धरना प्रदर्शन तब तक अनिश्चित काल तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी सभी मांगें पूरी नहीं की जातीं। कमेटी ने पीओके के निवासियों और कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से 9 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया है। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में अपने 6वें स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी F-38 का जलावतरण करेगी। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा आंतरिक रूप से डिजाइन किया गया है। इस जहाज का नाम पूर्वी घाट की भव्य महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह जहाज लचीलेपन, शक्ति और अटूट संकल्प का प्रतीक है। महेंद्रगिरी जहाज अब एक विशिष्ट विरासत बनने और भारत के समुद्री इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ने के लिए तैयार है। यह जहाज आधुनिक संयुक्त डीजल या गैस प्रणोदन प्रणाली से संचालित है। यह इसे समुद्री अभियानों के पूरे स्पेक्ट्रम में असाधारण मजबूती के साथ उच्च गति संचालन करने में सक्षम बनाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। यह मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा। कार्यशाला का उद्देश्य देश भर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना और उन्हें जीवंत ज्ञान संस्थानों, सांस्कृतिक संसाधन केंद्रों और जनजातीय विकास के लिए नीतिगत सहायता केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक कार्यसूची विकसित करना है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: जम्मू कश्मीर सरकार ने जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि CDF योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विधायक अपने CDF से 20 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध करा सकेगा। ये सहायता गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और अन्य अधिसूचित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मरीजों को दी जाएंगी। और अब खेल खबरें। थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर-20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 20 पदक जीते हैं। महिला वर्ग में भारत 184 अंक के साथ उपविजेता रहा, जबकि पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में भारतीय टीम 152 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम श्रृंखला में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। और बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की। फुटबॉल में बेल्जियम ने सिएटल में चल रहे फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। बेल्जियम अब शुक्रवार को लॉस एंजल्स स्टेडियम में क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना करेगा। इससे पहले स्पेन ने कल रात डलास स्टेडियम में राउंड ऑफ 16 मुकाबले में पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़

0: पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद विशाल। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के महासचिव और सदस्य के इस्तीफे आज के सभी अखबारों की पहली बड़ी खबर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, चंपत राय और अनिल मिश्र को कामकाज से विश्राम, इस्तीफे मंजूर। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, राम ट्रस्ट कृष्ण भरोसे, पूर्व IFS अधिकारी कृष्ण मोहन बनाए गए अंतरिम महासचिव। दैनिक जागरण ने SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र दोषी, चंपत राय का नाम गायब। घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे, भ्रष्टाचारियों से वसूलेंगे पाई पाई, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान अमर उजाला में है। कोलकाता में एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा, घुसपैठियों की पहचान कर वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने हाफिज सईद को बनाया आरोपी। देशबंधु के अनुसार पूरक आरोप पत्र में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के सरगना पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आतंकी साजिश रचने का आरोप। नीट PG परीक्षा के पैटर्न में फेरबदल की खबर हिंदुस्तान में है। 30 अगस्त को कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित होगी परीक्षा। अब 200 की जगह 180 सवाल पूछे जाएंगे। बार बार यातायात नियमों के उल्लंघन पर निलंबित होगा ड्राइविंग लाइसेंस। दैनिक जागरण के अनुसार बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय की मोटर वाहन कानून में बदलाव की तैयारी।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8:15 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए लोक संगीत। आइए सबसे पहले सुनते हैं राजू पटेल और धनी राम सेन से ये गणेश वंदना।

और अब सुनिए कार्यक्रम में ये लोक भजन अजुद्दी दास कबीरपंथी से।

0: इस लोक भजन के साथ लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए पॉडकास्ट विद आकाशवाणी सागर। विषय है उर्दू अदब और शायरी। गेस्ट हैं शायर आदर्श दुबे, भेंट करता है दीपक निषाद। तो आइए सुनते हैं पॉडकास्ट विद आकाशवाणी सागर। विषय है उर्दू अदब और शायरी।
1: नमस्कार, पॉडकास्ट विद आकाशवाणी सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद, और एक बेहद खास शख्सियत से आपकी हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं। आप उर्दू और हिंदी में गज़लें लिखते हैं, उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं की समान रूप से आप सेवा कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। इसके अलावा आप हिंदुस्तान के गज़ल के मानचित्र पे उभरते हुए एक सितारे हैं, और सागर के लिए खास बात यह है कि पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र से दुबई में मुशायरा पढ़ने वाले आप इकलौती शख्सियत हैं। आप हैं आदर्श दुबे जी, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने इस पॉडकास्ट में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: आदर्श जी, आपसे हम बातचीत की शुरुआत करना चाहेंगे, और शुरुआत सबसे शुरू से करना चाहेंगे कि आपकी इस साहित्य की, इस यात्रा की, गज़ल की यात्रा की शुरुआत कैसी हुई, शुरुआती रुझान आपका इस क्षेत्र में, इस विधा की तरफ कैसे हुआ।
2: बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आकाशवाणी के सागर केंद्र का और तमाम सुनने वालों का कि इतना खूबसूरत ये प्रोग्राम और उसका मैं आज हिस्सा हूँ। तो सबसे पहले आप सबका शुक्रिया। आपका सवाल था कि शुरुआत कैसे हुई, तो इसका जवाब मैं ठीक ठीक इसलिए भी नहीं दे पाता हूँ। अक्सर ये सवाल आता है कि किसी परिंदे से आप अगर ये पूछें कि उसने कब चहचहाना सीखा, तो वो नहीं बता सकता। किसी बच्चे से अगर आप ये पूछें कि उसने पहली बार कब अम्मा या माँ या पापा कहा, तो वो नहीं बता सकता। कुदरत कई बार इंतखाब आपका करती

0: करती है, नेचर इंतखाब आपका करता है, और वो किस काम के लिए करता है ये कुदरत को पता होता है। चीज़ें होते होते होते चली जाती हैं। तो इसी तरह ये सिलसिला कब शुरू हुआ इसका तो ठीक ठीक जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ शुरू से ही जब मैं 5th या 6th क्लास में था तो लाइब्रेरी में बैठने का मुझे बहुत शौक़ था। बहुत सारे मेरे स्कूल में जो बच्चे होते थे वो क्रिकेट खेलते थे या फुटबॉल या ज़ीरो पीरियड या गेम्स पीरियड में जाते थे, तो मैं वैसा नहीं था कि मैं खेल में आगे हो जाऊं या कोई फिज़िकल एक्टिविटीज़ में हूं, मैं लाइब्रेरी में बैठ जाता था, पता नहीं होता था पढ़ क्या रहा हूं। तो पढ़ते पढ़ते मुझे आज भी याद है कि अहमद फराज़ की एक किताब थी, अहमद फराज़ साहब बहुत बड़े पूरी दुनिया में जिनका नाम है, मेरे हाथ में एक किताब लगी खाना बदोश, और ये वो किताब है जब मेरी गज़ल से मुलाकात हुई। तो खाना बदोश मैंने पढ़ना शुरू कर दी, मुझे पता नहीं कि ये गज़लें क्या होती हैं क्या नहीं होती, 5th 6th में, और इस तरह इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा जागना शुरू हुआ। और बहुत सारे गुलूकारों को, गायकों को, और सिनेमा के ज़रिए शायरी मुझ तक आती रही, और ऐसे मेरी शायरी से जो मेरा इश्क है वो बढ़ता गया। फिर धीरे धीरे जब आप किसी से इश्क करने लगते हैं तो वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना कि पूरी कायनात आपको उससे मिलाने के लिए कोशिशों में लग जाती है, तो उसी तरह हुआ धीरे धीरे। फिर शहर के अदीब, शहर के शायर, और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ, अपने आप को मानता हूँ कि मुझे पूरे शहर ने बड़ा प्यार दिया, और आज तक भी पूरा शहर बड़ा प्यार करता है और मुझे सर आँखों पर बिठाता है, छोटे बच्चे की तरह लाड़ करता है। तो इस वजह से मैं कुछ सीख पाया, और तमाम सीनियर्स का, तमाम दोस्तों का जिनके साथ, जिनके पीछे पीछे मैं चीज़ें सीखता रहा और आज तक सीखना जारी है।
1: जी, सीखने की प्रक्रिया होती है, लगातार जारी रहती है, लगातार आप सीख भी रहे हैं, और बहुत खास बात आपने बताया कि किताबों की सोहबत में रहना बहुत ज़रूरी है,
0: ऐसी है,
1: वो आपको बनाती हैं, आपका निर्माण करती हैं। एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे, शुरुआत का तो आपने बताया कि कैसे आपने शुरुआत की, लेकिन पहला मंच,
0: जी जी,
1: वो ज़रूर याद रहता है किसी व्यक्ति को, चाहे वो स्कूल का मंच हो, पहला बड़ा मंच हो, रेडियो या टेलीविज़न का कोई स्टूडियो हो, या किसी मुशायरे में, किसी काव्य सम्मेलन में, काव्य गोष्ठी में आपने पढ़ी हो, उसकी कुछ यादें आप बताना चाहें।
0: बहुत अच्छा सवाल है, और आप मुझे पूरी पुरानी यादों में लेकर चले गए, हालांकि ये 8-9-10 साल पुरानी बात होगी, मैं 16-17 साल की उम्र मेरी होगी उस वक्त। अशोक मिजाज बद्र साहब हमारे शहर के बहुत अच्छे शायर हैं, मैं उनके पास था और उन्हें फ़ोन आता है कि बुरहानपुर में एक मुशायरा है जहाँ पर उन्हें आमंत्रित किया जाता है। मैं उनके पास बैठा था, तो पता नहीं उनके जहन में क्या आया, बातों बातों में मुझसे कहते हैं कि आदर्श तुम फ्री हो तो तुम चलो। तब तक मैं 2-4 गज़लें मैं कहता था, और गज़लें मेरे पास 2-4 ही थीं, और वो गज़लें ऐसी थी जो नौसिखिया जिस तरह से काम करता है, मतलब तुकबंदी भी कह लो या जो भी था, तो उतावलेपन में कह लो या उत्साह में कह लो या बड़ा वो था कि मैंने कहा सर मैं चलूँगा, और उसका मुझे कोई लिफाफा नहीं मिलना था। मैंने मिजाज साहब का बैग उठाया और उनके साथ ट्रेन में बैठा और बुरहानपुर पहुँच गया। उस मुशायरे में राहत इंदौरी साहब भी थे, उस मुशायरे में ताहिर फराज साहब थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, और इमरान प्रताप गढ़ी एक बड़ा नाम उस मुशायरे में था जो रात में 12 बजे के बाद उस मुशायरे में आए थे, क्योंकि भीड़ अगर वो आ जाती तो फिर किसी को नहीं सुनती, ऐसा था। तो वहाँ पे सर मैं आपको एक बात बताऊँ जिसकी गवाह अशोक मिजाज बद्र साहब खुद हैं, कि मेरे पैर कांपने लगे, पहली बार मैंने 50,000 भीड़ देखी, पूरा मैदान, टोपी लगाए हुए लोग और सड़कों पर बैठे हैं, मतलब एक ऐसा माहौल जिसका तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता था कि शायरी मतलब ऐसे आप पढ़ना होगी। और जब मेरा नाम पुकारा जाने वाला था, वासिफ यार साहब निज़ामत कर रहे थे बुरहानपुर के, मैंने मिजाज साहब का हाथ पकड़ा, मैंने कहा सर मेरा नाम कटवा दीजिए, तो वो हंसने लगे, कहने लगे इतने दूर आए हो आप, मुशायरा तो पढ़ लो। मैंने कहा सर चेहरा लाल पड़ गया है, कुछ नहीं है, मुझे मतलब पैर कांप रहे हैं मेरे, मुशायरा नहीं पढ़ना है। तो फिर भी मिजाज साहब ने मेरा हौसला बढ़ाया, वहाँ मैं गया। अब हाल क्या हुआ वो तो अब ऊपर वाला जानता है, और उस वक्त जो वहाँ लोग थे वो जानते हैं कि बहुत बुरी तरह हूट हुआ, लेकिन उस मुशायरे ने मुझे ये ज़रूर बता दिया कि स्टेज पर किस तरह से परफॉर्म करना होता है, किस तरह की शायरी, पहली बार मैंने इतने सारे लोगों को एक साथ सुना, मुझे ये पता लगा कि किस तरह की शायरी मैं करता हूँ और किस तरह की शायरी और लोग करते हैं और किस तरह की शायरी पब्लिक सुनती है। तो उस मुशायरे से जितनी चीज़ें मैंने सीखी आज तक किसी मुशायरे से नहीं सीखी, वो पहला मुशायरा बुरहानपुर का था, मुमताज़ महल का।
1: मुशायरे में आपने पढ़ा और बहुत अच्छी यादें, बुरी यादें, दोनों यादें समेट करके आप आगे बढ़े और बहुत कुछ सीखने को मिला। निश्चित रूप से आपका जो पहला स्टेज का एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, बहुत काम का होता है, बहुत सिखाता है आपको। हम बात करना चाहेंगे आपकी राइटिंग की जो पूरी यात्रा है, लेखन की ये जो पूरी यात्रा है, इसकी शुरुआत की बात करना चाहेंगे। कहाँ वो बीज प्रस्फुटित हुआ आपके मन में, आपके दिल में, कि मैं भी एक लेखक हूँ या लेखक बन सकता हूँ, मेरे भीतर भी एक लेखक वास करता है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई?
0: इसकी शुरुआत सर सच बताऊँ तो दिल टूटने से हुई। पहली मोहब्बत जब आदमी को होती है तो वो पहली मोहब्बत नाकामयाब भी हो जाती है तब भी आपको कुछ ना कुछ दे के चली जाती है। ये आर्ट का एक, सर मैं आपको एक बात बताऊँ, आर्ट जो है ना सर, इसके लिए एक चिंगारी की आवश्यकता होती है, ये बारूद है। किसी भी आर्टिस्ट से आप पूछें, अगर वो चिंगारी उसे सही वक्त पर मिल जाती है तो वो फूट जाता है, जो प्रस्फुटित हो जाता है, वो बॉम्ब जो है ना, वो एटॉमिक एनर्जी
1: ज्वाला बन जाता,
0: ज्वाला बन जाती है। तो वो किसी भी तरह हो सकती है, वो कोई हादसा हो सकता है, माँ बाप का बिछड़ना हो सकता है, बहुत सारे शायरों के साथ ये हुआ, किसी अपने का बिछड़ना हो सकता है, जो एकाकी जीवन की शुरुआत हो जाती है, जो एकांत आपको मिलता है, किसी भी तरह का मानसिक एकांत, वो आपको किसी ना किसी कला में आपको आगे बढ़ा देता है। तो ये हुआ मोहब्बत में नाकामयाब होने के बाद। लेकिन उस वक्त ठीक है, मोहब्बत में आप नाकामयाब हुए हैं तो आप उस तरह का काम कर रहे हैं, गज़लें लिख रहे हैं, मतलब बेवफाई पे गज़लें लिख रहे हैं मोहब्बत पे, लेकिन जब आप गज़लों में घुस जाते हैं, गज़लों के अंदर जाते हैं, तब आपको पता लगता है कि इससे आगे दुनिया है ना, मोहब्बत के आगे भी बहुत कुछ है। तो तब जाके धीरे धीरे यात्रा शुरू हुई, और फिर लोगों को पढ़ना, लोगों के बारे में जानना, और फिर अनवरत ये यात्रा मतलब चलती रहती है, अंदर भी और बाहर भी, तो वो चल रही है।
1: इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, लेखक पैदा होता है, जन्म लेता है, या लेखक बनता है?
0: बहुत अच्छा सवाल है आपका, ये बहुत गहरा सवाल है। इस सवाल के बहुत सारे जवाब आपको मिलेंगे और हर जवाब ठीक है। एक शेर है वो किसी का कि इत्तफाक अपनी जगह, खुशकिस्मती अपनी जगह, ये शेर है किसी शायर का, मुझे याद आ गया। इत्तफाक अपनी जगह, खुशकिस्मती अपनी जगह, खुद बनाता है जहां मैं आदमी अपनी जगह। इत्तफाक अपनी जगह, खुशकिस्मती अपनी जगह, खुद बनाता है जहां मैं आदमी अपनी जगह। कुछ ना कुछ सच्चाई होती है छुपी हर बात में, कहने वाले ठीक कहते हैं सभी अपनी जगह। तो इस सवाल में जितने जवाब मिलेंगे वो सारे सही हैं। तो आपका जो सवाल है कि शायर पैदा होता है या बनता है, तो सिर्फ मैं शायर नहीं कहूँगा यहाँ, मैं पूरे आर्टिस्ट को यहाँ पर, पूरी आर्टिस्ट जो कम्युनिटी है उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। कोई भी आर्ट आप सीख नहीं सकते, वो आर्ट आपके अंदर होता है, कोई मिलता है, जिस तरह चिंगारी मैंने आपको बताया, स्पार्क अगर आपके अंदर होगा तो उसको आप शाइन कर सकते हैं, शाइन करने वाले, पॉलिश करने वाले लोग आपको मिल जाते हैं। और दूसरी चीज़, शायरी को कहा जाता है मदर ऑफ आर्ट, कविता जो है वो जननी है, साहित्य जो है जननी है सारी कलाओं की,
1: इतनी
0: कलाएँ, मदर ऑफ आर्ट पोइट्री है वो, इसलिए भी है कि विदाउट पोइट्री, विदाउट वर्ड्स आप थिएटर में कुछ नहीं कर सकते, विदाउट वर्ड्स आप सिंगिंग में कुछ नहीं कर सकते, विदाउट वर्ड्स आप डांसिंग में कुछ नहीं कर सकते, म्यूट डांसिंग हो जाएगी, शब्द चाहिए ही होगा, बेस है आपका। तो मदर ऑफ आर्ट, इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि शायर मदर ऑफ आर्ट है शायरी, कि आपको पेंटिंग की स्कूल मिल जाएंगी, आपको डांस सिखाने वाले स्कूल मिल जाएंगे, आपको ड्राइंग सिखाने वाले स्कूल मिल जाएंगे, आपको गाना सिखाने वाले हर चीज़, थिएटर के लोग मिल जाएंगे, NHD, MPNHD सब कुछ है, लेकिन शायरी का कोई स्कूल आपको नहीं मिलेगा। उसका कारण यही है कि शायर बनाया ही नहीं जा सकता।
1: शायरी का स्कूल होना चाहिए?
0: सर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, शायरी सर कलंदराना काम है, फकीरों का काम है, फकीर बनना कौन चाहता है, शायर बनना कोई नहीं चाहता, शायर बन जाते हैं, और जो पैदा होते हैं ना वही शायर होते हैं, वो ज़िंदगी भर शायर रहते हैं, उन्हें कोई स्टेज मिले, कोई मंच मिले, कोई उन्हें सुने, ये कोई ज़रूरी नहीं है, शायर अंदर होता है। और बड़े बड़े लोग हैं जो बहुत सारे स्टेज परफॉर्म करते हैं, हमारे साथ पढ़ते हैं, लेकिन वो शायर नहीं होते। शायर होना फकीर होना है, साहित्य जिसमें सबका हित है, साहित्य तो सबका हित सोचने वाला, सबका हित करने वाला, सबके हित के बारे में लिखने वाला जो आदमी होता है वो साहित्यकार होता है।
1: शब्द से यात्रा शुरू होती है, आपने बताया कि सारे स्कूल्स हो सकते हैं, सारे ट्रेनिंग सेंटर्स हो सकते हैं, लेकिन गज़ल के लिए, शायरी के लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर, स्कूल नहीं हो सकता है, क्योंकि खुद के भीतर से ये यात्रा प्रारंभ होती है। शब्द के लिए भाषा का चुनाव करना अति महत्वपूर्ण है, तो आपने भाषा के चुनाव के स्तर पर क्या मापदंड रखा? आपके सामने हिंदी भी खड़ी है, आपके सामने उर्दू भी खड़ी है।
0: सर मिर्ज़ा गालिब साहब जब शायरी कर रहे थे उस समय बहुत बड़े शायर थे इब्राहिम ज़ौक, जो बादशाह के गुरु भी थे, उस्ताद थे बहादुर शाह जफ़र के। और आप मानेंगे कि बहादुर शाह जफ़र जो बादशाह का उस्ताद है, उसका औरा क्या होगा, उसका मतलब जब वो चलते थे तो हाथी पे चलते थे, शायर थे। और एक तरफ मिर्ज़ा गालिब थे जो फ़कीर की तरह सड़कों पर अपना काम कर रहे थे, शेर सुना रहे थे। तो एक बार बहादुर शाह जफ़र साहब गुजर रहे थे तो मिर्ज़ा गालिब साहब गली में बैठे थे कुछ दोस्तों के साथ आम खा रहे थे, तो बहादुर शाह जफर साहब के जब उस्ताद इब्राहिम जो गुजरे

0: तो पता नहीं क्या गालिब साहब तो मूडी आदमी थे, तो उन्होंने एक ताना मार दिया कि बना है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता। एक जुमला बोल दिया, ये एक जुमला था कि राजा का नौकर बना हुआ है और इतरा के फिर रहा है, ये कोई मतलब शायरी है ये जो कर रहे हो आप? तो उन्हें वो ताना चुभ गया, उन्होंने बादशाह से शिकायत की कि एक शायर है मिर्ज़ा गालिब, मिर्ज़ा नौशा, वो आपके उस्ताद को उन्होंने ये बात कह दी कि बने है शह का मुसाहिब, नौकर हूँ क्या मैं आपका? तो कहने लगे बुलाओ उसको, कौन है ये, कौन शायर है? तो उन्हें बुलाया गया गालिब को। तो गालिब की मैं प्रेजेंस ऑफ माइंड बता रहा हूँ आपको कि गालिब ने कहा कि मैंने सर कुछ गुस्ताखी की ही नहीं है, मैं तो अपनी गज़ल पढ़ रहा था। तो कहने लगे कौन सी गज़ल है कहो। तो गालिब का प्रेजेंस ऑफ माइंड ये हर उस शायर में होगा और हर उस आदमी में होगा जो भाषा को चुनाव कर सकता है, जहाँ से आपका सवाल है। तो गालिब ने वहीं से एक गज़ल कही जो आज गज़ल सब लोग जानते हैं कि बने है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। ये शेर उन्होंने पढ़ा कि ये शेर मैंने गज़ल में खुद के लिए कहा है कि तू क्या है, ये गुफ्तगू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, बना है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। तो ये शेर उन्होंने कहा, और ये शेर उन्होंने आम ज़बान में कहा। हर दौर में अपनी ज़बान होती है, ये ज़बान आज अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो नहीं चलेगी, ज़बान बदलती है। आज की ज़बान में हमें आज की बात करनी होगी, तो ज़बान का चुनाव ऐसा करना चाहिए जैसा जिस तरह का सामने परिदृश्य है, जिस तरह का माहौल है। अगर मैं आपसे संस्कृत में आज बात करूं, एक समय सिर्फ संस्कृत में बात होती थी तो आप नहीं समझ पाएंगे, हमें अब आपसे हिंदी में बात करनी होगी और इंग्लिश में बात करनी होगी। कई शब्द हम ऐसे हैं कि हम माइक को हिंदी में क्या कहेंगे, उर्दू में क्या कहेंगे।
1: सरल सहज होना चाहिए, बोध गम्य होना चाहिए, आम जनमानस तक पहुंचने वाला होना चाहिए, आम फहम होना चाहिए, शब्द का चुनाव, भाषा का चुनाव ऐसा होना चाहिए, आपका ये कहना है?
0: बिल्कुल बिल्कुल यही कहना है।
1: तो आप किन शायरों को पढ़ना पसंद करते हैं?
0: सर अभी मौजूदा दौर में जिन मैं शायरों को पढ़ता हूँ उनमें नदीम भाभा साहब हैं जो बहुत बड़े शायर हैं, और शारिक कैफी साहब हैं, फरत एहसास साहब हैं, जावेद अख्तर साहब तो लेजेंड हैं। उनको पढ़ना, उनको सुनना और उनको महसूस करना वो एक बड़ा काम है, और मैं उनको बहुत पढ़ने की कोशिश करता हूँ।
1: हिंदी में
0: मैं आपको बताऊँ, हिंदी में ज्ञान प्रकाश आकुल एक बहुत अच्छे कवि हैं जिनको मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, बड़े भाई जैसे हैं, छोटे भाई की तरह प्यार भी करते हैं। और हिंदी में बहुत सारे लोग हैं, हिंदी में महादेवी वर्मा हैं जिनको पढ़ा, शिवमंगल सिंह सुमन हैं। और हिंदी में मैं आपको बताऊं, जो हिंदी में जो क्राफ्ट है उसका अपना जादू है, लेकिन हिंदी के जो लोग हैं वो उस क्राफ्ट को भूल गए हैं। जो हिंदी का एक क्राफ्ट था ना कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न रह पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे, तो जो हिंदी कविता थी वो आज आप देख रहे हैं किस तरह से क्या हो रहा है। लेकिन उस दौर पर अगर चले गए, उस दौर पर अगर खड़े हो गए, तो हिंदी कविता उर्दू शायरी के समकक्ष ही नज़र आएगी। बहुत बड़ा काम हिंदी में होता है।
1: आज के दौर में यदि हम लेखनी की बात करें, गज़ल की बात करें, काव्य की बात करें, तो हिंदी में आप किन राइटर्स को, किन लेखकों को, किन नगमा निगारों को आप मानते हैं कि वो आज के हिंदी जगत में एक हस्ताक्षर हैं?
0: सर इसमें बहुत बड़ी फहरिस्त है, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो हिंदी का उत्थान या कवि सम्मेलन या मुशायरों का उत्थान है वो अगर किसी एक व्यक्ति ने किया है इतने सारे सालों में, जो 100 साल का जो इतिहास हिंदी कवि सम्मेलन का है, मुशायरों का तो बादशाह के ज़माने से और मुग़ल साम्राज्य से भी चलता आ रहा है, लेकिन जो उत्थान का काम किया है उसमें बहुत बड़ा नाम और बहुत बड़ा काम जो है वो आदरणीय कुमार विश्वास सर ने किया है। और उसका कारण ये है कि उन्होंने इसे एक पहचान दी है। शायर कवि जो झोली लेकर आता था और एक फ़कीराना तरीके से, मतलब कि आ गए हैं शायर, मतलब कुर्ता पजामा पहना होगा शायर, मतलब पान खाए होगा शायर, मतलब बड़ी पीरा होगा, या एक्स वाई जेड
1: एक स्टीरियोटाइप इमेज बना रखी थी,
0: स्टीरियोटाइप इमेज थी, और शायर को कुछ नहीं देना, शायर को फूल दे दिए बस, इस तरह की बातें होती थी। उन्होंने शायरी को व्यापार से जोड़ा, शायरी को बाज़ार से जोड़ा, और शायरी और कविता को वो एक स्टैंडर्ड दिया जिससे शायरी और कविता करते करते आप एक स्टार बन सकते हैं,
1: सेलिब्रिटी बन सकते
0: हैं। आप चार्टेड में घूम रहे हैं, आप फ्लाइट्स में घूम रहे हैं, आप सिर्फ 5 स्टार में रुक रहे हैं। आज हम लोग जब 5 स्टार में रुकते हैं या चार्टेड में जाते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि कवि शायर कौन चार्टेड देगा शायर और कवि को। इसमें डॉक्टर कुमार विश्वास सर का बड़ा योगदान है, और उनका कविता के लिए उत्थान जो कहते हैं कवि सम्मेलन इंडस्ट्री में जो उनका अपना एक काम है उसके लिए तो उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा।
1: अपने अनुभव से आप ये बात बोल रहे हैं। आदर्श दुबे जी, एक सवाल जहन में और भी आता है कि हम देखते हैं कि कहानी ऐसे बनती है या सिनेमा ऐसा बनता है, हम जानना चाहते हैं कि गजल कैसे बनता है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, किन प्रक्रियाओं से गुजर करके आप एक मुकम्मल गजल को तैयार करते हैं?

0: का बाउचर अलग है, उसको खुद स्क्रैच करना है, और स्क्रैच करने के बाद वो किसी काम का नहीं है, वो रास्ता ही किसी काम का नहीं है। तो प्रक्रिया की आपने बात कही, तो मेरी तो प्रक्रिया यही है कि शेर या कोई ख्याल जहन में आता है आमद की शक्ल में, इल्हाम की शक्ल में, फिर वो ख्याल ठहर जाता है। उस पर हो सकता है कि मैंने एक मिसरा कह दिया हो, एक लाइन कह दी हो। मिसाल के तौर पे मुझे ख्याल आया कि आज तुम याद आते हो, तो इसको मैंने गज़ल में फॉर्म डालने के लिए इसमें बहर में बांधी कि आज याद आते हो तुम, तो ये रह गया जहन में। अब इस पर काम होगा, कभी नहीं होगा, तो कभी गाड़ी चलाते हुए इस पर एक और मिसरा लग गया, तो ये एक शेर की शक्ल इसने इख्तियार कर ली। फिर इसके बाद मतला, दूसरा शेर, तीसरा शेर, चौथा शेर, और फिर मक्ता। इसकी बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है। मैं आपको बताऊं, इसमें ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती, क्योंकि ज़बरदस्ती का आर्ट दिखाई देता है, और जो सहले मुमतना, जो नेचुरल एक्टिंग है, जो नेचुरल आर्ट है, जो नेचुरल सिंगिंग है, वो अलग दिखाई देती है, और सुनने वाला एक सेकेंड में पकड़ लेता है कि नेचुरल आर्ट है कि बनावटी है। तो वो प्रक्रिया चलती रहती है, और कई कई बार तो एक लम्हे में, 5 सेकेंड में, 10 सेकेंड में, 20 सेकेंड में, आप देखें 2 गज़लें, 3 गज़लें भी हो जाती हैं। वो कभी कभी एक मिसरा लेके हम लोग बैठे रहते हैं और वो सालों नहीं होता। आज भी कई मिसरे मेरे पड़े हैं जो पूरे ही नहीं हो रहे हैं।
1: तात्कालिक लेखन का कोई स्कोप है गजल में?
0: उर्दू गज़ल में बाकायदा रवायत है तरही और फिलबदी। तात्कालिक को कहते हैं फिलबदी, और तरही एक मिसरा दिया जाएगा किसी का भी, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, ये गालिब साहब का मिसरा दे दिया गया, तो ये उर्दू में रवायत है। इस पे तरही गज़ल कही जाती है फिलबदी तौर पे, जिस पे पूरी गज़ल आपको तुरंत कहनी है आधे घंटे में। और बाकायदा मैं तो मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी का कोऑर्डिनेटर भी हूँ यहाँ सागर में, और मैंने खुद यहाँ 10 से 15 बार मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के बैनर के नीचे तात्कालिक लेखन करवाया है। हालांकि उसमें कम शायर इन्वॉल्व होना चाहते हैं, क्योंकि कई लोगों को एक्सपोज होने का भी डर लगता है इसमें, लेकिन फिर भी हमारे शहर में मैंने निजी तौर पे तात्कालिक लेखन पे मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के बैनर तरह फिलबदी मुशायरे कराए हैं, तरही कराए हैं, जिसको तलाश जौहर अकेडमी ने नाम दिया, और अकेडमी 51 जिलों में जो मध्य प्रदेश के हैं उन सब में तात्कालिक लेखन करा रही है साहित्य अकादमी, और उसमें से शायरों को चुना जाता है, और शायरों को फिर निखारा जाता है, उनको भोपाल बुलाया जाता है, वहाँ एक अलग कॉम्पिटिशन होता है जो पूरे प्रदेश से लोग आते हैं, उसमें से निकल के आते हैं तो उनको बड़े स्टेज पर बड़े शायरों के साथ मौका दिया जाता है, और उन्हें एक पहचान दी जाती है। इसके लिए भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उर्दू अकेडमी मध्य प्रदेश सरकार का, कि एक बड़ा काम एमपी में हो रहा है, ये बहुत जगह नहीं होता।
1: आपने कुछ कुछ शेर या गज़ल आपने लेखने के ऊपर लिखा हो कि गज़लकार बनने के लिए, शायर बनने के लिए क्या करना पड़ता है?
0: बहुत पहले मैंने लिखा था कि गज़ल के मिसरे को मिसरे से जोड़ा जाता है, एक लाइन है, दूसरी लाइन है, गज़ल की लाइन और दूसरी लाइन, गज़ल के मिसरे को मिसरे से जोड़ा जाता है, तमाम रात गमों को निचोड़ा जाता है, पुराने जाल से बाहर निकलना मुश्किल है, जितने भी ये पुराने दौर हैं, पुरानी परंपराएं, पुराने जाल से बाहर निकलना मुश्किल है। हम तो अंबेडकर साहब को भी याद करना चाहेंगे, उनके हवाले से उनको समर्पित, उनको नमन करते हुए मैं शेर पढ़ना चाहता हूं कि पुराने जाल से बाहर निकलना मुश्किल है, इसीलिए तो रवायत को तोड़ा जाता है। तो इस तरह से भी शेर अपना काम करता है कि शेर किसी भी तरह से किसी को भी आप सुपुर्द कर सकते हैं। शेर में अगर शेरियत है, तगज्जुल है, और उसमें किसी का नाम नहीं है, शेर वही है कि अगर शराबी उसे सुन रहा है तो उसे लगे कि शराब के बारे में बात हो रही है, क्या अच्छी बात है। कोई आशिक सुन रहा है तो उसे लगे ये मेरी महबूबा की बात हो रही है। गालिब की गज़ल कोठों में भी गाई जाती है, मंदिरों में भी गाई जाती है, और सड़क पे भी गाई जाती है। इसकी मिसाल मैं शहरयार के एक शेर से दूंगा। शहरयार साहब का एक शेर है कि कौन सी बात है जो उसमें नहीं, कोई देखे मेरी नज़र से उसे। तो ये राइटिंग का फॉर्म है, इस तरह से इशारों के किनारों में बात हो तो बड़ी राइटिंग, बड़ा लेखन माना जाता है।
1: मल्टीपल इंटरप्रिटेशन उसका हो सकता है, और सुनने वाले के ज़हनियत के ऊपर है कि
0: वो बकौल जावेद अख्तर साहब
1: कैसे जोड़ता
0: है। जावेद अख्तर साहब ने एक जगह कहा भी है कि असली शेर वो है, रियल शेर वो है जिसका मतलब खुद उस शायर को ना पता हो जिसने उसे लिखा है। भाई मैंने लिखा है कोई शेर तो मुझे तो मतलब पता होगा कि मैंने क्यों लिखा है, लेकिन वो इसलिए ये कह रहे हैं कि आपने लिखा है, ये आपका एक पर्सपेक्टिव है, आपकी एक विचारधारा है, लेकिन सुनने वाले को आपको फ्री छोड़ना पड़ेगा, वो कहाँ उसे ले जाए। गोस्वामी जी की चौपाई का अर्थ गोस्वामी जी से बेहतर कोई नहीं बता सकता, लेकिन क्यों इतने पंडित, क्यों इतने धर्माचार्य उसकी अलग अलग व्याख्या करते हैं। खुद गोस्वामी जी अगर आज होते तो वो कहते कि ये व्याख्या तो मेरी थी नहीं।
1: गज़ल आपने लिखा, आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद आपने हवाले कर दिया सुनने वालों के,
0: लिखने के बाद ही,
1: सुनने वालों के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसे क्या उड़ान देना चाहते हैं, किस सोच के तहत उसको।
0: हर आर्ट में आर्टिस्ट यही करता है, कि जब वो

0: आर्ट को प्ले कर देता है तो फिर वो आर्ट आर्टिस्ट की नहीं रहती, वो फिर लोगों की हो जाती है, लोग तय करते हैं।
1: जैसे आप लेखनी करते हैं, लिखने बैठते हैं या सोच रहे हैं, कोई ख्याल आपके दिमाग से टकराया, उसकी चौहद्दी तय करने के लिए, प्रिमाइसेस तय करने के लिए कि किस प्रिमाइस में इसको लेकर के आना है, इसकी भूमिका में आपके पढ़ने का, आपके सुनने का, आपकी यात्रा करने का, तमाम तहजीबों को जानने का, संस्कृतियों सभ्यताओं को देखने का कितना बड़ा रोल होता है, कितनी बड़ी भूमिका होती है?
0: बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि एज अ राइटर, एज अ लेखक, एज अ साहित्यकार या एज अ आर्टिस्ट, आप जितना अनुभव करते हैं वो सारी चीज़ें आपके अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में रह जाती हैं और वो कहीं ना कहीं आपके किसी भी तरह के काम पर असर डालती हैं। तो आपकी यात्राएँ, आपकी संगति, आपका अध्ययन जिसको मुतालिया कहते हैं, इसके अलावा आपकी एक विचारधारा भी, सोचने का तरीका भी, और वो हर आर्टिस्ट की आर्ट में झलकता है। अगर आप गौर से देखें उसकी बहुत सारी चीज़ें आप उसमें नोटिस कर सकते हैं कि वो किस तरह की सोच रखता है, किस तरह का काम करता है, कितना अध्ययन है। तो ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं आपकी आर्ट को गहराई देने में। आपका आर्ट कितना गहरा होगा ये आपके अनुभव तय करते हैं, और इसीलिए कहते हैं ना कि जितना अनुभव बढ़ता जाता है उतनी आर्ट गहरी होती चली जाती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको आते आते आती हैं, और वरना गैप से सब कुछ आ जाता है। गैप कहते हैं कि एकदम से जिस पे ऊपर वाला कुदरत मेहरबान हो, कुदरत कह सकते हैं, तो वो तो फिर आपने देखा है कि 8 साल का बच्चा इंडियन आइडल में वैसा गाना गा देता है जो 70 साल से रियाज कर रहे हैं वो नहीं गा पाते।
1: अवचेतन मन में जो विचार, जो आइडिया आपके रह जाता है वो लिखने पढ़ने के दरमियान हमेशा आता रहता
0: आपके
1: है।
0: अगर आप शायर भी नहीं है, अगर आप सामान्य एक नागरिक हैं, तब भी आप कोई विचार आपके अंदर रह गया है तो वो आपके काम करने में, आपके बात करने में रह जाता है।
1: आदर्श जी, एक बात कही जाती है कि जो एक श्रेष्ठ लोग होते हैं या लेखक होते हैं या ग्रेट माइंडेड लोग होते हैं, लाइक माइंडेड लोग होते हैं, उनके सोचने का जो तरीका होता है वो अक्सर समानांतर होता है। महान जो ख्यालात होते हैं अक्सर टकरा जाया करते हैं। हम शायरी में भी कई बार देखते हैं कि दो अलग अलग रूपकों से कोई बात कही गई है लेकिन ख्याल कहीं जाके मिल रहा है उसका।
0: सर, इसका मैं एक बात बताऊं कि दुनिया में ना वही गिनी चुनी भावनाएं हैं, फीलिंग्स वही हैं। मतलब मैंने प्यार किया, हमारे पिताजी को भी हुआ होगा, दादाजी को भी हुआ होगा, परदादाजी को भी हुआ होगा। उन्होंने क्या कहा होगा अपनी प्रेमिका से कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और मैं क्या कहूँगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो शायरी में ये भी है कि शायरी में वही भावनाएं हैं, आप भी व्यक्त करते हैं तो उन्हीं शब्दों में करते हैं। लेकिन आर्ट कहाँ पता चलती है, आर्टिस्ट कहाँ पता चलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ को कितना अलंकृत किया उसने, कितने कपड़े पहनाए, कितने आवरण पहनाए, और कितने नए तरीके से उसने ये कहा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, ये आर्ट बताती है। और अगर आपका अध्ययन नहीं है, अगर आपने पढ़ा नहीं है, तो कहीं ना कहीं ख्याल टकरा जाएंगे। और पढ़ना सर एक शायर को इसलिए भी चाहिए, हमें एक बहुत बड़े जानकार हैं शायरी के, उन्होंने बताया कि शायर को तो इसलिए भी पढ़ना चाहिए कि उसे क्या नहीं लिखना है। शायर को इसलिए पढ़ना चाहिए, और मैं आमतौर पर गजलें कभी पढ़ता हूँ तो मैं ये सोच के पढ़ता हूँ कि मुझे ये नहीं लिखना है क्योंकि लिख दिया गया है।
1: कई बार ये डर दिमाग में आता है कि ये विचार यहाँ टकरा रहा है, जबकि आपके भीतर से वो स्वतः स्फूर्त तरीके से आया
0: आमतौर पर,
1: और फिर आप उससे बचने का प्रयास करते हैं कि ये लाइन या ये मिसरा या ये ख्याल
0: बचना चाहिए। और कई बार ना चाहते हुए भी टकरा जाते हैं। कई बार आप ऐसी बात कहते हैं जो किसी ने कह रखी है नॉर्मल तरीके से, शायरी भी ना माने उसको, जो किसी बड़े विचारक ने कह दिया, आपने वही बात, आपने पढ़ा भी नहीं उस विचारक को। तो इसमें यह होता है कि पहले अगर आप उसके बारे में जानकारी लें, और अगर आपको लगता है कि ये पहले कहा जा चुका है, तो तुरंत उसको अपने कागज से मिटा दें। और ऐसा मैं भी करता हूँ और ऐसा हर शायर करता है, क्योंकि राइटर वही बड़ा होता है जो अपने लिखे को काट दे। और जितने ईमानदार आप अपने आर्ट को लेकर होंगे उतने बड़े आप आर्टिस्ट कहलाएंगे। अपने आर्ट को लेकर बड़ा ईमानदार होना पड़ता है, खुद के लिखे को काट देना इसलिए कि ये कहा जा चुका है, बाकी आपने पढ़ा उसको बिल्कुल नहीं है। और टकराने पे मुझे फिराक साहब का एक किस्सा याद आ गया। फिराक गोरखपुरी साहब, रघुपति साहेब फिराक गोरखपुरी साहब, एक मुशायरे में गए, और वो मुशायरे में निज़ामत कर रहे थे तो एक नया नौजवान शायर आया 18-19 साल का, वो बड़े एज उनकी हो चुकी थी और बड़े प्रतिष्ठित थे उस समय रघुपति साहब, और आज भी बड़ा नाम फिराक गोरखपुरी साहब का। तो वो निज़ामत कर रहे थे, उन्होंने नाम पुकारा तो नौजवान शायर ने पूरी की पूरी गज़ल फिराक साहब की पढ़ दी, और फिराक साहब ने मुशायरे के बाद कहा कि आपने मेरी गज़ल पढ़ दी है, ये मेरी गज़ल है। तो वो कहते हैं नहीं नहीं ख्याल टकरा गया होगा। तो फिराक साहब का जुमला था कि साइकिल से साइकिल की टक्कर होती है, हेलीकॉप्टर से साइकिल की टक्कर।

0: थोड़ी होती। तो ख्याल टकराते हैं लेकिन इतने नहीं टकराते हैं कि पूरी की पूरी गजल टकरा जाए। एक आध मिसरा टकरा जाता है, फिर भी उससे बचना चाहिए। पता लगे आपको अपने इंतखाब में से, अपने कलाम में से, उसको हटा देना चाहिए।
1: राइटिंग, रीराइटिंग, लिखना, काटना, ये प्रक्रिया तो एक लेखक के
0: हमेशा
1: जीवन में चलती ही रहती है।
0: और कभी भी एक लेखक को ये नहीं सोचना चाहिए कि उसकी ये गजल अगर पूरी हो गई, उसने कहीं पढ़ भी दी है, तो वो गजल पूरी हो चुकी है। नहीं, मेरे पास कई बार ऐसा होता है कि मुझे नया लिखने में दिक्कत होती है, मैं कुछ नया ही नहीं आता है, क्रिएटिव ब्लॉक आ जाता है दिमाग पर, मतलब कुछ नया नहीं विचार आ रहा, तो मैं पुरानी गजलें निकालता हूँ जो मैंने बहुत पहले पढ़ रखी हैं, उन्हीं में सुधार करने लगा।
1: नया जब दिमाग में कुछ नहीं आता है तो शक भी होता है अपने भीतर, अपने आर्ट पे।
0: मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं ऊपर वाला मुझसे रूठ गया है, कुछ ना मिले मुझे। मुझे मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं, वो भी ना मिलें, लेकिन मेरा अगर लिखना बंद हो जाता है किसी भी तरह से, कागज़ लेके बैठा हूँ कुछ नहीं आ रहा दिमाग में, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो ऐसा लगता है कि ऊपर वाला या कुदरत मुझसे रूठी हुई है। और जब लिखना स्टार्ट हो जाता है तो फिर सारी परेशानियाँ छोटी लगने लगती हैं। और उस समय काम करना भी नहीं चाहिए अगर आपको क्रिएटिव ब्लॉक हुआ है, ये नॉर्मल प्रक्रिया है। नुसरत मेहंदी मैडम है भोपाल में, डायरेक्टर है मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की, उनका शेर है कि सुखन के नाम पर इजहारे बेदिली मत कर, मतलब मन नहीं हो रहा लिखने का, ये सब सुखन के नाम पर, मतलब साहित्य के नाम पर इजहारे बेदिली मत कर, भटक रहा है तखयुल तो शायरी मत कर। अगर आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं तो पोइट्री मत करो। और ये हर राइटर के साथ क्रिएटिव ब्लॉक होता है, और मुझे लगता है हर आर्टिस्ट के साथ होता है, जब उससे एक वक्त के लिए, एक वक्फे के लिए आर्ट रूठ जाती है, और ये बड़ा पॉजिटिव होता है सर। क्योंकि अवचेतन में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, आप लिख नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब वो ब्लॉक ख़त्म होता है तब वो सारी चीज़ें काम आती हैं, वो सारी चीज़ें असर करती हैं।
1: स्वाभाविक प्रक्रिया है ये, और हाँ, सारे कलाकारों के साथ ऐसा होता है,
0: जिसको कहते हैं ना फॉर्म में नहीं है। विराट कोहली सब बड़ा प्लेयर है, टेक्निकल रूप से बहुत पुष्ट है,
1: दिन नहीं है आपका,
0: लेकिन एज लग रहा है, कैच हो रहे हो आप, लेकिन आप विराट कोहली हो, ये कुछ दिन की बात है, ये सारे बुरे दिन निकलेंगे, और उसके बाद जब अच्छा दिन आता है तो वो सारे बुरे दिन, जो एज लगे हैं, जो कैच आउट हुए हो आप, वो सारे अनुभव एक साथ आपकी सफलता में मुख्य भूमिका निभाते हैं।
1: आदर्श जी, आपसे हम बातचीत कर रहे हैं, आपके कुछ निजी अनुभव जानना चाहेंगे, निजी वो अनुभव जो बहुत कड़वे भी रहे हैं, और वो अनुभव भी चूंकि बड़े बड़े मंचों से आप होकर के आए हैं आकाशवाणी सागर के इस स्टूडियो में, तो वो अनुभव भी जो बहुत शोहरत, बहुत तालियां बटोरने में आपको मदद की।
0: बहुत अच्छा सवाल है सर, और आकाशवाणी सागर तो जब मैं आता हूँ इस पूरे परिसर के अंदर तो बहुत सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। पर्सनली तौर पर तो आप मुझे बेहद करीब से जानते हैं, आपने मेरा बिल्कुल शुरुआत देखी है मेरी, और आज तक भी मेरी शुरुआत ही है मैं तो मानता हूँ, और आप मुझे देख रहे हैं करीब से, तो आप जानते हैं कि किस तरह से चीज़ें बनती हैं, किस तरह से सब कुछ होता है। तो ये बहुत अच्छा सवाल है कि ज़ाती अनुभव, तो अच्छा बुरा दोनों सिक्के के पहलू हैं, बहुत अच्छे अनुभव भी हुए हैं, बहुत ख़राब अनुभव भी हो जाते हैं कई बार, अच्छे अनुभव हमारी स्मृति में रह जाते हैं और हम उनको रखना चाहते हैं। इसलिए तो मैं आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा खुशी मुझे अगर कहीं हुई है, सबसे ज़्यादा मुझे कुछ हुआ कि मैंने कुछ किया, तो वो श्रद्धेय डॉक्टर कुमार विश्वास सर के साथ जो मंच था मेरा, वहाँ मुझे हुई। वहाँ मुझे यूँ लगा कि मतलब मैंने सब कुछ हासिल कर लिया। एक सपना होता है हर राइटर का, अगर आप एक्टिंग कर रहे हैं तो आपका सपना है कि आपको शाहरुख खान के साथ फिल्म करनी है, और आप शाहरुख खान के साथ फिल्म करने के बाद वो फिल्म सुपरहिट हो जाए तो फिर क्या मामला हो जाए। सचिन के साथ आप बैटिंग कर रहे हैं, आप सेंचुरी मार दें, तो इस तरह से। और वो इसमें बहुत बड़ा रोल तो कुमार सर का भी था कि उन्होंने इतने प्यार से मुझे पेश किया, उसमें संचालन वो कर रहे थे, और उस वक्त मुझे रात में नींद नहीं आई, मुझे लग रहा था मैं कितने लोगों को फ़ोन लगा दूँ, लेकिन रात इतनी हो चुकी थी तो किसी को फ़ोन ही नहीं लगाया, नहीं तो सर आपको भी मैं लगा देता फ़ोन। तो इस तरह से खुशी हुई। इसके अलावा हिंदुस्तान के बाहर जब दुबई में हमने पढ़ा तो वहाँ एक जिम्मेदारी का एहसास हुआ। मैंने कोशिश भी की कि सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक मैं हिंदुस्तानी दिखाई दूँ, मैं कोई ऐसा काम वहाँ ना करूँ या कोई ऐसी बात ना करूँ जो मेरे देश पर आँच आए उस बात पे। बहुत सारे मुल्कों के लोग थे, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, कनाडा, वहाँ के शायर वहाँ आए हुए थे, सारे उर्दू गज़ल पे बड़े नाम थे, काम कर रहे थे, तो उनसे मिलते हुए, उनसे बात करते हुए, उनके विचारों को समझते हुए मैं इस बात का बहुत ख्याल रख रहा था कि मेरी किसी बात से ऐसा ना हो कि वो हिंदुस्तान के बारे में कोई विचारधारा अपने जहन में कायम कर लें। तो बहुत कुछ सीखने मिला और आज तक वो

0: मतलब मैं फॉलो करता हूँ कहीं जाता हूँ तो।
1: कुछ बुरी यादें?
0: हाँ, अभी 2 साल पहले ही, और 2-3 साल ही पहले की बात है, सहरसा एक जगह है बिहार में, वहाँ का एक मुशायरे के लिए मुझे फ़ोन आया बिहार उर्दू एकेडमी की तरफ से। तो मैं गया वहाँ पे, तो वहाँ पे जब पहुँचने लगा मैं समस्तीपुर के आसपास, तो मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया किसी वजह से। तो फ़ोन डिस्चार्ज हो गया तो उन्होंने होटल का जो था, कहाँ आपको ठहरना है, वो व्हाट्सएप मुझे कर दिया था। और वहाँ ट्रेन में कोई चार्जिंग की व्यवस्था नहीं थी, और मैं जैसे ही सहरसा उतरा, तो आप यकीन मानिए, मैंने आज तक ऐसा स्टेशन नहीं देखा पूरी दुनिया में कि मुझे समझ ना आए कि मैं खेत में खड़ा हूँ कि
1: रेलवे
0: स्टेशन
1: स्टेशन
0: पे
1: पे।
0: खड़ा हूँ। और वहाँ पे सिर्फ एक पान या गुटके की कोई एक टपरी थी स्टेशन में सहरसा के, आज भी आप जाके देख सकते हैं। तो वहाँ मैं गया, मैंने कहा कहीं चार्ज हो सकता है, कहने लगे नहीं हो सकता। हालांकि मैंने उनका नंबर कहीं लिख रखा था, तो मैंने उनको नंबर लगाया। तब तक 9-10 बज चुके थे, और उनकी आदत थी वो ऑफिस से लौटने के बाद सो जाते थे, और वो निश्चिंत इसलिए हो गए कि उन्होंने
1: व्हाट्सएप कर
0: होटल
1: दिया है।
0: कहाँ है आपको व्हाट्सएप कर दिया है, जो भी आपका रहेगा वो कर देंगे और आप वहाँ ठहर जाइए। सर फिर मैंने फ़ोन लगाया, उन्होंने रात भर फ़ोन नहीं उठाया। और वो ऐसी जगह, ऐसा गांव या ऐसा इलाका कि सर मुझे पहली बार अजीब ऐसा डर लगा। मैंने फिर पिताजी को फ़ोन लगाया, पापा कहते हैं छोड़ो मुशायरा, तुम तो कहीं होटल देखो और सुबह वापस आओ, अगर वो सामने वाला फ़ोन ही नहीं उठा रहा है जिसने तुम्हें बुलाया है। भाई साहब फिर मैंने होटल किया, वहाँ ठहरा और सो गया। सुबह 9 बजे मुझे उसी नंबर से बार बार मिस्ड कॉल, बार बार मिस्ड कॉल, माजरत के साथ सर मुझे ऐसा है, मैं ऑफिस में जाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। तो इस तरह से वो चीज़ें हुई कि वो अनुभव आज भी याद है। क्योंकि आप तसव्वुर करिए कि आप ऐसी जगह हैं जहाँ पर कोई चीज़ आपको नहीं पता कि क्या होने वाली है। और उस सहरसा के बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप गूगल पे सर्च करें या लोगों ने मुझे बताई, समस्तीपुर में ट्रेन में लोग बता रहे हैं कि जहाँ आप जा रहे हो वहाँ थोड़ा सा मामला अलग है।
1: संभल के रहना। नए पौध के जो अभी शायर हैं, लेखक हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप भी उसी कतार में हैं,
0: बिल्कुल, मैं
1: उसी
0: उसी
1: पीढ़ी
0: हूँ,
1: से आप आते हैं,
0: बिल्कुल
1: उनकी लेखनी से आप कितने मुतासिर हैं, कितने संतुष्ट हैं?
0: सर, बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ, बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ, बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। आप अगर बात करें तो नए लोगों ने जो हिंदुस्तान में काम किया है, बहुत सारे नाम हैं, आप खुद जानते हैं, आप वरुण भैया के बारे में, वरुण आनंद जी के बारे में आप बात करें, चिराग भाई के बारे में बात करें, या ज़ुबैर भैया के बारे में बात करें, ज़ुबैर अली ताबिश, इन लोगों ने बहुत बड़ा काम नए तरीके से किया है। और जो लोग ये समझते थे कि आने वाले दिनों में शायरी ख़त्म है, पोइट्री ख़त्म है, तो इन नए लोगों ने आकर ये दिखाया है कि शायरी अब शुरू हो रही है। एक वो होता है ना कि अब ख्याल ही नहीं बचे हैं, अब चीज़ें ही नहीं हैं। तो मैं आपको एक शेर सुनाना चाहूँगा, मेरे एक दोस्त हैं अश्विनी मित्तल, ऐश मुंबई में, वो मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, उनका शेर है कि उबलते वक्त पानी सोचता होगा ज़रूर। लोग कहते ना ख्याल नहीं है, अब आजकल विचार है ही नहीं, सब कही कही बातें हैं। तो मैंने उनका शेर सुना, मैंने बधाई दी, और अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन पर बात हो रही थी तो मैं उनको कह रहा था इस शेर के बारे में। उनका शेर है अश्विनी भाई का कि उबलते वक्त पानी सोचता होगा ज़रूर, अगर बर्तन ना होता तो बताता आग को। तो पोइट्री इस तरह से भी हो गई है कि जो गालिब जुल्फों में घूमते थे, मीर तकी मीर होंठों की बातें करते थे, नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, आज यहाँ तक पोइट्री आ चुकी है। मैथमेटिक्स पे पोइट्री हो रही है, एल्गोरिदम पे पोइट्री हो रही है, जियोग्राफिया पे पोइट्री हो रही है, तो साइंस पे, रियाजी पे पोइट्री हो रही है। तो बहुत पोइट्री का स्कोप बड़ा, और ये नए लोगों ने किया सारे।
1: शब्द भी आपने बताए कि वो गढ़े जाते हैं और चलायमान होते हैं, समय के बंधन में नहीं बंधे हुए होते हैं, वो तो धारा प्रवाह बहते रहते हैं जैसे ही लोगों की ज़ुबान से निकलते हैं। जेंजी भी एक शब्दकोश से निकला हुआ ही शब्द है और बहुत बड़ी तादाद है इनकी पूरे देश में। ऐसे लोगों को लक्षित करते हुए, टारगेट करते हुए, कभी दिमाग में कुछ आया कि इनके लिए भी कुछ लिखा जाए? अगर ऐसा कुछ लिखा तो ज़रूर सुनाइए।
0: सर जेंजी के लिए कभी पर्टिकुलर सोच के तो नहीं लिखा, क्योंकि जब ऐसा होता है लिखने का तो मैं सोचता हूँ कि ऐसा कुछ लिखूँ जो सबको समझ आए, उसमें जेंजी भी हो, जिसकी बारे में मैं बात भी आपसे कही कि सबको समझ में आए वो सब चीज़ें। लेकिन जेंजी का बहुत बड़ा रोल है और हमें उनका ख्याल रखना पड़ता है, उनकी अपनी फीलिंग्स हैं। क्योंकि गालिब के समय पर ख़त होते थे, आज व्हाट्सएप है। अब ख़त की बात कोई करे, मेरा ही शेर है कि ऐसा लम्हा उधार दे कोई जिसमें सदियाँ गुजार दे कोई, बाद मुद्दत के खत लिखे वो मुझे और कबूतर को मार दे कोई। इस शेर पे बहुत वाहवाही मिली, बहुत मिलती है, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि ये शेर आज का नहीं है, मुझे पर्सनल फील हुआ, किसी ने कहा नहीं मुझसे। एक शायर को खुद होता है कि ये मेरा आर्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम है ये, लेकिन इस दौर का नहीं है, अब खत कौन लिखता है। फिर मैंने
1: इसकी
0: शेर लिखा आज के दौर में जेंजी के लिए कि नए ख्यालों को जनरेट करना पड़ता है, गज़ल के लहजे को अपडेट करना पड़ता है, उसे एक शख्स का रिप्लाई देखने के लिए तमाम

0: रात हमें वेट करना पड़ता है। तो इस तरह से आपको अपनी भाषा, आपको अपने अलंकार, आपको अपने प्रतीक और उपमाएं समय समय के साथ चुननी पड़ती हैं। आज अगर गालिब जिंदा होते तो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि वो व्हाट्सएप पे शेर कह रहे होते। इतने प्रगतिशील दिमाग के वो आदमी थे, इतने प्रगतिशील थे, तरक्की पसंद थे, और हर बड़ा राइटर प्रगतिशील होता है। वो इन उपमाओं की बुराई नहीं करता है कि ये बताओ व्हाट्सएप आ गया, बताओ मोबाइल आ गया, वो उनका इस्तेमाल करता है,
1: वो उन्हें अपने लेखन की सामग्री बना लेता है,
0: सामग्री बना लेता है,
1: विषय वस्तु बना लेता है। एक और सवाल जहन में आ रहा है आतिश जी, बहुत अच्छी बातचीत आपके साथ हो रही है और लगातार ये समय बढ़ता जा रहा है, पता नहीं चल रहा है और मुझे पता नहीं कि कहाँ इसका अंत होने वाला है
0: सर।
1: लेकिन एक सवाल और आ रहा है, चूंकि व्हाट्सएप की बात हो रही है, जेन जी की बात हो रही है, तो आज के इस डिजिटल मीडिया के युग में, सोशल मीडिया के युग में छोटे छोटे रील्स जो है वायरल हो जाते हैं,
0: बिल्कुल ऐसे,
1: और बहुत पुराने शेर जो कभी सुने गए थे किसी आज के शायर ने पढ़ दिया और उस पर रील्स कट जा रही है। कितना बड़ा योगदान है इन माध्यमों का आज के शायरों को जिंदा रखने में, पुराने शायरों को भी खोज के लाने में।
0: सोशल मीडिया का तो मैं आपको बताऊं, जितना शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है, क्योंकि एक स्टीरियोटाइप ही बना दिया था लोगों ने कि शायरी सिर्फ ये खास लोगों का काम है, ये मखसूस लोगों का काम है, खवास लोगों का काम है, ये शायरी सुनने वाले इस तरह के अलग लोग हैं। लेकिन सोशल मीडिया ने लोगों के बेड पर शायरी पहुंचा दी। आदमी ऑफिस से थका हारा आता है और अपने बेड पर लेटता है, खाना पीना खा के वो सोचता है कि मोबाइल में कुछ देख लूं, उतने में एक शेर आता है और वो शेर ऐसा है कि वो किसी भी तरह से उस व्यक्ति को कनेक्ट कर दे रहा है, किसी भी तरह की उसकी भावनाएँ उससे हिट हो रही हैं, तो वो तुरंत उस शेर के पीछे भागता है, उसको अपने स्टेटस पे लगाता है, दोस्तों के साथ शेयर करता है, परिवार के साथ शेयर करता है। तो शायरी का दायरा बढ़ा, शायरी के चाहने वाले बढ़े, और जो असल शायरी है और जो असल पोएट्री है वो अब आपको बताऊं किसी प्रमाणिक व्यक्ति के प्रमाणिकता देने से सिद्ध नहीं होगी। हर व्यक्ति का चुनाव हर व्यक्ति कर रहा है, हर व्यक्ति साफ खड़ा हुआ है, पार्शियल तरीके से डेमोक्रेटिकली हर आदमी का काम हो रहा है। वो ऐसे हो रहा है कि कोई अच्छा शेर है तो वो पब्लिक डिसाइड कर दे रही है, और कोई अच्छा शेर नहीं है वो भी पब्लिक डिसाइड कर दे रही है, क्योंकि हर आदमी उसको सुन रहा है। इसमें बुरा भी हो रहा है, अच्छा भी हो रहा है, लेकिन बुरे को हमें साथ में इसलिए भी शामिल करना पड़ेगा कि हर अच्छे के साथ बुरा तो होता है, देवताओं के साथ असुर भी होते हैं, दिन के साथ रात भी होती है, लेकिन इसलिए कि रात होती है हम दिन को तो नहीं इग्नोर कर सकते। बहुत अच्छा अच्छा काम, बहुत पुराने पुराने लोग, जॉन एलिया, सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से सबसे बड़ा नाम मैं ले रहा हूँ इस वक्त, जॉन एलिया साहब अपने दौर के बड़े शायर थे, लेकिन उस दौर में पीरजादा कासिम, जगन्नाथ आज़ाद और बहुत सारे बड़े बड़े लोग थे अपना, जिनका ऑरा था, जॉन साहब का उतना ऑरा नहीं था, मुंह फटते जॉन साहब, बनती नहीं थी किसी से, लेकिन उनका काम बड़ा था। लेकिन उनके जाने के बाद सोशल मीडिया पर जैसे उनका काम आया तो उनके काम के पीछे लोग भागने लगे, और आज देखिए जॉन साहब की अपनी फैन फॉलोइंग है
1: जो उनके जीते जी नहीं थी,
0: जो उनके
1: सोशल मीडिया का कमाल है कि वो जितने सारे लोग फॉलो करने वाले
0: में जिंदा हुए हैं। जॉन साहब मुझसे कोई पूछता है तो मैं मजाक में कहता हूँ कि असल में तो जॉन साहब जिंदा हुए हैं 2008-09 में, और जॉन साहब आज भी घूम रहे हैं, आपके हर मोबाइल के स्टेटस पे घूम रहा है।
1: कनेक्ट करना बहुत जरूरी होता है, दर्शकों के जो एहसास हैं, जज्बात हैं, उसको समझना बहुत जरूरी
0: सर,
1: होता है।
0: पोएट्री के बारे में लोग कई बार ये कहते हैं मुझसे, किसी को समझ आए ना आए, बड़ी पोएट्री है ये। नहीं सर, कोई भी आर्ट हो ना वो लोगों के लिए होती है, मैं इसको मानता हूं, और अगर लोग उस आर्ट पे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं तो उस आर्ट की कमजोरी है। अगर आप कोई बात कह रहे हैं सीधी तौर पर, मैं आपसे कहूं, अब वो सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा है तो उस बात का कहीं ना कहीं कहने वाले में कुछ कमी है।
1: और आपने भी बात कही कि स्टेटस पे लोग उसको लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने आप को कश्मकश में पा रहा है और अपनी भावनाओं को, अपने जज्बात को आवाज़ नहीं दे पा रहा है, और वो शायरी के माध्यम से उसकी भावनाओं को एक स्वर मिल गया।
0: और दीपक सर, आप तो पर्सनली खुद जानते हैं और आप बहुत एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पर भी देखते हैं और आप अवेयर हैं बहुत सारी चीज़ों से, और साहित्य से भी काफ़ी अवेयर हैं, तो आप देखते हैं कि किस तरह से तूफान आया हुआ है शायरी का, जो आज से 10 साल पहले शायद नहीं था। 10 साल पहले कोई शायरी करने वाले को इतना सीरियसली नहीं लेता था, शायरी अच्छी होती थी, लेकिन अभी सोशल मीडिया के आने के बाद, अभी डिजिटल मीडिया के आने के बाद, अच्छी शायरी, अच्छी बातें, अच्छे विचार लोगों तक पहुंच रहे हैं और लोग कनेक्ट कर रहे हैं उस बात।
1: एक और नई चीज़ निकल करके सामने आई है, सोशल मीडिया के इतर कंसर्ट्स भी लोग कर रहे हैं, शोज भी कर रहे हैं शहरों में जाकर के, और बाकायदा टिकट की बिक्री हो रही है, पास लेकर के लोग आ रहे हैं।
0: अभी नीता अंबानी जो ऑडिटोरियम है, भारत का सबसे महंगा ऑडिटोरियम है, अभी की मैं लेटेस्ट

0: देता हूँ, डॉक्टर कुमार विश्वास सर का जो शो हुआ था और वो कवि सम्मेलन ही था, उसमें 3,500 का टिकट 1,000 आदमियों ने खरीदा, जो 1,000 लोग बैठे थे। आप सोच सकते हैं, शायरी के लिए 3,500 रुपये का टिकट, शायरी के लिए, ये कोई फिल्म नहीं है, इतना क्रेज है, लोग स्टार समझने लगे हैं अपने पसंदीदा पोइट को, और पसंदीदा पोइट भी स्टार की तरह रहता है, स्टार की तरह स्टारडम है उसका। तो ये सब लोगों की वजह से है और लोगों तक अब बातें पहुंचने लगी हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, लोग भी अब मेंटल रूप से, क्योंकि इतनी सारी आपाधापी है, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो अपने बेसिक्स पे लौट रहे हैं। कुल्हड़ में पानी पीना, कुल्हड़ में चाय पीना, बेसिक्स पे ही लौटना है ना सर। कोरोना में देखा आपने, बहुत सारी चीज़ें बेसिक्स में लौट रहे हैं। 5-स्टार होटल में आप देखिए, मैंने देखा 5-स्टार होटल मिट्टी के बर्तन का अलग रेट है। मतलब मिलीनियर आदमी है, अरबपति आदमी है, वो 5-स्टार होटल में जाके कह रहा है मुझे मिट्टी वाले थाली में खाना दीजिए। तो अंदर से तो जो बेसिक्स हैं, जो रूट्स हैं, वहां पर आदमी पहुंच रहा है, तो शायरी उसमें मदद करती है,
1: बिल्कुल, और
0: वहां तक ले जाती है।
1: शायर अपने आप में एक स्टार है भी, क्योंकि वो सृजन करता है, वो चीजों को बहुत शून्य से खोज करके लाता है और जनता के बीच उसे
0: जी। गोपाल दास नीरज जी ने कहा ही है कि मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। और सही बात है, सृजन करना, क्रिएट करना, क्रिएटर होना, ये बड़ा काम है, और इसको अगर कोई क्रिएटर है भी तो उसे विनम्रता के साथ स्वीकार करना चाहिए इस बात को।
1: लेखन के साथ साथ स्टेज प्रस्तुति, स्टेज परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी है एक शायर के लिए। तो कहने का ये जो अंदाज है आपका, ये जो कहन है, लोगों के जहन तक जाए, उनके दिल तक जाए, उतर जाए, बहुत असर होता है। सामान्य से शब्द जो आपके आसपास इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, आपको लगता है कितनी सामान्य सी बात है, कितनी सीधी सरल सी बात है, लेकिन कितने अच्छे तरीके से उसको कह दिया गया और लोगों ने उसे पकड़ लिया, जादू की तरह असर करता है। तो वो जो अंदाज है, इसके ऊपर कैसे काम करते हैं, और भी जो नामचीन शायर हैं उनके बारे में, उनके अंदाज के बारे में अगर आप बताना चाहें तो।
0: सर, ये एक परफॉर्मिंग आर्ट में आता है, और परफॉर्मिंग आर्ट जो है ना, वो बहुत ज़रूरी है अगर आप स्टेज पर हैं, और अगर आप स्टेज पर नहीं है, किताब में है, तो ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आपका काम कोई दूसरा प्ले कर रहा है और बहुत अच्छे से कर रहा है तो भी ठीक है, लेकिन कितना अच्छा है कि आप अपने काम को खुद प्ले करें, आप अपने काम को खुद शो करें, तो वो ज़्यादा असर करेगा, क्योंकि आप अपने काम को भी जानते हैं, उतने अच्छे से जानते हैं जितना कोई और नहीं जानता। तो इसके लिए बाकायदा मेहनत करनी चाहिए। परफॉर्मिंग एक आर्ट है और उसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए, ऐसे ही नहीं कि आपने मुझे बुलाया, पॉडकास्ट में चला गया। थोड़ा सा बेसिक्स पे तैयारी कर लेनी चाहिए कि किस तरह के सवाल पूछ सकते हैं दीपक सर। और जितने बड़े लोग हैं, मैं आपको बताऊं, बहुत मेहनत करते हैं अपने परफॉर्मिंग आर्ट पर, आईने के सामने करते हैं, एक एक जुमला, एक एक चुटकुला, एक एक टिप्पणी जो वो ऐड करते हैं, उसकी बाकायदा प्रैक्टिस होती है, और उनको पता होता है कि किस शेर के बाद हमें कौन सी टिप्पणी पढ़नी है, और वो असर करती है। एग्ज़ाम में जब आप तैयारी के साथ जाते हैं तो रिजल्ट अच्छा आता है, और ऐसे ही चले जाएं तो मन के सवाल आ गए तो अच्छा है, नहीं तो फिर डब्बा गुल है।
1: बाकायदा उसके पीछे बहुत तैयारी होती
0: है, बाकायदा करनी चाहिए,
1: और रियाज होता
0: है। और इसको मैं आपको बताऊं, सीरियसली लेना चाहिए। शायर लोगों में एक चीज़ मैंने जो नोटिस की है, हो सकता है मेरा जाती है तजुर्बा, कि वो इस पर काम नहीं करना चाहते, उन्हें लगता है ये मेरा काम नहीं है, ये कोई और का काम है, कोई सिंगर गाएगा, कंपोज कर देगा, पढ़ देगा, कोई फिल्म में मेरे शेर आ जाएंगे। भाई, फिल्म में आपके शेर आ जाएंगे ये बड़ी बात नहीं है, आप खुद उस शेर को किस तरह से पढ़ रहे हैं। तो अपना काम खुद शो करना, ये सबसे बड़ा आर्ट है, और इस पे बकायदा काम करना चाहिए, और सीरियसली काम करना चाहिए, तलफ्फुज पर, अदायगी पर, एक्सप्रेशन पर, हाथों के मूवमेंट पर, आपके पोस्चर पर, ये सब चीज़ें आपको काम करना पड़ेगा, और आपके लुक पर, स्टेज पे अपीयरेंस पर, ये सब चीज़ें काम करती हैं। ये सब चीज़ें जब मिल जाती हैं, फिर कंटेंट, कंटेंट इज़ द किंग। कंटेंट तो आप कितना भी कपड़े पहना दें, कुछ भी कर दें, आप थोड़ी देर को अच्छे लग सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे आप हैं कैसे, वो ये असर करता है। तो कंटेंट तो बॉस है, लेकिन कंटेंट के साथ भी अगर इतने सारे आवरण हो, अदायगी हो, एक्सप्रेशन हो, लुक हो,
1: सोने पे सुहागा हो जाता है, चमत्कार हो जाता है।
0: मणिकांचन सही हो गए, सोने पे सुहागा है।
1: आदर्श जी, चलते चलते एक सवाल और आपसे, नई नस्लों के लिए, आप खुद भी नई पीढ़ी से आते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप हमेशा व्यस्त रहते हैं, अलग अलग शहरों में जाके मुशायरे पढ़ते हैं, आप नए नस्लों के लिए, नई पीढ़ी के लिए, नई पौध के लिए क्या कहना चाहेंगे, जिन्होंने अभी कलम उठाई है और लिखना शुरू किया है?
0: बहुत अच्छा सवाल ये भी है, और इस पे तो मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि जो मैंने अभी इस पॉडकास्ट शुरू होने से पहले, जब हम और आप चाय पी रहे थे, उस वक्त मैंने ये कहा कि आपको किसी भी आर्ट को प्ले करते हुए, आर्ट जीते हुए आपको ठीक ठीक एथिस्ट होना चाहिए, आपको किसी भी विचारधारा में नहीं बंधना चाहिए। ठीक है, मेरी एक विचारधारा है, मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं किसी को मत मेरा दान करता हूँ या किसी विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ, ये मेरा बेसिक है, और किस मैथोलॉजी में बिलीव करता हूँ, किस कास्ट में मैं हूँ, ये भी मेरा पर्सनल है। लेकिन जब आप आर्ट को जी रहे हों, जब आप क्रिएट कर रहे हो कुछ, उस समय आपको ठीक ठाक नास्तिक होना चाहिए, जो जावेद साहब भी कहते हैं, जावेद अख्तर साहब बकौल, वो इसलिए भी होना चाहिए कि आप फिर पक्षपात नहीं कर पाते हैं। अगर आप पहले से ही किसी विचारधारा से प्रेरित हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप उस विचारधारा को प्रमोट कर रहे हैं, बजाय इसके पोएट्री का एक उद्देश्य है लोगों को अवेयर करना, तो आप अवेयर नहीं कर रहे हैं, आप प्रचार कर रहे हैं किसी भी विचारधारा का। तो आप जब एथिस्ट या नास्तिक ठीक ठाक होते हैं अपने काम करते हुए या किसी भी तरह का रोल प्ले करते हुए, तो वो आप समान रूप से एक थाली में लोगों के लिए पूरे व्यंजन लगा देते हैं, फिर जिसको जो चुनना है वो चुन लेता है। लेकिन अगर आप पहले से ही मीठा देना चाहते हैं, पहले से ही तीखा देना चाहते हैं, तो शायद ये हो सकता है कि जिनको तीखा पसंद है उन्हें तो अच्छा लगेगा, लेकिन मीठा खाने वाले नाराज़ हो जाएंगे आप।
1: ठीक वैसे ही जैसे कोई शोधार्थी शोध कार्य कर रहा हो और प्रेक्षण ले रहा हो, ऑब्जर्वेशन कर रहा हो, और वो उसके प्रति बायस्ड हो जाए तो परिणाम वो नहीं आएंगे जो आने चाहिए।
0: तो इसका ख्याल नई नस्ल को रखना चाहिए कि आप जब राइटिंग कर रहे हैं तो उस समय आप अपने आप के साथ इंसाफ करें, अपनी राइटिंग के साथ, फिर उसके बाद आप सामान्य नागरिक हैं और आपकी विचारधारा।
1: बहुत वजह बात आपने फरमाई आदर्श दुबे साहब कि आपको बिल्कुल निर्विकार भाव से, निष्पक्ष भाव से, न्यूट्रल होकर के आर्ट के प्रति आपको इंसाफ करना है और उसको हमेशा अपने जहन में ताज़ा रखना है। बहुत दिलचस्प बातचीत आदर्श दुबे जी आपसे हुई और आपके माध्यम से हमने शायरी की एक दुनिया को देखने का काम किया, झांकने का काम किया। निश्चित रूप से तमाम लोग, नई पीढ़ी के अलावा भी जो आपको सुन रहे हैं, एक साक्षात्कार उनका शायरी की दुनिया के प्रति हुआ होगा। आपने वो खिड़की खोली जिसमें हम झांक पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं आदर्श दुबे साहब आपका, आप ऐसे ही बुलंदियों को छूते रहें
0: सर,
1: सागर शहर का, पूरे बुंदेलखंड का, मध्य प्रदेश का, भारत का नाम रोशन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको।
0: बहुत बहुत शुक्रिया सर।
1: चूंकि आदर्श जी आप एक गज़लकार हैं, लिखते हैं, किताबें भी आपकी साया हुई हैं, तो चंद गज़ल की कुछ लाइनें जो आपके दिल के बहुत करीब हो और आप हमारे श्रोताओं को नज़र करना चाहते हो।
0: और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ बहुत दिनों बाद, और इतना सलीके से, तरीके से, और आप तो एक्सपर्ट हैं दीपक सर, तो आपने जिस तरह से मुझे कुरेद दिया है ना, तो वो आज आपने काम किया, इसके लिए आकाशवाणी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आकाशवाणी तो अपने आप में इतना प्रमाणिक प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में तो क्या कहा जाए, यहाँ से कोई बात कही जाए तो बहुत मायने रखती है। तो आपने जैसा कहा तो मैं एक गज़ल आपके सामने पेश करता हूँ। गज़ल का मतलब है कि ना अपनी राह बदलता तो और क्या करता। ये तमाम आपके सुनने वाले, नए लिखने वाले और तमाम जो लोग हैं उनके लिए पढ़ना चाहता हूँ कि ना अपनी राह बदलता तो और क्या करता, तुम्हारे साथ ही चलता तो और क्या करता। ये एक बात अंधेरों को कौन समझाए, मैं था चराग न जलता तो और क्या करता। ये एक बात अंधेरों को कौन समझाए, मैं था चराग न जलता तो और क्या करता। और एक बारीक शेर कि वो मेरे हाथों से निकला है, ख्वाबों से तो नहीं। वो मेरे हाथों से निकला है, ख्वाबों से तो नहीं, मैं अपनी आंखें न मलता तो और क्या करता। वो मेरे हाथों से निकला है, ख्वाबों से तो नहीं, मैं अपनी आंखें न मलता तो और क्या करता। ये मेरा अपना सफ़र था, ये मेरा अपना सफ़र था और अपनी मंजिल थी। ये मेरा अपना सफ़र था और अपनी मंजिल थी, मैं गिर के खुद न संभलता तो और क्या करता। ये मेरा अपना सफ़र था और अपनी मंजिल थी, मैं गिर के खुद ना संभलता तो और क्या करता। और एक आखिरी शेर जो मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, मैं आसमान का होकर ज़मीं पर रहता हूँ, मैं आसमान का होकर ज़मीं पर रहता हूँ, छुपा के खुद को ना चलता तो और क्या करता। ना अपनी राह बदलता तो और क्या करता, तुम्हारे साथ ही चलता तो और क्या करता।
1: बहुत खूब, बहुत खूब।
2: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे पॉडकास्ट विथ आकाशवाणी सागर। विषय था उर्दू अदब और शायरी। गेस्ट थे शायर आदर्श दुबे, भेंट करता थे दीपक निषाद। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: बढ़ेगा आपका व्यापार। आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770432297।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: आपके सवाल, आपके विचार, सुनिए सागर संवाद, जहां हर नागरिक बनता है अपने शहर की आवाज। आप भी बोलिए, क्योंकि आपकी बात ही बनेगी सागर की बात। सागर संवाद, अपनी बात आकाशवाणी के साथ। सुनिए सागर संवाद आकाशवाणी सागर से महीने के पहले और पांचवें शुक्रवार को रात्रि 8:30 बजे से।
3: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर।
4: सागर की साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी की महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से।
0: अब बढ़ेगा आपका व्यापार। आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770432297।
5: अरे काय भैया, ये सब मोल अटकाए काय को दिए थे?
6: अब का बताएं भज्जा, तुमकी कोनो ये कहू परेशानी हो तो बतावे, ये तो रामधई समस्याओं की लेन लगी है लेन।
5: अरे भैया ये सब का होगा, कुछ तो बताओ।
6: अब तुम्हें का बताएं भज्जा, कबहू जो ढोर बीमार, कबहू वो ढोर बीमार, कहूं ये खोजा परेशानी, कहूं वो खोबा परेशानी, और ऊपर से खेती रो आ रही है सो अलग ही।
5: अरे अब रोबो धोबो छोड़ो, उठाओ मोबाइल, लगाओ हेलो किसान वाणी में। हेलो किसान वाणी में हर गुरुवार को दोपहर 1 बजे से फोन लगत है, ओमे आउट है आकाशवाणी में एक से एक सुरिंदा वैज्ञानिक और डॉक्टर सोई।
6: अच्छा अच्छा,
5: मोबाइल पे फोन लगाओ 22 88 20, और दूसरा नंबर भी लिख लो 240 845। बड़े समझदार हो, इसमें कोड नंबर ही लगाने पड़े सागर को, और सागर को कोड है 07582। अब सागर आकाशवाणी को आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, सागर आकाशवाणी को व्हाट्सएप नंबर भी लिख लो भैया, सागर आकाशवाणी को व्हाट्सएप नंबर है 9774 3227।
6: एक बार फिर से बता दे भज्जा।
5: भैया फिर से लिख लो, इसमें कछु परेशानी नहीं, 9774 3227।
6: अच्छा तो पहले फोन की कोशिश कर है और ले लो तो फिर बात साहब।
5: अरे वाह,
6: अच्छा जा बताओ भज्जा।

एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार तक। समय होता है सुबह 11 से 11:30 बजे तक।

0: बढ़ेगा आपका व्यापार। आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770432297।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:30 होने वाले हैं। थोड़ी देर में सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती हूँ। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। पेश है अदाकारे आजम दिलीप कुमार।
1: तो फिर आदिल शहनशाह को अपनी हुकूमत में उन तड़पते हुए नाफरमान परवानों को भी सजा देनी चाहिए जो शमा पर निसार हो जाते, फूलों पर मंडलाते हुए उस भंवरे को भी कैद करना चाहिए जो मोहब्बत के मीठे राग गाता है।
0: दिलीप कुमार को अदाकारे आजम यूं ही नहीं कहते। आप सोच रहे होंगे आज के फनकार कार्यक्रम में हम बताएंगे दिलीप कुमार साहब कहाँ पैदा हुए, किस तरह से एक्टिंग की दुनिया में आए, किस तरह से उन्होंने अपनी शैली बनाई और किस तरह से अपना फिल्मी सफर आगे तय किया। लेकिन नहीं जनाब, ये सब आप जानते हैं और हमें पता है कि आप ये सब बार बार नहीं सुनना चाहते। आज के फनकार कार्यक्रम में आज होंगे दिलीप कुमार के कुछ बेमिसाल नायाब संवाद। कोशिश ये रहेगी कि हम कम से कम गाने इस कार्यक्रम में शामिल करें, यानी इस कार्यक्रम को अदाकारे आजम दिलीप कुमार के संवादों से सजाया गया है। तो सबसे पहले मुगले आजम।
2: महाबली का सामना एक लौंडी के लिए
1: नहीं, उसके लिए जो मेरे अहद में मखरूर मुगलों की आबरू और हिंदुस्तान की मलिका बनेगी।
2: हरगिज नहीं, खुददार मुगलों की आबरू इतनी हल्की नहीं कि एक नाचीज लौंडी के बराबर तुल जाए। और हमारा हिंदुस्तान कोई तुम्हारा दिल नहीं कि लौंडी जिसकी मलका बने।
1: तो मेरा दिल भी कोई आपका हिंदुस्तान नहीं जिस पर आप हुकूमत करें।
0: दिलीप कुमार ने संवादों की अपनी अदायगी की शैली धीरे धीरे विकसित की है। सन 1950 की तरफ लौटते हैं, एस यू सनी की फिल्म आई बाबुल, जिसके सितारे थे दिलीप कुमार, नरगिस, मुनव्वर सुल्तान वगैरह। सुनिए उस जमाने में दिलीप कुमार कैसे बोला करते थे।
3: अशोक बाबू, माफी मांगने आई हूँ।
4: आप ही ने दिल का माल उठाया था, आप ही ने उसे गिरा भी दिया। पूछ सकता हूँ ऐसा क्यों किया?
3: इसे तकदीर का खेल समझी, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकती।
4: आग लगा सकती हूँ, वजह नहीं बता सकती।
3: मैं वापिस जाने के लिए नहीं आई, पिताजी ने मेरी शादी कह सकती है। इससे पहले कि आप घर मेरे दरमियान कभी न हटने वाली दीवार खड़ी हो जाए, चलिए कहीं भाग चले।
4: या आपने कोई नई बात नहीं, आजकल की लड़कियाँ जवानी की ठोकर को मोहब्बत की मंजिल समझ लेती है, मगर मेरे नजदीक मोहब्बत की सही मंजिल माँ बाप के कदम है। वो लड़की जिसे माँ बाप की इज्जत से प्यार नहीं, वो दुनिया में कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती। अब आप चलिए।
0: सन 1950 में दिलीप कुमार फिल्म बाबुल में किस तरह अपने संवादों की अदायगी करते थे, ये हमने आपको सुनवाया। आइए अब 36 साल आगे चलते हैं और सुनते हैं सुभाष घई की फिल्म कर्मा का ये सीन।

0: गूंज सुनी तुमने? सुनी ये गूंज? ये गूंज है उस बारूद की जो तुमने मेरी जेल के निहत्ते कैदियों पर बरसाया। ये गूंज है उन कैदियों के यतीम बच्चों की, उनकी विधवा औरतों के भदम की। ये गूंज है उस भारत की ढैंग जिसके गुलशन में तुम आग लगा देना चाहते थे, लेकिन आज तुम खुद उसी भारत की गिरफ्त में हो डैंग। क्यों डॉक्टर डैंग, आया मजा? तुम मुट्ठी भर चंडाल, तुम ये समझते हो इस देश के टुकड़े कर दोगे तुम? मुमकिन है? नामुमकिन। जब जब इस देश में तुम जैसा राक्षस आएगा, मिटा के रख देगा उसे, इस देश का ये तिरंगा।
1: सुभाष घई की फिल्म कर्मा में दिलीप कुमार ने क्या समा बांधा था, लेकिन बहुत कम लोगों को याद रह गया कि दिलीप साहब ने इस फिल्म में एक गाना भी गाया था। जरा एक अंश सुन लें, फिर आपको सुनवाते हैं सबसे पहले दिलीप कुमार ने किस फिल्म में कौन सा गाना गाया था।
2: बड़ा कठिन है प्रश्न ये भैया, आए बारंबार, इस उम्र में पूछे बीवी क्या करते हो प्यार, मुझसे क्या करते हो प्यार। अरे पूछे मेरी बीवी, डू यू लव मी, डू यू लव मी,
3: तो क्या कहा आपने?
2: अरे बरसों से तो कहता आया, आई लव यू, आई लव यू, हर दिन हर पल यही कहूं मैं, आई लव यू, सुबह सवेरे

ये सब सुनकर कहने का मन करता है, दिलीप साहब वी रियली लव यू। इस गाने को सुनवाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि हम आपको बताएंगे दिलीप कुमार ने सबसे पहले आखिर किस फिल्म में गाया था, किसके संगीत निर्देशन में गाया था और कौन सा गाना गाया था। दिलचस्प बात यह है कि ऋषिकेश मुखर्जी ने सन 1957 में निर्देशन की अपनी यात्रा शुरू की दिलीप कुमार के संग। ये फिल्म थी मुसाफिर। संगीतकार थे सलील चौधरी और इसी फिल्म के लिए दिलीप कुमार ने सबसे पहले एक गाना गाया। ये गाना गाया था उन्होंने लता मंगेशकर के साथ। सुनिए ये दुर्लभ गाना।

0: देता।
1: बरसों बरस तक दिलीप कुमार की पहचान रही वो भूमिकाएं जिन्होंने उन्हें ट्रेजेडी किंग बनाया। दिलीप कुमार उदासी के शहंशाह थे और उन दिनों में भी उनके चाहने वाले कम नहीं थे। आइए ऐसी ही कुछ फिल्मों के संवाद सुने जाएं और इन फिल्मों की सरताज देवदास।
2: और मत पियो देवदास।
3: क्या?
2: कुछ ही दिन हुए पीना शुरू की है, इतनी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकूं।
3: कौन कम वक्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूं कि बस सांस ले सकूं और ऐसी जगह से उठकर जाने की ताकत नहीं है ना, तभी तो यहाँ पड़ा रहता हूँ। बस देखता रहता हूँ तुम्हारे मुंह की तरफ, तो भी मैं बिल्कुल बेहोश नहीं होता, कुछ होश रह ही जाता है। होश से कह दो तभी होश ना आने पाए।
2: यहाँ ऐसे लोग भी आते हैं देवदास, जो शराब को छूते भी नहीं।
3: छूते भी नहीं? मेरे पास बंदूक हो तो मैं उन्हें गोली से उड़ा दूँ। वो लोग मुझसे भी बड़े पापी हैं चंद्रमुखी। पहले तो मैं शराब पीना छोड़ूंगा नहीं, और अगर छोड़ दिया तो फिर यहाँ कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा।
1: बात दिलीप कुमार के ऐसे रोल्स की हो रही है जो उदास भूमिकाएं कही जा सकती हैं। सुनिए फिल्म दिल दिया दर्द लिया का ये संवाद। आपको सिर्फ इतना बता दें कि ये फिल्म एमिली ब्रोंटे के मशहूर नॉवेल वुदरिंग हाइट्स पर बनी थी और इसके निर्देशक थे अब्दुल रशीद कारदार। साल 1966।
4: ये औरत की मर्यादा के नाम पर तुम्हारे चरणों में किसी बेगुनाह का दिल किसने रखा है भगवान? क्या तुम इस भेंट को स्वीकार कर सकते हो? क्या तुम इस भेंट को स्वीकार कर सकते हो जिस पर उसी अनाथ के अरमानों का खून लगा हुआ है, जिसने प्यार को अपना धर्म समझा, जिसने दुख और तकलीफों को अपनी परीक्षा की अंगार समझकर अपना सब कुछ चुरा लिया? मैं हूं वो बदबख्त, मैं हूं जिसकी आत्मा एक

0: छाछर की तरह दिन रात इन खंडरों में भटकती है। वो इन दीवारों से टकराती है, उसे किसी करवट एक पल चैन नहीं मिलता, और ये मोहब्बत के गुनाहगार सुख की नींद सोते हैं। ये सुख की नींद सोते हैं, दिन रात खुशियों से खेलते हैं और तुम्हारे चरणों में आकर अपनी पवित्रता का ढोंग रचाते हैं। क्या तुम इन पाखंडियों को अपनी शरण में जगा दोगे? क्या तुम इन पाखंडियों को माफ कर दोगे? औरत को तुमने दया और धर्म की देवी बनाकर इस धरती पर भेजा। उसकी सांसों में तुमने शक्ति दी, उसके सीने में तुमने दया और ममता के सागर भर दिए। फिर ये उस औरत का कौन सा मनहूस रूप बनाया है तुमने, जिसमें न दया है, न वफा है, न कोई धर्म है, न ममता है? ये कौन है? मैं पूछता हूं, ये कौन है जो इस धरती की लाज बनकर इस जमीन पर आई थी और आज इंसानियत का कलंक बनकर तुम्हारे चरणों में खड़ी हुई है? धिक्कार दो इस विश्वासघातनी को, इसको कह दो कि यहां से चली जाए, धरती के उस कोने में जहां वैशी दरिंदे बसते हैं, जहां इंसानियत खुद अपनी ही लाश पर प्यार और शराफत के नाम का मातम करती है, इसको कह दो कि वहां चली जाए।
1: शंकर, मैं यहां से चली जाऊंगी, हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ के कहती हूँ, बस करो शंकर।
0: हरगिज नहीं, तुम्हें इस दुनिया से वही मिलेगा रूपा जो तुमने इस दुनिया को दिया है। तुम इसी तरह रोगी, इसी तरह तड़पोगी, रात की तन्हाइयों में अपनी मौत की भीख मांगोगी, लेकिन तुम्हारी आत्मा तुम्हें चैन से मरने नहीं देगी और मैं तुम्हें चैन से कभी जीने नहीं दूंगा। चल जाओ यहां से।
2: साल 1951, फिल्म दीदार का ये संवाद सुनिए। बात दिलीप कुमार के ट्रेजेडी रोलों की हो रही है।
3: गाना खत्म हो गया सरकार।
1: ओ, गाना खत्म हो गया। बड़ा दर्द है तुम्हारे गाने में कविराज।
3: दर्द का दूसरा नाम गाना है सरकार। मैं गाने की शक्ल में अपना दर्द ही गाया करता हूँ। चंपा, चंपा, बड़ी सखी माई आई है। डॉक्टर तो एक ही रुपया देकर टरका दिया करता, उसने 2 रुपए दिए भैया को।
4: अरे बल्लम, मैंने तो कुछ 10 रुपए की आवाज सुनी थी।
3: आंखें ठीक हो जाएं तो कान का भी इलाज करवा लेना, ऊंचा सुनने लगे हो भैया आजकल। 10 नहीं 2 कहे थे 2।
2: लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब दिलीप कुमार ने ट्रेजेडी किंग के अपने छापे को निकाल फेंका और एक के बाद एक कई कॉमेडी भूमिकाएं की। लेकिन अगर आपको लग रहा होगा कि अब हम कोई कॉमेडी संवाद सुनाने जा रहे हैं तो आप गलत समझ रहे हैं। अभी जरा दिलीप कुमार का ये रोमांटिक संवाद सुनिए। जरा सुनिए कि दिलीप कुमार मीना कुमारी से अपनी अदाओं के जरिए कितनी रूमानी बातें कह रहे हैं।
5: कब आए?
6: सदियां बीत गई, हजारों साल गुजर गए।
5: हाँ, इतना बड़ा झूठ।
6: इनसे पूछ लो, ये मेरे गवाह हैं। तुम्हारे बिना एक एक पल 100-100 साल का लगता है। तुमने अपने आप को ठीक तरह से देखा नहीं ना, यही तो मुश्किल है। भगवान ने कितनी अच्छी तरह तुमको सजाकर इस दुनिया में भेजा है। आंखें एक जैसे झील में खिले हुए 2 कवल देखती हैं तो आकाश में इंद्रधनुष खिल उठते हैं, और शर्माती हैं तो कलियों का सर झुक जाता है। रूपा, तुम्हारे इन जुल्फों की छाव के सिवा मेरे लिए दुनिया में कोई जगह नहीं है। रूपा,
5: ऐसी बातें करोगे तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। शंकर,
6: तुम चली जाओगी तो फिर एक एक पल मेरे लिए 100-100 साल का हो जाएगा।
5: शंकर,
6: रूपा।
2: दिलीप कुमार की खासियत है अपनी भूमिकाओं में पूरी तरह से डूब जाना और संवादों की ऐसी अदायगी कि लोग अश अश कर उठें।
7: मैंने लोगों का अधिकार छीना। जब लोग भूख से मर रहे थे तो हम उनके हिस्से का अनाज ऊंचे दामों में बेचकर अपने खजाने भर रहे थे। जब शहर में बीमारी फैली तो हमने दवाइयां छुपा ली और उनके दाम बढ़ा दिए। जब हमें मालूम हुआ कि पुलिस हम पर छापा मारने वाली है तो हमने वही दवाइयां गंदे नालों में फेंकवा दी। मगर आदमी की अमानत को आदमी के काम नहीं आने दिया। मुझे अपने बदन से सड़ी हुई लाशों की बू आती है। अपने हर सांस में मुझे दम तोड़ते हुए बच्चों की सिसकियां सुनाई देती हैं। वाणी ठीक कहता था, मैं आदमी नहीं हूं, मैं एक खूनी दरिंदा हूं। जिन दवाइयों से उसकी जान बच सकती थी उनका एक ढेर हमारे गोदाम में बंद था। वाणी के पास दाम नहीं थे, वो मर गया।
6: मेरा भाई मर गया।
7: अपने हमदर्द भाई की मोहब्बत का ये बदला दिया मैंने उसे। अपने हाथों से उसका गला घोंट दिया। इन नापाक हाथों पर वाणी का मुकद्दस खून लगा हुआ है। ये दाग, ये धब्बे कभी नहीं धुल सकते। मेरे माथे पर लगा हुआ कलंक कभी नहीं मिट सकता, कभी नहीं मिट सकता।
6: हम जैसे जलील कुत्तों के लिए आप

0: पुलिस को अपना बयान देने से इनकार क्यों किया तुमने?
1: क्या मेरे बयान देने के बाद आप या आपकी पुलिस मुझे बेकसूर समझेगी?
0: तुम अच्छी तरह जानते हो विजय, तुम्हें बेकसूर समझना या मुजरिम ठहराना ये पुलिस का काम नहीं है। इसका फैसला अदालत में होगा।
1: तो फिर मैं बयान भी अदालत में ही दूंगा।
0: विजय, अगर तुम बेकसूर हो तो पुलिस की मदद करना तुम्हारा फर्ज है।
1: मैं तो हमेशा ही बेकसूर था डैडी, लेकिन मेरी मदद करना तो आपने कभी अपना फर्ज नहीं समझा।
0: ये मत भूलो कि मैं यहाँ एक बाप की हैसियत से नहीं, पुलिस ऑफिसर की हैसियत से बात कर रहा हूँ।
1: कौन सी नई बात है? आपने मुझसे हमेशा एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से ही बात की है।
0: देखो विजय, तुमको अगर मुझसे कोई गिला है या कोई शिकायत है, वो गलत है या सही है अपनी जगह है, लेकिन यहाँ इस जगह तुम्हें भूल जाना चाहिए कि तुम मेरे बेटे हो।
2: सुभाष घई की फिल्म सौदागर में एक बार फिर हुआ राजकुमार और दिलीप कुमार का आमना सामना। आपको बता दें, इससे पहले दिलीप कुमार और राजकुमार सन 1959 में फिल्म पैगाम में आमने सामने आ चुके थे। फिल्म सौदागर।
3: हम तुम्हें देखकर हैरान नहीं हुए वीर सिंह।
4: और तन्ने देखकर कोई खास परेशानी हमको भी ना हुई। वही पुराना रंग, वही ढंग, वही मिजाज, वही घमंड।
3: वो तो था और है और हमेशा रहेगा।
4: वो रहे न रहे पर एक फर्क तो आ गया जरूर राजेश्वर। वो जो तू आसमानों पे उड़ता फिरे था ना, आज तेरे पैर जमीन पर लग।
3: राजेश्वर जमीन पर रहकर भी आसमान में उड़ता है वीर सिंह।
4: समझ गया। हाँ तो दिखा अपनी उड़ान अब। जो खड़ा तू और जो खड़ा मैं और जरा बीच में पिस्तौल। उठाए पिस्तौल और चला गोली मुझ पर। निकाल ले तो अपने दिल के अरमान। मैं तेरे सामने खड़ा हूँ।
3: हम खैरात नहीं लेते वीर सिंह। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा।
4: बंदूक तेरी, गोली भी तेरी, दिन तारीख भी तेरा, सुबह बोले सुबह, शाम का शाम। आवाज दे तू, वीर सिंह तेरे को सामने खड़ा मिलेगा।
2: सन 1984 में यश चोपड़ा की फिल्म मशाल में दिलीप कुमार ने एक ऐसा सीन किया जिसे सुने या देखें ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी आंखें नम न हो जाएं।
5: सुधा, सुधा, थोड़ी देर और हिम्मत कर जाओ सुधा। नहीं, अभी कुछ करते हैं, अभी कुछ करते हैं सुधा।
6: ए भाई, ए भाई, ओ भाई साहब, गाड़ियों का भाई, गाड़ियों का, बता जरा भाई। अरे सब, ये सब गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, अस्पताल पहुंचा दो भाई साहब।
5: थोड़ी देर हिम्मत कर जाओ, मैं कुछ करता हूँ, मैं कुछ करता हूँ सुधा। ए भाई साहब, अरे गाड़ी रोको भाई, गाड़ी रोको। अरे इधर देखो क्या हो रहा है भाई, अरे बुरा हाल है बेचारी का, अस्पताल पहुंचा दो। अरे कोई है? अरे कोई बचा लो रे। अरे दरवाजा खोलो भाई, ऊपर कोई डॉक्टर है? बुरी हालत है भाई। गाड़ी रोको, ए भाई साहब गाड़ी रोक दो, गाड़ी रोको भाई साहब। ए भाई साहब, मेरी बीवी की हालत बहुत खराब है, उसको उसको अस्पताल पहुंचाना है। भाई साहब वो मर जाएगी, आपके बच्चे जिए, हमारी इतनी मदद कर दो, उसको अस्पताल पहुंचा दो भाई साहब। भाई साहब आपके बच्चे जिए। भाई गाड़ी रोको, ए भाई गाड़ी रोक दो, मेरी बीवी को अस्पताल पहुंचा दो भाई साहब। ए भाई साहब,
2: आज के फनकार कार्यक्रम में आज हमने अदाकारे आजम दिलीप कुमार के अभिनय की यात्रा से आपको रूबरू करवाया। आज का ये कार्यक्रम दिलीप कुमार के कुछ बेमिसाल संवादों से सजाया गया था। हमें उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयोग पसंद आया होगा। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी।
7: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
3: AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। और लीजिए अब सुनिए छिंदवाड़ा जिले की चिट्ठी।
4: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है छिंदवाड़ा जिले की चिट्ठी। आलेख राकेश प्रजापति, वाचन स्वर दीपा सिंह। छिंदवाड़ा और नवगठित पांडुना जिले की आबोहवा में इन दिनों विकास, जागरूकता और सकारात्मक बदलाव की नई बयार बह रही है। खेतों में लहलहाती उम्मीदों से लेकर पर्यटन के नए क्षेत्रों तक और युवाओं के भविष्य को संवारने से लेकर आम जनमानस की सुरक्षा तक जिले में बहुत कुछ खास हो रहा है। वर्षा ऋतु के आगमन के साथ ही प्रकृति ने नई चादर ओढ़ ली है। छिंदवाड़ा और पांडुना जिले में वन विभाग द्वारा व्यापक पौधरोपण अभियान का शंखनाद कर दिया गया है। जिले के हरित आवरण को बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से इस वर्ष दोनों जिलों में कुल 22,55,000 पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है। छिंदवाड़ा के मुख्य वन रक्षक कमल अरोरा के अनुसार हाल ही में अतिक्रमण से मुक्त कराई गई वन भूमियों को पुनः हरा भरा करने के लिए 3,69,000 सागौन के रूट शूट चरणबद्ध तरीके से लगाए जाएंगे। मॉनसून की पहली बारिश के साथ शुरू हुआ ये महाअभियान जैव विविधता को समृद्ध करने की दिशा में एक मील का पत्थर है। जुनारदेव के वनग्राम कालीमाती में गायत्री परिवार के तत्वाधान में 1100 पौधे रोपे गए। यहां वन विभाग की भूमि पर पंचमटी, त्रिवेणी और 9 पौधों की नवग्रह वाटिका स्थापित की गई है। वहीं परासिया में एक अभिनव प्रयास किया जा रहा है। वीरान पहाड़ी पर हरियाली लगाने के लिए सीड बॉल, गोबर और मिट्टी की गोलियों का उपयोग हो रहा है। बारिश में भीगने के बाद इन गोलियों के भीतर मौजूद बीज आसानी से अंकुरित हो जाएंगे। पर्यावरण प्रेमी राजेंद्र बबुआ यादव ने शनिधाम समिति को ये सीड बॉल भेंट किए हैं, जो कोल इंडिया की पूर्व सीएमओ डॉ जयश्री राय द्वारा बेंगलुरु से मंगवाए गए थे। अब बात करते हैं माटी से जुड़े हमारे अन्नदाताओं की। कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत परासिया विकासखंड के ग्राम उमरेत के युवा प्रगतिशील किसान संदीप पवार ने वैज्ञानिक खेती की एक शानदार मिसाल पेश की है। उन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रिप सिंचाई प्रणाली अपनाकर हरी मिर्च, करेला और शिमला मिर्च का बंपर उत्पादन किया है। उन्होंने 11,50,000 रुपए की लागत लगाकर 24,75,000 रुपए की आय प्राप्त की है। उनका शुद्ध लाभ पूरे अंचल के किसानों के लिए एक नजीर बन गया है। दूसरी ओर मॉनसून की देरी से खरीफ फसलों की बोनी भले ही थोड़ी प्रभावित हुई है, लेकिन कभी पीला सोना कहे जाने वाले सोयाबीन का रकबा इस वर्ष बढ़कर 9,000 हेक्टेयर प्रस्तावित किया गया है। बारिश और जल संरक्षण की बात करें तो जलगंगा संवर्धन अभियान में छिंदवाड़ा ने एक नया कीर्तिमान रच दिया है। जिले ने अपने निर्धारित लक्ष्य का 132% हासिल करते हुए 64,000 से अधिक कार्य पूरे किए हैं। पांडुना जिले में भी इस अभियान का भव्य समापन जन भागीदारी के साथ हुआ। पांडुना के ग्राम पंचायत भवन तेगांव में जगन्नाथ नेत्रालय द्वारा एक निशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 105 मरीजों की जांच की गई और 25 को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चुना गया। अब बात करते हैं पर्यटन की, जो इस क्षेत्र की नई पहचान बन रहा है। तामिया के पातालकोट की वादियां इस बार अगस्त माह में पहली बार 3 दिवसीय सावन महोत्सव के गवाह बनेंगी। पर्यटकों को यहां सावन के विशेष झूले, बैलगाड़ी की सवारी और हस्तशिल्प प्रदर्शनी देखने को मिलेगी। वल्चर पॉइंट, चीड़ पॉइंट और छोटा महादेव में ट्रैकिंग के जरिए रोमांच का तड़का भी लगेगा। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने ग्रामीण पर्यटन के लिए पांडुना के भूमा और जामसावली गाँव का चयन किया है, जहाँ होम स्टे विकसित कर युवाओं को रोजगार मिलेगा। जिले के जामसावली स्थित प्रसिद्ध श्री हनुमान मंदिर हनुमान लोक में इंटेलिजेंस स्पेशल ब्रांच द्वारा सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को लेकर समीक्षा की गई, ताकि श्रद्धालु सुव्यवस्थित दर्शन कर सकें। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और नकुलनाथ की पहल पर 12वीं और स्नातक में 60% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थी अब महानगरों में एमसीए, बीटेक और एलएलबी जैसी उच्च शिक्षा निःशुल्क प्राप्त कर सकेंगे। रोजगार के मोर्चे पर छिंदवाड़ा आईटीआई के एक प्लेसमेंट ड्राइव में 139 प्रशिक्षणार्थियों को, जिनमें 52 पुरुष और 87 महिलाओं को रोजगार के लिए चुना गया है। इसके अलावा युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए पांडुना के पीएम कॉलेज ऑफ एक्सलेंस में तनाव प्रबंधन और आत्महत्या की रोकथाम पर एक अहम कार्यशाला आयोजित की गई। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे छिंदवाड़ा जिले की चिट्ठी। आलेख राकेश प्रजापति का था और वाचन स्वर दीपा सिंह का। मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल सादी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण।
1: आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रागिनी। इसमें हम आपको सुनवा रहे हैं श्रीमती धोंदुताई कुलकर्णी से राग मीरा मल्हार। बंदिश झपताल में निबद्ध है, तो आइए सुनते हैं राग मीरा मल्हार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राग मीरा मल्हार। गायन स्वर था श्रीमती धोंदूताई कुलकर्णी का। बंदिश झपताल में निबद्ध थी।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों 350 cc तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।
2: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार तक। समय होता है सुबह 11 से 11:30 बजे तक।

0: आपका व्यापार आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770442297।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: आपके सवाल, आपके विचार, सुनिए सागर संवाद, जहां हर नागरिक बनता है अपने शहर की आवाज। आप भी बोलिए, क्योंकि आपकी बात ही बनेगी सागर की बात। सागर संवाद, अपनी बात आकाशवाणी के साथ। सुनिए सागर संवाद आकाशवाणी सागर से महीने के पहले और पांचवें शुक्रवार को रात्रि 8:30 बजे से।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रागिनी, जो कि अब संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 MHz पर। सुबह के 10:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है, और आइए चलते हैं कार्यक्रम में इस पहले फरमाइशी गीत की ओर।

प्यासा सावन। इस फिल्म से यह गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें थीं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की। गीत लिखा था संतोष आनंद ने, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फरमाइश थी आप सभी की। मेरठ से अनिल जैन, संयम, मुस्कान, जीव्यम और आपके सभी साथी। बीड शहर से किशन, सपकाल, आशा, सोनिया, साईराज और विशाल। कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति, ओजस्वी और आपके सभी साथी। जालना से सोमनाथ जाधव, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ, संगीता, अनीता, आरती प्रसाद, सोनल, सिया, सुरेश और आपके सभी साथी। गौर झामर सागर से कुंदनलाल चौरसिया, अंबिका प्रसाद, विवेक कुमार, वीरेंद्र कुमार, देवव्रत, कार्तिक आराध्य, नैवेद्य, मनोज मानस और आपके सभी साथी। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम में ये फरमाइशी नगमा।

चश्मे बद्दूर इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ें थीं यशुदास और हेमंती की, शब्द रचना थी इंदु जैन की और संगीत था राज कमल का। फरमाइश थी आप सभी की महाराष्ट्र से गंगाधर ये मेकर, प्रमोद, प्रदीप और आपके सभी साथी, वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी, लवली, आरती अरोरा और आपके सभी साथी, श्रीरामपुर से अशोक कुंभार, अविका, जीविका, सोनू, अर्चना और आपके परिवार के सभी सदस्य, डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित, लकी, तानिया और आपके सभी मित्रगण, संभाजीनगर महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोड़के, वैशाली, प्राजक्ता, वैष्णवी, गायत्री, यज्ञेश और आपके सभी साथी, बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक, समर्थ, शौर्य और आपके सभी साथी। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम में ये फरमाइशी गीत।

ताल, इस फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। आवाज़ें थीं अलका याग्निक और उदित नारायण की। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत था AR रहमान का। फरमाइश थी आप सभी की। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश, गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी, निमित, आहूजा और आपके सभी साथी। सनावद मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, मूसा, राजकुमार, सुदामा, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, जगताप और आपके सभी साथी। लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास, मानिकपुरी, राजा दास, रानी, उज्जवल और आपके सभी साथी। खंडवा से अब्दुल गफ्फार, जियाउल हक, डावर, उमर, राजेंद्र कटारे। भाटापारा से सुहन जोशी, पायल जोशी और आपके सभी साथी। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव, भानु और आपके सभी साथी। और अब सुनिए कार्यक्रम में ये अगला और अंतिम फरमाइशी गीत।

काइट्स इस फिल्म से यह गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज थी केके की। गीत लिखा था नासिर फराज ने, संगीत था राजेश रोशन का। फरमाइश थी आप सभी की। दुर्ग से संजय साहू, सुजाता, शशांक और सीमा। खरगोन से तिलक चंद्र वर्मा, भागवत, अभिषेक, सीमा, अमित, सचिन, समर, आर्यन, आरोही, ऐशिका, अंजलि, श्वेता और आपके सभी साथी। लालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे, सुशीला, मेघा, नेहा, येशु और आपके सभी साथी। पहलगाम से पीरजदा, मिराजुद्दीन और आपके सभी साथी। इसी के साथ कार्यक्रम आपकी पसंद अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 11 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम उमंग में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने। लिखते हैं,
2: संभव कार्य करने के लिए ताकत चाहिए किंतु असंभव कार्य करने के लिए आत्मविश्वास और समर्पण चाहिए।
0: बहुत सुंदर विचार, आप सबको धन्यवाद। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ लुकाऊपाली छतवन से पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला सिंह, निहारिका सिंह और पंकज सिंह सूर्यवंशी।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
0: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामन शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
0: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू।
2: और राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे आपके सबके प्यारे कार्यक्रम उमंग से। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी विभिन्न खनिजों के बारे में। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि आई तो जरूर लिख भेजिएगा अपनी प्रतिक्रियाएं।
0: जी
2: तो अजीत जी, क्यों न इस सप्ताह हम चर्चा करें एक ऐसी चीज की जो हम सबके चारों ओर उपलब्ध है, वो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी भी है, लेकिन
0: जी लेकिन उनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की।
2: जी
0: आज हम चर्चा करेंगे पेड़ों के बारे में और लेंगे उनके बारे में दुर्लभ जानकारियाँ। तो आइए शुरू करते हैं विमलेश जी से।
2: जी अजीत जी, तो श्रोताओं आपको बता दें, पेड़ हमारे ग्रह यानी पृथ्वी के सबसे पुराने, बड़े और महत्वपूर्ण जीव हैं। इनकी उत्पत्ति लगभग 40 करोड़ साल पहले हुई थी। ये जानवरों और मनुष्यों की उत्पत्ति से भी बहुत पहले के हैं।
0: जी विमलेश जी, प्राप्त दुर्लभ जीवाश्मों से पता चलता है कि पेड़ पौधों के पैदा होने के लगभग 40 करोड़ वर्षों के बाद मनुष्य और शेष जीव जगत अस्तित्व में आया।
2: जी
0: विमलेश जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर क्या परिवर्तन आए।
2: जी अजीत जी, सचमुच ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर ऑक्सीजन बढ़ी, मिट्टी बनी और

0: कार्बनिक गैसें कम हुई, जिनसे जानवरों के लिए भूमि पर रहना आसान हुआ। बिना पेड़ों के ऑक्सीजन कम मिलती, जिसके कारण स्थलीय जीवों का रहना असंभव हो जाता।
1: जी, तो ये तो बात हुई पेड़ पौधों की उत्पत्ति की।
0: जी,
1: चलिए अब जानते हैं पेड़ों के बारे में कुछ रोचक बातें। इनकी दुनिया ऐसे दुर्लभ और अनोखे रहस्यों से भरी है जो श्रोताओं सचमुच हमें हैरान कर देंगी।
0: जी सचमुच। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि पेड़ों का अपना सोशल नेटवर्क होता है, जिसे वनस्पति विज्ञानी वुड वाइड वेब कहते हैं।
1: अरे वाह, वुड वाइड वेब, यानी यहाँ भी इंटरनेट की तरह www है।
0: जी,
1: लेकिन विमलेश जी, ये होता क्या है?
0: अजीत जी, ये कोई इंटरनेट नहीं है, लेकिन पेड़ों और पौधों के बीच भूमिगत संचार का प्राकृतिक जाल है।
1: जी, हमने अक्सर मातृ वृक्षों के बारे में सुना और जाना है।
0: बिल्कुल।
1: मातृ वृक्ष उन्हें कहते हैं जो वृक्षों के समूह में सबसे बड़े और पुराने होते हैं। उनकी जड़ें सूक्ष्म कवक या फंगस द्वारा दूसरे पेड़ों से जुड़ जाती हैं।
0: जी।
1: इसके माध्यम से पेड़ आपस में पानी, पोषक तत्व और रासायनिक संदेश एक दूसरे को भेज सकते हैं।
0: जी, ये जड़ें कमजोर या छोटे पौधों को पानी और अन्य पोषक तत्व भेजती रहती हैं। ऐसे पेड़ों को मातृवृक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि वे एक माता की तरह दूसरे पेड़ पौधों का पालन पोषण करते हैं। तो ये तो बात हुई पोषक तत्वों की। अजीत जी, आपने कहा कि पेड़ एक दूसरे को रासायनिक संदेश भी भेजते हैं, इसे जरा श्रोताओं को तो बताइए।
1: जी विमलेश जी, ये जानना सचमुच बहुत रोचक होगा। देखिए, पेड़ पौधे बोल तो नहीं सकते, लेकिन वे रासायनिक संकेतों के माध्यम से एक दूसरे को हवा और कवकों के माध्यम से संदेश भेजते हैं।
0: जी,
1: ये प्रकृति की अद्भुत व्यवस्था है।
0: श्रोताओं, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब किसी पेड़ या पौधे पर कीटाणु हमला करते हैं, तो वे पत्तियों द्वारा हवा में एक विशेष प्रकार का रसायन छोड़ते हैं, जिसे दूसरे पौधे या पेड़ मानो सूंघ लेते हैं और वे पहले से ही रक्षा रसायन बनाना शुरू कर देते हैं,
1: और इस प्रकार से उन्हें आने वाले खतरे की चेतावनी मिल जाती है। इससे उनकी रक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है। वैज्ञानिकों ने ये भी पाया है कि पेड़ पौधों में बहुत धीमे विद्युत संकेत भी कार्य करते हैं।
0: तो श्रोताओं, पेड़ों के बीच का संचार मूक है, लेकिन बहुत प्रभावशाली होता है। वे बेशक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन रसायनों, आपस में जुड़ी हुई जड़ों, कवकों और विद्युत संकेतों द्वारा वे आपस में संवाद कर सकते हैं।
1: एक बात और श्रोताओं, पेड़ पौधों में भी रोगों या चोट के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता होती है। जब उनकी छाल कटती है या छीली जाती है, तो वे एक प्रकार का रसायन बनाकर अपने घाव को भरने का प्रयास करते हैं।
0: जी।
1: इसलिए आपने देखा होगा कि जब इनकी छाल छीली जाती है, तो कुछ समय बाद वहाँ नई छाल विकसित हो जाती है। ये ऐसा ही है जैसा कि हमारा शरीर भी प्राकृतिक रूप से घावों को भर सकता है।
0: इसलिए जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े जीवित समुदाय की तरह कार्य करता है। तो श्रोताओं, कैसी लगी ये जानकारी, हमें जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है श्रोताओं, मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों?
1: आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत गीत संगीत से भरा कार्यक्रम चींटी।
0: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसमें चींटी के परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बारे में एक सुंदर गीत द्वारा बताया गया है, तथा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन में निष्ठा और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें।
1: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
1: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
1: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
1: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
1: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
1: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
1: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर
1: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
1: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती,
1: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी।
1: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
2: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
1: हमको यही सिखाती चींटी,
2: हमको यही सिखाती चींटी।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत चींटी, और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है नील के किनारे।
1: इस कार्यक्रम में मिस्र की प्राचीन सभ्यता के विकास में नील नदी की भूमिका के बारे में बताया गया है।
2: Your attention please. Air India announces the arrival of its flight number AI-806 from Bombay. Your attention please. Air India announces.
3: पापा, कायरा का ये हवाई अड्डा कितना शानदार है।
4: हाँ बेटा।
3: दादाजी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे।
4: यही कहीं होंगे, अभी मिल जाएंगे। अच्छा चलो, सामान की ट्रॉली लेकर उधर से निकल चलते हैं।
3: मुझे लगता है दादाजी आए ही नहीं। याद है जब हम उनके पास मॉरिशस गए थे ना, तब भी वो हमें लेने नहीं आए थे।
4: अरे बेटी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो जानबूझकर हमें लेने नहीं आए थे। याद नहीं, उन्हें भारतीय दूतावास के किसी जरूरी काम से सुरीनाम जाना पड़ गया था।
3: तो अब भी उन्हें दूतावास के काम से कहीं जाना पड़ गया होगा।
4: हो सकता है कि...
5: हेलो मिस्टर वर्मा, माफ कीजिए मुझे आने में देर होगी।
4: अरे कादिर, तुम पिताजी नहीं आए?
5: दरअसल उन्हें किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। उन्होंने कल रात मुझे फोन करके कहा कि मैं आपको लेने हवाई अड्डे पहुंच जाऊं। आपको घुमाने की जिम्मेदारी भी मेरी।
4: अच्छा अच्छा, कादिर मेरी बेटी श्वेता से मिली। और श्वेता, ये हैं अब्दुल कादिर मोहम्मद फादिल।
6: अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह श्वेता बिटिया को तो मिस्री अभिवादन भी आता है। चलिए मिस्टर वर्मा, बाहर गाड़ी खड़ी है, आपको आपके पिताजी के घर पहुँचा दो।
4: ठीक है, चलो श्वेता अपना हैंडबैग उठा लो, आओ आओ चलो।

0: तुम्हारा शोध कार्य कैसा चल रहा है?
1: अब तो पूरा होने वाला है।
2: कादिर अंकल, आप किस पर शोध कर रहे हैं?
1: मिस्र की प्राचीन सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता की पारस्परिक समानताओं पर।
0: इसी सिलसिले में कादिर 2 साल भारत में भी आकर रहे थे।
2: अच्छा, तभी तो आप इतनी अच्छी हिंदुस्तानी बोल लेते हैं।
3: अरे कादिर अंकल, मैंने तो सोचा था काहिरा पुराने ढंग का शहर होगा, लेकिन यहाँ तो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं।
1: बेटा, ये काहिरा का नया भाग है। जैसे तुम्हारी नई दिल्ली है ना, काहिरा भी दिल्ली की तरह कई बार उजड़ा और कई बार बसा। दिल्ली की ही तरह इसके नाम भी बदलते रहे। आज इसका नाम अल काहिरा है।
3: अच्छा, काहिरा नहीं अल काहिरा।
1: हाँ।
3: पापा पापा, वो देखो नील नदी है ना।
0: हाँ, वो नील नदी ही है। काहिरा शहर नील के किनारे बसा हुआ है। जानती हो, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6648 किलोमीटर है।
1: लीजिए, वो रहा आपके पिताजी का घर। मिस्टर वर्मा, घर में एक नौकर है, वो आपकी देखभाल करेगा। अभी आप लोग आराम करें, मैं शाम को आऊंगा, फिर आपको काहिरा शहर घुमाने ले चलूंगा।
0: अरे कादिर भाई, एक प्याला चाय तो पीते जाओ।
1: नहीं, अभी नहीं, शाम को। अभी मुझे एक व्यक्ति से मिलने जाना है अपने शोध कार्य के सिलसिले में। अच्छा, मैं चलता हूं।
0: अच्छा अच्छा।

0: कादिर अंकल, ये बाजार तो बिल्कुल पुरानी दिल्ली जैसा है। फुटपाथ पर लोगों ने दुकानें लगा रखी हैं और देखिए कैसे आवाजें लगा लगा कर सामान बेच रहे हैं।
1: और वो देखो उस दुकान पर सूती कपड़े के कितने थान रखे हैं। जानती हो बेटी, मिस्र की कपास सबसे बढ़िया मानी जाती है।
0: पापा, यहाँ के लोगों की वेशभूषा कितनी अच्छी है। पुरुषों ने लंबा सा चोगा पहन रखा है और ढीला पजामा, सिर पर टोपी है।
2: इस चोगे को गलाबिया कहते हैं।
1: और वो देखो औरतों ने लंबी बाहों वाले कुर्ते पहन रखे हैं।
0: हाँ, बुर्के में कुछ ठीक से दिख नहीं रहा। अच्छा कादिर अंकल, सभी औरतों ने तो बुर्का नहीं पहन रखा, ऐसा क्यों?
2: अब धीरे धीरे बुर्के का रिवाज कम होता जा रहा है।
1: अरे बाप रे, यहाँ कितनी भीड़ है। कादिर, क्या आज कोई खास बात है?
2: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, खास बात यही है कि यहाँ की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। रोजगार की तलाश में लोग गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं। जानते हैं काहिरा की जनसंख्या 1000 व्यक्ति प्रतिदिन की दर से बढ़ रही है, और नतीजा ये कि यहाँ लोगों के पास रहने को घर नहीं।
0: अच्छा, तो फिर ये लोग कहाँ रहते हैं?
2: कुछ लोग इमारतों की छतों पर अपना घर बना लेते हैं, कुछ मकबरों और कब्रिस्तान में डेरा जमा लेते हैं, कुछ तो झुग्गियां बनाकर रहते हैं।
0: दिल्ली में भी तो बहुत से लोग झुग्गियों में ही रहते हैं।
2: हाँ, मैंने कहा था ना कि दिल्ली और काहिरा की बहुत सी बातें मिलती हैं। चलो आओ, तुम्हें जलेबी खिलवाएं।
0: जलेबी? वैसी ही जैसे हमारे देश में मिलती है?
2: हाँ बिल्कुल वैसी।
1: कमाल है
2: मिस्टर वर्मा, जलेबी नहीं, यहाँ बालूशाही, फेनी, मेवे का हलवा, सभी मिठाइयाँ मिलती हैं।
1: वाह।
2: और ईद के मौके पर सिवैयाँ भी मिलती हैं।
0: मैं तो मेवे का हलवा खाऊंगी।
2: ठीक है, चलो उस कोने पर दुकान है जहाँ मेवे का हलवा बहुत बढ़िया बनता है,
1: और इसके बाद घर लौट जाएंगे।
0: इतने जल्दी?
1: अरे कल सुबह पिरामिड देखने नहीं जाना क्या?
0: हाँ, जाना है।
2: फिर ठीक है, कल मैं आप लोगों को सुबह लेने आऊंगा। अभी चलकर मेवे का हलवा खाते हैं।
0: हाँ।

0: पापा, यहाँ तो चारों तरफ रेगिस्तान है। हम लोग काहिरा से कितनी दूर आ गए हैं?
1: कोई 8 मील दूर। वो देखो श्वेता, वो रहा गीजा का महान स्फिंक्स।
0: बाप रे, कितना विशाल है
1: ये स्फिंक्स। 18 मीटर ऊंचा और 57 मीटर लंबा है। कहते हैं ये 5000 वर्ष पुराना है।
0: अच्छा कादिर अंकल, स्फिंक्स का चेहरा आदमी जैसा और बाकी शरीर बैठे हुए शेर जैसा क्यों बनाया गया है?
1: पहले लोग ये रहस्य नहीं जानते थे, लेकिन फिर इस विशाल स्फिंक्स के पंजों के बीच एक प्रार्थना कक्ष में एक शिलालेख मिला, जिससे पता चला कि ये स्फिंक्स सूर्य देव हर्माचीज का एक रूप है। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी जिससे ये गीजा के पिरामिडों को शैतानी शक्तियों से बचा सके।
2: वाकई बड़ा भव्य है। अच्छा ठीक है, अब भीतर चलकर पिरामिड देखते हैं। आओ।
0: चलिए पापा।
1: यहाँ गीजा में 3 पिरामिड हैं। वो देखो सबसे बड़ा पिरामिड, जानती हो श्वेता इसकी ऊंचाई कितनी है?
0: क्या पता, ये तो पहाड़ जैसा लगता है।
1: हाँ, इसकी लंबाई 147 मीटर है।
0: कादिर अंकल, इन्हें क्यों बनवाया गया था?
1: दरअसल ये पिरामिड प्राचीन मिस्र के राजाओं या फैरों के मकबरे हैं, जैसे आगरे का ताजमहल है ना।
2: इसका मतलब इन पिरामिडों में फैरों की कब्रें हैं।
1: कब्रें नहीं है, शव रखे हैं, जिन्हें ममी कहते हैं। ममी शब्द अरबी भाषा से आया है, जिसका मतलब है संरक्षित शरीर।
0: मिस्री लोग शव को संरक्षित क्यों रखते थे?
1: उनका विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। वो ये मानते थे कि आत्मा पक्षी की तरह दिन भर उड़ती फिरती है और रात होने पर अपने शरीर में लौट आती है। इसलिए शरीर को संरक्षित करना जरूरी था, नहीं तो वो लौट कर कहां आती।
2: कादिर, ममी बनाने का काम बड़ा जटिल होता होगा।
1: हाँ मिस्टर वर्मा, इसमें 70 दिन लगा करते थे।
2: ओ, तो क्या हर व्यक्ति की ममी बनाई जाती थी?
1: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, प्राचीन मिस्र के लोग शव को रेगिस्तान की गर्म रेत में दफना दिया करते थे और रेत उन्हें सुरक्षित रखती थी। फिर बाद में महत्वपूर्ण लोगों के लिए मकबरे बनाए जाने लगे, लेकिन इन मकबरों के भीतर उतना सूखापन नहीं होता था जितना बाहर की रेत में होता था।
2: ओ,
1: इसलिए शव को संरक्षित करना जरूरी हो गया, नहीं तो वे नष्ट हो जाते।
0: पापा पापा, वो देखिए एक लड़का कितनी तेजी से उस पिरामिड पर चढ़ा चला जा रहा है।
1: बस अब तुम कुछ पैसे निकाल लो।
0: किस लिए?
1: ये लड़का 6 मिनट 47 सेकंड में पिरामिड पर चढ़कर लौट आएगा और इस कर्तव्य के लिए पर्यटकों से इनाम मांगेगा।
2: अरे वो देखो वो उतरने भी लगा।
0: पापा, आगरा के पास फतेहपुर सीकरी का जो किला है ना, उसके 54 मीटर बुलंद दरवाजे से भी तो एक आदमी नीचे पानी के कुंड में छलांग लगाता है और फिर देखने वालों से इनाम लेता है।
2: अरे लो, वो उतरकर हमारी ओर ही आ रहा है। वाह वाह, शाबाश बेटा शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। ये लो, ये हमारी तरफ से इनाम।
0: पापा, मैं भी पिरामिड पर चढ़कर देखूं?
2: अरे नहीं बेटा, ये इतना आसान नहीं है, थककर चूर हो जाओगी। देखो अभी तो स्टीमर में बैठकर हमें नील नदी की सैर भी करनी है। हाँ
0: तो फिर चलिए।
2: हाँ तो आओ, चलो आओ, खादे आओ।

0: कहो कैसा लग रहा है?
1: बहुत अच्छा अंकल, देखिए काहिरा शहर तो वो पीछे छूट गया। पापा कहाँ हैं?
0: अभी आ रहे हैं, स्टीमर की कैंटीन से कुछ खाने पीने का सामान लेने गए।
1: चलो अच्छा है, मुझे बड़े जोरों से भूख लगी है।
0: वो देखो श्वेता, नील नदी के दोनों ओर हरे भरे खेत दिख रहे हैं।
1: और खेतों में वो औरतें क्या कर रही हैं?
0: कपास चुन रही हैं। जानती हो कपास नील घाटी की प्रमुख फसल है। यहाँ एक साल में कपास की 3 फसलें उगाई जाती है।
1: अच्छा, उस खेत में किसान हल चला रहा है और बैल हल खींच रहे हैं। ये तो हमारे देश जैसा ही है। अंकल यहाँ ट्रैक्टर नहीं चलते?
0: अरे मिस्र में खेती की जमीन ही कितनी है, बस नील नदी के किनारे किनारे ही तो, बाकी सब तो रेगिस्तान ही है।
2: फिर भी हमें आपका देश बहुत आकर्षक लग रहा है।
1: पापा मेरे लिए खाने को क्या लाए?
2: ये तले हुए आलू, डबल रोटी की सैंडविच, दूध और कहवा।
0: ओह शुक्रिया, मिस्र की 3 खास चीजें हैं, कहवा, गप्पे और हुक्का।
2: अच्छा ठीक है, तो कहवा तो ये रहा, अब गप और हो जाए।
0: इसके लिए तो आपको किसी कहवा घर में चलना पड़ेगा।
2: क्यों?
0: वहाँ लोग कहवा पीते हैं, हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और गप मारते हैं।

0: अंकल, वो औरतें सर पर क्या रख कर लेके जा रही हैं?
1: अपने आदमियों के लिए खाना। किसान सुबह से शाम तक खेतों पर काम करते हैं और औरतें घर व बच्चों की देखभाल करती हैं और खाना बनाकर लाती हैं।
2: अपने गांव जैसा लगता है ना सब कुछ।
1: जी हाँ, भारत और मिस्र की प्राचीन सभ्यता में भी बड़ी समानता है। मिस्र के लोग सूर्य देवता की पूजा किया करते थे। मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी। पिता नील की भी पूजा की जाती थी। अच्छा श्वेता, एक पहेली पूछो।
0: पूछिए।
1: हर साल जुलाई से लेकर अक्टूबर तक नील नदी में पानी चढ़ता जाता है, जबकि यहाँ वर्षा नाम मात्र की होती है, बताओ कैसे?
0: हर साल पानी चढ़ता है।
1: हाँ, इतना कि कभी कभी बाढ़ आ जाती है।
2: और मिस्र में वर्षा होती नहीं।
1: हाँ,
2: अजीब सी बात है।
1: हार गए?
0: हाँ अंकल, आप ही बताइए ना, ऐसा क्यों होता है?
1: प्राचीन मिस्र के लोग भी इस रहस्य को कभी नहीं समझ पाए। 19वीं शताब्दी के अंत में जाकर इसका भेद खुला।
2: अच्छा, वो कैसे?
1: देखिए, नील नदी में दो नदियों का पानी आकर मिलता है, सफेद नील का और नीली नील का। सफेद नील युगांडा की विक्टोरिया झील से निकलती है। पूरे साल उसमें पानी एक जैसा रहता है, इसलिए उसके कारण तो पानी बढ़ नहीं सकता। लेकिन नीली नील इथियोपिया के पहाड़ों से निकलती है। पहाड़ों की बर्फ पिघलकर नीली नील में बहती है। साथ ही इथियोपिया के पठारी क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, उसका पानी भी नीली नील में आता है। बस इसी कारण हर साल नील नदी का पानी चढ़ता है।
0: मैं सोच रही थी कि ऐसी ही कोई वजह होगी, पर...
2: ए श्वेता, तुम झूठ कब से बोलने लगी?
1: जानते हैं, प्राचीन मिस्र के लोग नील नदी में आने वाली इस बाढ़ को देवताओं का क्रोध मानते थे, इसलिए हर साल देश की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी का चुनाव किया जाता। बड़ी धूमधाम के साथ पिता नील की पूजा की जाती। और फिर उस सुंदरी को नदी में फेंक दिया जाता।
0: कितनी बुरी बात है।
2: सो तो है, लेकिन उस समय के लोग बाढ़ का सही कारण नहीं जानते थे ना।
1: अब तो जान गए हैं, फिर भी ये प्रथा कायम है। बस अब सुंदरी के स्थान पर एक गुड़िया अर्पित की जाती है।
0: गुड़िया ही क्यों, गुड्डा क्यों नहीं?
2: हाँ भाई कादिर, इस सवाल का जवाब दो तो जाने।
1: इसका जवाब मेरे पास तो है नहीं, मैं पूछकर बताऊंगा।
0: अंकल सुनिए, कोई गीत गा रहा है उधर खेतों में, है ना?
2: वाह, कितना सुंदर गीत है। अच्छा कादिर, क्या हम लोग आसमान बांध देख सकते हैं?
1: इस स्टीमर से तो नहीं, कल कार से आपको मैं वहां ले चलूंगा।
0: वह क्या है अंकल?
1: 364 फीट ऊंचा और 12,565 फीट लंबा बांध है बेटा, जिसके पीछे 300 मील लंबी झील बनाई गई है। इसे नासिर झील का नाम दिया गया है।
2: इस बांध के बन जाने से मिस्र के लोगों को काफी फायदा हुआ होगा।
1: हाँ बिल्कुल, अब सिंचाई आसानी से हो जाती है। बांध से पैदा हुई बिजली से उद्योगों को भी बढ़ावा मिला है, लोगों के जीवन में खुशहाली आई है।
2: आबू सिंबल के मंदिर भी यही कहीं है ना कादिर?
1: हाँ, बांध के पास ही पहाड़ी पर। जानते हैं, बांध के पीछे जो झील बनाई गई है, ये मंदिर उसमें डूब गए होते, लेकिन वैज्ञानिकों और पुरातत्व विशेषज्ञों ने इन मंदिरों को बड़ी होशियारी से घाटी से हटवा कर पहाड़ी पर स्थापित करवा दिया।
0: पापा, मैं भी देखूंगी वो मंदिर।
2: अरे मुझसे कहने का क्या फायदा बेटा, अपने कादिर अंकल से कहो।
0: अंकल ले चलेंगे ना हमें?
1: हाँ हाँ, अगर तुम एक पहेली बूझ दो तो।
0: क्या फिर से पहेली? क्या आबू सिंबल के मंदिर की भी कोई पहेली है?
3: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम नील के किनारे, और अब इसी के साथ हम अपने उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहते हैं। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए। कल फिर से होगी मुलाकात। नमस्कार,
5: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
6: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 MHz पर। सुबह के 11:30 होने वाले हैं। अब आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम सुनिएगा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

जोर की बरसात हुई, ये एल्बम का नाम है। जुबिन नौटियाल की आवाज़, गुरप्रीत सैनी के बोल और संगीत रोचक कोहली का।

रंग तिरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं भूपिंदर सिंह की आवाज में ये गजल। शब्दकार जानिसार अख्तर, संगीत भूपिंदर सिंह का और एल्बम शबनम।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संगीत।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियंतो के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियंतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा आदान प्रदान, आपदा प्रबंधन सहयोग और औद्योगिक सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।
1: आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। दो करीबी मैरिटाइम देश होने के नाते हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ये साझेदारी विकास, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। भविष्य के द्विपक्षीय संबंधों पर उन्होंने कहा कि भारत इंडोनेशिया साझेदारी में एक नया स्वर्णिम अध्याय आज से शुरू होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हस्ताक्षरित समझौते से भारत की उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाएं इंडोनेशिया के लोगों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि भारत इंडोनेशिया के डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की क्षमता निर्माण में योगदान देगा। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंगतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत की जनता को समर्पित किया और इसे भारत तथा इंडोनेशिया के बीच स्थायी ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों का प्रतीक बताया। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के निमंत्रण पर हो रही है। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया है कि केरलम के कोच्चि में कल से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीत विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर चार खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूते उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से अपने बाजार खोले जाने के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। इन देशों में ब्रिटेन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य देश शामिल हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में 0.4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 307 अंक बढ़कर 78,592 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 83 अंक बढ़कर 24,514 पर पहुंच गया। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम का मुकाबला स्पेन से होगा। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के कन्या मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। कार्यक्रम का पहला गाना है वारिस फिल्म से तलत महमूद और सुरैया की आवाजें, कमर जलालाबादी के बोल और संगीत अनिल बिस्वास का। आज संगीतकार अनिल बिस्वास को याद करते हुए उनके संगीतबद्ध किए हुए गाने इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे।

अंतराल के बाद हम उपस्थित हैं कार्यक्रम के बाकी गानों को लेकर। संगीतकार अनिल बिस्वास को याद करते हुए उनके संगीतबद्ध किए हुए गाने हम सुन रहे हैं आज यादों की महफिल इस कार्यक्रम में। अगला गाना मन्ना डे की आवाज़, नरेंद्र शर्मा का लिखा हुआ गाना, फिल्म वर्षा ऋतु।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

राही फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में, प्रेम धवन के बोल। अब आपको सुनवाते हैं परदेसी फिल्म का गाना, मीना कपूर और साथियों का गाया हुआ। संगीत है अनिल बिस्वास का।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: मुकेश की आवाज में अब आपको सुनवाते हैं पहली नजर, इस फिल्म का गाना। डॉक्टर सफदर आह का लिखा हुआ गाना, संगीत है अनिल बिस्वास का।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में प्रेम धवन का लिखा हुआ गाना, फिल्म का नाम लाजवाब।

यादों की महफिल कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में लाडली फिल्म का गाना। गीत के बोल बेहजाद लखनवी के हैं।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अमीर बाई कर्नाटकी और अरुण कुमार की आवाजों में कवि प्रदीप का लिखा हुआ गाना फिल्म किस्मत।

इंतजारी में मेरी लैला को बादल तू नजर न लगा, तू नजर न लगा ओ बादल तू नजर न लगा। मेरा बुलबुल सो रहा है, मेरा बुलबुल सो रहा है।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

यादों की महफिल इस कार्यक्रम में आइए अब सुना जाए तलत महमूद की आवाज़ में जासूस फिल्म का गाना बोल हैं इंदिवर के।

यादों की महफिल कार्यक्रम में संगीतकार अनिल बिस्वास के संगीतबद्ध किए हुए गाने आज आपको सुनवाए जा रहे हैं। अगला जो गीत है ये बेकसूर फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में एहसान रिजवी के बोल हैं।

0: नमस्कार श्रोताओं, सुरीला सफ़र इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूँ मंजू द्विवेदी। सबसे पहले आपको आज विविध भारती के फेसबुक पेज पे जो इबारत हमने लिखी है वो आपको पढ़ के सुना देते हैं। हिंदी सिनेमा के एक कामयाब अदाकार जो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे, जो अपनी भूमिकाओं को इतनी सहजता से निभाते कि ये समझना मुश्किल कि ये अभिनय है या वास्तविकता। किरदार कोई भी हो, हर किरदार को उन्होंने जीवंत कर दिया। उनका अभिनय लोगों के दिमाग पर ऐसा छाप छोड़ जाता है। एक अति संवेदनशील कलाकार जो ट्रेजेडी किंग भी कहलाए और ऑलराउंडर भी, उन्हें आप अभिनय के पारसमणि भी कह सकते हैं। तो बताइए कौन सी फिल्मों के गाने आज आपको सुनवाए जाएंगे। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी फिल्मों के नाम भी लिख दिए हैं, गानों की लाइनें भी लिख दी हैं, और जिन शब्दों का जिक्र हमने किया है, एहसान, सितारे, वीर जवान, ख्वाब, शहर, मोहब्बत और हंसी मौसम, इन शब्दों को लेकर उन्होंने बहुत सारे गाने भी चुन लिए हैं। तो जो बातें हमारे श्रोताओं ने लिख करके भेजी है उसके बारे में एक एक करके आपको पढ़ के सुनाते। एक साथी हमारी लिख रही हैं कि दिलीप कुमार जी के लिए एक प्यारा सा हमारा एहसास, कुछ लोग चले जाते हैं लेकिन उनकी मुस्कान, उनकी आवाज़ और उनका हुनर समय की धूल से कभी भी नहीं ढकता। वे हर बार किसी गीत, किसी दृश्य या किसी याद के बहाने फिर से हमारे बीच याद आ जाते हैं। शायद यही अमर होने का सबसे सुंदर अर्थ है। एक हमारे साथी ये भी लिखते हैं कि दिलीप कुमार साहब को शत शत नमन। हर किरदार को जीवंत करने वाले कलाकार, कभी कभी तो ऐसा लगता है मानो पर्दे पर होने वाली घटनाएँ सब उनके साथ घटित हो रही है। और सिलसिलेवार ढंग से उन्होंने कुछ गानों का जिक्र भी किया है। तो चलिए एक एक कर हम उनके अभिनय से सजे जो गीत हैं वो आपको सुनवाएंगे। सबसे पहले गंगा जमुना फिल्म का ये गाना, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, शकील बदायूं के बोल, नौशाद का संगीत। इस गाने में जो अभिनय है उसकी, उसमें आपको क्या विशेषता नज़र आती है ये आप हमें लिख करके बता सकते हैं।
1: लागा गोरी गुजरिया से नेहा हमार

0: थई थई थई थई थई झाक दिनक दिन ताक तिनक तिन झाक दिनक दिन ताक तिनक तिन झा
1: आंख मिल जई है सजनिया से तो नाचन लगी है।

गीत भी खूबसूरत, संगीत भी खूबसूरत और फिल्म में अदाकारी भी बड़ी खूबसूरत, नृत्य तो देखने लायक। ऐसा लगता है कि कोई एक नौजवान मस्त मौला होकर के नृत्य कर रहा है। कुछ हमारे साथियों ने बातें लिखी है कि नैन लड़ जाई है, देहाती शैली की लोक नृत्य, धोती पकड़ कभी दाहिने तो कभी बाएं, सुंदर अभिनय है दिलीप कुमार का। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि नैन लड़ जाई है तो मनवा में खटक हुई बे, गाने में दिलीप कुमार ने बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के बिल्कुल एक गांव के लड़के की तरह जो सहज और ऊर्जावान डांस किया, उसने दर्शकों का दिल जीत लिया। उनके बोलने का अंदाज, आंखों की भाषा और गंभीर आवाज़ ने गंगा के किरदार को बेहद जीवंत बना दिया। एक साथी लिख रहे हैं कि ये जो फिल्म है नैन लड़ जाई है, इस गाने गंगा जमुना फिल्म का गाना है, ये फिल्म का नाम है और भारत की दो प्रमुख नदियों के नाम भी है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि इस गाने में जो दिलीप कुमार जी ने नृत्य किया वो नृत्य यादगार है। चलिए धन्यवाद आपको। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आन फिल्म का गाना आपको सुनवाएंगे। एक बार फिर आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, शकील बदायूनी के बोल, संगीत नौशाद का। इसमें दिलीप कुमार के साथ अभिनेत्री कौन है ये आपको बताना है।

0: यार।
1: आन फिल्म का गाना आपने सुना। इस फिल्म में दिलीप कुमार के साथ जो अभिनेत्री हैं वो हैं नादिरा। इससे पहले जो गंगा जमुना फिल्म का गाना हमने सुना, उसके बारे में हमारे एक साथी की ये बात है कि गंगा जमुना में उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा और लहजे को इतनी सहजता से निभाया कि पात्र बिल्कुल वास्तविक प्रतीत हुआ। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि वो कलाकार जैसे परिचय की कोई आवश्यकता नहीं, वो दिलीप कुमार के अलावा और कौन हो सकता है। वे हिंदी सिनेमा की बुनियाद थे, नींव थे। उनकी फिल्मों में मधुरता, उल्लास और उमंग का बेहतरीन संगम देखने को मिलता है। आज भी उनकी जब टीवी पर कोई फिल्म आ रही होती है तो हम सारे काम धाम छोड़कर बस उनके मोहपाश में बंध जाते हैं। वो उनकी उड़ती जुल्फें, हल्की सी मुस्कुराहट कयामत ढाने के लिए काफ़ी है। तो आपकी इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और अब अगला गाना सुनवा रहे हैं, कोहिनूर फिल्म का। ये गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, शकील बदायूनी के बोल, संगीत नौशाद का।

कोहिनूर फिल्म का गाना दिलीप कुमार और मीना कुमारी पर फिल्माया गया। कह सकते हैं कि जब संगीत की बात हो तो कुछ ऐसे गीत होते हैं जो सच में संगीत के कोहिनूर कहलाते हैं। आज गाने तो हम सुन ही रहे हैं, लेकिन आप ये जिक्र कर सकते हैं किसी भी गाने के बारे में या किसी भी सीन जो आपने देखा हो, दिलीप कुमार की फिल्म देखी हो, उनका कोई अभिनय किसी फिल्म में जो आपको पसंद आया हो, कोई दृश्य जो आपको पसंद आया हो, तो उसके बारे में आप जिक्र कर सकते हैं कि इस गीत में हमें ये चीज़ पसंद आई या ये जो सीन था इसमें हमें ये बात पसंद आई या इनके अभिनय में हमें ये बात बहुत ख़ास लगी। इन बातों का आप जिक्र कर सकते हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि हिंदी सिनेमा का इतिहास जब भी महान अभिनेताओं का जिक्र करेगा तो दिलीप कुमार का नाम सबसे पहले सम्मान के साथ लिया जाएगा। अपने सहज, गहरे और भावपूर्ण अभिनय से उन्होंने हर किरदार में ऐसी जान फूंकी कि पर्दे पर अभिनय नहीं बल्कि जीवन दिखाई देता था। यही कारण है कि उन्हें ट्रेजेडी किंग के साथ साथ अभिनय का विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि दिलीप साहब की कितनी ही नई पुरानी फिल्में देखी हैं पर मशाल फिल्म का वो दृश्य मस्तिष्क पर अंकित हो गया जिसमें अपनी पत्नी की बीमारी की अवस्था में सड़क पर भटकते हुए जब वो मदद की गुहार लगाते हैं वो एकदम जीवंत और मार्मिक अभिनय हमें लगा। अब आपको सुनवाते हैं नया दौर फिल्म का गाना मोहम्मद रफ़ी और बलबीर की आवाज़ों में। साहिल लुधियानवी के बोल हैं, संगीत किसका है ये आप हमें बताइए। और जो बात हमने आपसे कही कि किसी गाने का जिक्र आप कर सकते हैं, किसी दृश्य का जिक्र आप कर सकते हैं जो आपको बहुत मार्मिक लगा हो, बहुत जिसमें हास्य आपने अनुभव किया हो या जो आपको बहुत पसंद आया हो या उसकी क्या खासियत आपको लगी है, इसका जिक्र आप कर सकते हैं।

ओपी नैयर के संगीत से सजा नया दौर फिल्म का ये गाना एक जोश भर देने वाला गाना है। अगर हम कभी सो भी रहे हों और ये गाना अगर कानों में पड़े तो हम उठकर खड़े हो जाते हैं और सुनने को मजबूर हो जाते हैं, और अगर देखने को मिल जाए तो जो एक्टिंग के साथ गाने को सुनने का मज़ा और भी दोगुना हो जाता है और मन एकदम प्रफुल्लित होकर के जोश से भर जाता है। तो ऐसे ये गीत हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि मेरी नज़र यदि दिलीप कुमार के अभिनय की बात हो तो उनकी सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है मुग़ल-ए-आज़म। इस फिल्म में उन्होंने शहजादा सलीम की भूमिका निभाई थी और यही भूमिका उनके अभिनय कौशल का एक उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती है। एक साथी लिख रहे हैं कि मधुमती का सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, ये गाने की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। और एक साथी लिख रहे हैं कि मनोज कुमार की क्रांति फिल्म में दिलीप कुमार जी ने बहुत अच्छा रोल निभाया था और ये यादगार रहा। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि 1960 के सदाबहार फिल्म कोहिनूर का गीत दो सितारों का जमीन पर, ये एक कालजयी रोमांटिक गीत है। संगीतकार नौशाद और शकील बदायूनी और आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की। संगम को सुनकर आज भी प्यार और उमंग का एहसास होता है। एक साथी हमारी ये बात लिख रहे हैं कि दिलीप कुमार भारतीय फिल्मों के ऐसे अभिनेता जिन्होंने अपने अभिनय से फिल्म इंडस्ट्री की परिभाषा ही बदल दी। सुपरस्टार कैसे बनते हैं ये दिलीप कुमार जी ही अपने अभिनय से उन्होंने बताया। फिल्मों में गंभीर भूमिकाओं के अलावा दिलीप कुमार जी ने कई फिल्मों में कॉमेडी रोल भी किए और दर्शकों को उन्होंने बहुत हंसाया भी। चलिए अब मधुमती फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना। संगीत किसका है आप बताइए।

मधुमती फिल्म का गाना, संगीत सलील चौधरी का। हमारे साथी लिख रहे हैं कि राम और श्याम फिल्म में उनके एक्टिंग के सभी शेड्स देखने को मिलते हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि दिलीप कुमार और संजीव कुमार की एक फिल्म संघर्ष मैंने देखी है, उसमें एक गाना है कोई पैरों में घुंघरू बंधवा दे तो फिर मेरी चाल देख ले, उसमें दिलीप कुमार का डांस बहुत ही अच्छा लगा और फिल्म भी हमें बहुत अच्छी लगी। एक साथी लिखते हैं कि फिल्म शक्ति में अमिताभ बच्चन के पिता का रोल दिलीप कुमार जी ने बखूबी निभाया है, एक सशक्त पुलिस इंस्पेक्टर का। और एक साथी ये लिख रहे हैं कि नया दौर में तांगे की दौड़ वाला दृश्य केवल जीत हार का नहीं बल्कि उस विश्वास का प्रतीक है कि हौसला और मेहनत परिस्थितियों से बड़ी ताकत होते हैं। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि मुगले आजम फिल्म का प्रसिद्ध गीत जब प्यार किया तो डरना क्या राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित आमेर किले के शीश महल में फिल्माया गया था। हम जब भी आमेर जाते हैं तो इस गाने की याद हमें आती है। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि मुझे दिलीप कुमार की क्रांति, विधाता और सौदागर पिक्चर बहुत अच्छी लगी। आइकॉनिक फिल्म सौदागर में दोस्त भी के ऊपर है और क्रांति पिक्चर देख के ऊपर है, ऐसा कुछ थोड़ा सा आप अगर स्पष्टता से लिखें तो अच्छा होगा। एक साथी लिख रहे हैं कि अभी कुछ दिन पूर्व मैंने दिलीप कुमार जी की फिल्म यहूदी देखी। फिल्म में उनका अभिनय वाकई बेहतरीन था, उनकी रोमन वेशभूषा और भारी भरकम उर्दू संवादों की अदायगी लाजवाब थी। सबसे ख़ास बात यह थी कि उन्होंने अपनी आँखों और चेहरे के हाव भाव से प्यार, तड़प और लाचारी के दर्द को जिस तरह बयां किया वो सीधे दिल को छू जाता है। इसे देख कर ही महसूस होता है कि क्यों उन्हें आज भी सर्वश्रेष्ठ उनका अभिनय कहा जाता है। चलिए अब हम अगला गीत सुनवाते हैं, बैराग फिल्म का गाना, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले की आवाज़ें, आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। दिलीप कुमार के साथ अभिनेत्री कौन है ये आप बताइए।

ना बड़ी खूबसूरत है तू हसीना बड़ी खूबसूरत है तू मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

बैराग फिल्म का गाना आपने सुना। हमारे साथियों ने लिखा है कि इस गाने में अभिनेत्री है लीना चंदावरकर और अन्य अभिनेत्री है सायरा बानो। एक साथी लिख रहे हैं कि मैंने बचपन में हमारे पड़ोस में ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न पर पहली हिंदी फिल्म देखी थी, वो दिलीप कुमार की थी और वो फिल्म थी गोपी, जो इन्हें बहुत पसंद आई। और एक हमारे साथी ये बात लिख रहे हैं कि दिलीप कुमार जी ने अलग अलग प्रकार के अभिनय जैसे देशभक्त, प्रेमी, जेलर, कुल 57 फिल्मों में उन्होंने काम किया है। और एक साथी लिख रहे हैं कि सौदागर में राजकुमार और दिलीप कुमार के आमने सामने के कई दृश्य, उनकी आवाज़, संवाद आज भी याद किए जाते हैं, जैसे कि दुश्मनी जब तक निभाओ शान से निभाओ, लेकिन अगर दोस्ती करो तो उसे भी दिल से निभाओ। ये बात इन्होंने लिखी। एक साथी लिख रहे हैं कि वे आँखों से अभिनय किया करते थे, इसका सबसे अच्छा उदाहरण राम और श्याम का दिया जा सकता है। प्राण साहब के हाथ में हंटर होता है और विरोध में दिलीप साहब का सिर्फ चेहरे का क्लोजअप दिखाया जाता है, वहाँ सिर्फ उनकी आंखें बोल रही है, आंखों से गुस्सा, बदला और चिढ़ का अनोखा अभिनय वहाँ देखने को मिलता। यूं ही नहीं उन्हें बादशाह कहा जाता है अभिनय का। चलिए अब हम आपको संघर्ष फिल्म का गाना सुनवाते हैं। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, शकील बदायूनी के बोल, संगीत नौशाद का।

एक साथी ने लिखा है कि फिल्म संघर्ष का ये जो गीत है दिलरुबा, मैंने तेरे प्यार में क्या क्या नहीं किया और जब दिल से दिल टकराता, ये दोनों गाने अपनी नायिका को जुनून की हद तक प्यार करना, मुझे नायक का ये किरदार बहुत पसंद आया था। एक साथी लिख रहे हैं कि बैराग का यह गीत जिसके संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी, इसमें दिलीप कुमार जी ने पहली बार तिहरी भूमिका निभाई थी, मेरी लिस्ट का ये पाँचवा गीत था जो आपने शामिल कर लिया है। और एक साथी लिख रहे हैं कि वो नायाब कलाकार हैं, हम सब के चहेते दिलीप कुमार साहब, यूं तो उनकी हर फिल्में और हर सीन याद रह जाता है मुझे। एक सीन का जिक्र करना चाहूँगा, मुंबई में रात के सन्नाटे में सड़क पर वे अपनी धर्म पत्नी जो उसमें जो कलाकार हैं वो वहीदा रहमान है, उनके साथ जा रहे होते हैं। अचानक वहीदा जी के पेट में दर्द होने लगता है और वह तड़पने लगती हैं। उस समय दिलीप साहब मदद के लिए गुहार लगाते हैं और इक्का दुक्का कार वाले उनकी परवाह के बिना निकल जाते हैं। अरे कोई मदद करो, मर रही है बेचारी, बदहवास होकर वे सड़क पर मदद मांगते हैं, लेकिन व्यस्त शहर के लोग उनकी ओर ध्यान नहीं देते और अंत में वहीदा जी वहीं पर दम तोड़ देती। ये सीन आज भी मुझे याद आता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दिलीप साहब को मैं सलाम करता हूँ। चलिए, धन्यवाद आपका। लीडर फिल्म का गाना आइए अब सुनते हैं।

लीडर फिल्म का ये गाना था। एक साथी लिखते हैं कि कर्मा फिल्म में जब दिलीप साहब देशद्रोही बने अनुपम खेर को थप्पड़ मारते हैं, वो दृश्य इतना प्रभावित करता है कि मैं थिएटर में कुर्सी छोड़कर उठ खड़ा हो गया था। एक साथी लिख रहे हैं कि वैसे तो उनका हर किरदार लाजवाब होता था, लेकिन फिल्म देवदास का किरदार मुझे बेहद पसंद है। दिलीप साहब के बाद कोई देवदास न बन सका, क्योंकि उन्होंने वो किरदार निभाया नहीं था बल्कि जिया था। किरदार तो बहुत अभिनेता निभा लेते हैं, लेकिन किरदार को जी लेना उनसे सीखना चाहिए। एक साथी ये लिख रहे हैं कि हिंदी सिनेमा का इतिहास लिखे और दिलीप कुमार का नाम न आए ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्हें ट्रेजेडी किंग कहा गया, पर यह उपाधि उनके अभिनय को एक फ्रेम में बांध नहीं पाती। उनका अभिनय दर्द तक सीमित नहीं था, वो हर किरदार में इंसान की पूरी जिंदगी जी लेते थे। वो संवाद से पहले आँखों से बात करते थे, चीखना चिल्लाना नहीं, गाल पर एक आंसू और टूटी हुई सांस, यही उनका ट्रेजिक फॉर्मूला था। संक्षेप में कहें तो दिलीप कुमार ने हमें सिखाया कि असली अभिनय शोर में नहीं सन्नाटे में होता है। एक निगाह, एक रुकी हुई सांस और सहज अंदाज में बोला गया संवाद, बस इतने में वो उस किरदार की पूरी जिंदगी पर्दे पर जी जाते थे। धन्यवाद आपका। चलिए आज़ाद फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। लता मंगेशकर के साथ एक और जो आवाज़ है वो किसकी है वो बताइए हमें, और दिलीप कुमार के साथ अभिनेता

आज़ाद फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर के साथ, जो आवाज़ है वो चितलकर यानी कि सी रामचंद्र की है और अभिनेत्री हैं मीना कुमारी। एक साथी लिख रहे हैं कि हिंदी सिनेमा के एक ऐसे युग पुरुष जिन्होंने पर्दे पर आम इंसान के संघर्ष और स्वाभिमान को जीवंत किया। उनका बुलंद व्यक्तित्व और चुंबकीय अभिनय दर्शकों को सम्मोहन में बांध लेता था। उन्होंने एंग्री यंग मैन बनकर समाज की विसंगतियों पर प्रहार किया तो अपनी भावुक भूमिकाओं से हर आँख नम भी की। संवाद अदायगी के वो बेताज बादशाह जिनकी मखमली आवाज़ आज भी दिलों को छूती है। चलिए अगला गाना दिल दिया दर्द लिया, इस फिल्म का ये गाना है और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत, दिलीप कुमार के साथ जो अभिनेत्री हैं वो है वहीदा रहमान।

सचमुच गीत में सागर की गहराइयाँ नज़र भी आती है और कानों में वो महसूस भी करवाती है। चलिए एक हमारे साथी की बात की, फिल्म अमर महबूब खान दिलीप कुमार ने एक ऐसे नैतिक रूप से भ्रष्ट नायक का किरदार निभाया है, दर्शकों को हैरान और असहज कर देता है। उनका ये अभिनय बहुत साहसी था क्योंकि उस दौर के सिनेमा में हीरो को हमेशा आदर्श पुरुष महान माना जाता था। फिल्म का नायक पढ़ा लिखा संभ्रांत परिवार का गलत कर बैठता है जिससे उसकी चरित्र की का नैतिक पतन होता है। उस पश्चाताप को बेहद गहराई और संवेदनशीलता के साथ पर्दे पर उतारा है। उस समय एक नायक को खलनायक के रूप में पर्दे पर उतारना हिंदी फिल्म का एक दुर्लभ प्रयोग था। दिलीप कुमार जैसे सुपरस्टार ने एक नकारात्मक कृत्य करने वाले व्यक्ति की भूमिका चुनी। अपनी सूक्ष्म भाव भंगिमाओं से अमर के नायक ने दर्शकों को मजबूर किया कि वे उस चरित्र के पछतावे और अंतर्मन के संघर्ष को समझ सके। धन्यवाद। अगला गाना यहूदी फिल्म से मुकेश की आवाज़।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं। ये गीत शायद हम आपको पूरा ना सुनवा पाए, लेकिन गीत की झलक तो आपको सुनवा ही सकते हैं। आदमी फिल्म का गाना, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, शकील बदायूनी के बोल, संगीत नौशाद का।

राहें चाहे पुरानी हो जाए, लेकिन दिलीप कुमार जैसे जो कलाकार होते हैं उन्हें हम आवाज़ कैसे न दें, ये तो संभव ही नहीं है। हर युग में, हर पीढ़ी में ऐसे कलाकारों को याद किया जाता रहेगा। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना मेरी यानी मंजू द्विवेदी के साथ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: ये गीत था फिल्म चांदनी से, जिसके लिए आवाज़ थी सुरेश वाडकर, अनुपमा देशपांडे की, गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीत था शिव हरि का। और इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे बड़े सम्मान बिंतांग अदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी को

0: तक 25 से अधिक देश अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से नवाज चुके हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय बैठक की, जिसमें ऊर्जा, व्यापार, समुद्री सहयोग और रक्षा क्षेत्र में साझेदारी को नई गति देने पर चर्चा हुई। बैठक में महत्वपूर्ण खनिजों, खाद्य सुरक्षा और डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की यूपीआई के इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने पर खुशी व्यक्त की।
1: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की यूपीआई इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 ड्यूरेंट कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण कर उन्हें हरी झंडी दिखाई। राष्ट्रपति ने इस वर्ष टूर्नामेंट में श्रीलंकाई टीम की भागीदारी पर खुशी व्यक्त की और सभी टीमों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने खिलाड़ियों से खेल भावना का पालन करते हुए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का आग्रह किया। इस अवसर पर रक्षा प्रमुख जनरल NS राजा सुब्रमण्य सहित सेना और नौसेना प्रमुख भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैप्टन बत्रा कारगिल युद्ध में शत्रुओं पर काल की भांति टूट पड़े और मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि उनका शौर्य सदैव राष्ट्र सेवा की ऊर्जा प्रदान करता रहेगा। कृषि विभाग ने किसानों को खरीफ फसलों की बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। विभाग का कहना है कि जब तक खेतों में करीब 4 इंच यानी 1 बालिस्त की गहराई तक पर्याप्त नमी न हो जाए, तब तक बुआई करना जोखिम भरा हो सकता है। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा है, वे मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए ढेंचा या सनई की बुआई हरित खाद के रूप में कर सकते हैं। कृषि विभाग ने किसानों को सोयाबीन बीज का अंकुरण परीक्षण करने और 70% से अधिक अंकुरण क्षमता वाले बीजों का ही उपयोग करने की सलाह दी है। प्रदेश पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मऊगंज जिले के बिझोली गांव में एक किराए के मकान में चल रही अवैध सिंथेटिक ड्रग निर्माण इकाई का भंडाफोड़ किया है। विंध क्षेत्र में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार 2 के तहत हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लगभग 1,28,00,000 रुपए मूल्य का मादक पदार्थ, रसायन उपकरण और वाहन जब्त किया है। प्रारंभिक जांच में इस नेटवर्क के तार मुंबई, नागपुर और महाराष्ट्र के अन्य शहरों तक जुड़े होने का खुलासा हुआ है। अशोकनगर में गुरु पूर्णिमा पर्व पर तीर्थयात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने दिल्ली सराय रोहिल्ला और अशोकनगर के बीच एक ट्रिप विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 26 जुलाई को दिल्ली से रवाना होकर 27 जुलाई को अशोकनगर पहुंचेगी, जबकि वापसी में 30 जुलाई को अशोकनगर से चलकर 31 जुलाई को दिल्ली पहुंचेगी। ट्रेन फरीदाबाद, मथुरा, आगरा, कैंट, ग्वालियर और झांसी सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में कुल 24 कोच लगाए जाएंगे। अब बात मौसम की। प्रदेश में अब तक करीब 7 इंच बारिश दर्ज की जा चुकी है, जो सामान्य से केवल 1% कम है। मौसम विभाग ने आज गुना, अशोकनगर, बिदसा, सागर, छतरपुर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि प्रदेश के 26 अन्य जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर के निदान वाटरफॉल में अचानक पानी बढ़ने से फंसे 2 पर्यटकों को प्रशासन ने रस्सियों की मदद से सुरक्षित निकाला। शिवपुरी में स्टेट बैंक RCT द्वारा ग्रामीण युवाओं के लिए CCTV और सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉलेशन का 13 दिवसीय निःशुल्क आवासीय ट्रेनिंग कैंप 9 जुलाई से शुरू होगा। नर्मदापुरम के इटारसी स्थित तवा नदी पुल की मरम्मत के चलते 16 जुलाई तक भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। मैहर नेशनल हाईवे 30 पर डिगरा गांव के पास तेज रफ्तार कार और ट्रक की भिड़ंत में 5 लोगों की मौत हो गई। और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे शुरू होगा। शनिवार को मैनचेस्टर में खेले गए दूसरे मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराया था। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में

0: समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में डोरन कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया। और दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 3 दिन में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं की उपस्थिति में आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
1: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा, आपदा प्रबंधन तथा औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।
1: हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरिटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हुए समझौते से भारत की उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाएं इंडोनेशिया के लोगों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI को जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में आसानी होगी।
1: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की UPI इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर की संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने इसे भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया।
1: मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए प्रेसिडेंट प्राबोवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आज इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंगतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर बधाई दी है।
2: रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये असाधारण सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, परिवर्तनकारी राजनीतिज्ञता और आपसी विश्वास, सम्मान और साझा प्रगति पर आधारित वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करते हुए भारत के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता की एक सशक्त मान्यता है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि ये सम्मान सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये देश के लिए गर्व का क्षण है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान भारत इंडोनेशिया साझेदारी को और मजबूत करता है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति एवाई कोगजे और न्यायमूर्ति समीर दवे की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सभी अपीलें खारिज कर दी और मामले में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों को दी गई सजा को बरकरार हुए अपने फैसले को सही ठहराया। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के भीतर लगातार हुए 21 बम धमाकों में 56 लोग मारे गए थे और 200 अन्य घायल हुए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के माध्यम से भेजी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डोरन कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया। राष्ट्रपति ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उनसे खेल भावना का पालन करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता की प्रतिष्ठा को और बढ़ाने का आग्रह किया।
3: फुटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है। ये खेल उत्कृष्टता, एकता और खेल भावना का एक अनुपम उदाहरण है। फुटबॉल लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत आज 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। श्री शाह ने कहा कि रिज के लगभग 5000 हेक्टेयर क्षेत्र को अब औपचारिक रूप से वन भूमि घोषित कर दिया गया है।
4: 6300 हेक्टेयर हरित रिज दिल्ली का फेफड़ा बनकर दिल्ली के पर्यावरण की सुरक्षा करेगी। 1 करोड़ से अधिक देसी पौधे, 35 लाख से ज्यादा बड़े बड़े वृक्ष के पौधे और 65 लाख अन्य झाड़ियां, बांस और औषधीय रोपे लगाने का काम होगा।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 14 किलोमीटर लंबी जोजीला सुरंग, जम्मू श्रीनगर कॉरिडोर पर 36 सुरंगें, केदारनाथ रोपवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी प्रमुख परियोजनाएं कनेक्टिविटी को मजबूत कर रही हैं और देश के विकास को गति दे रही हैं। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय विकास के लिए ज्ञान, नवाचार और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के केंद्र के रूप में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को मजबूत करने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। भुवनेश्वर में आज दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम

0: जनजातीय विरासत को संरक्षित करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी ज्ञान को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करने का आह्वान किया।
1: जनजाति समूह का सामूहिक विकास ये नरेंद्र मोदी सरकार का लक्ष्य है। इसके कारण बहुत सारे बंधन केंद्र और उसके साथ साथ बहुत सारे रिसर्च कार्यक्रम हम कर रहे हैं और उसका क्रम में आज किया रही ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका देश भर का 29 जगह से आके यहाँ योगदान दिया है और उनका काम आगे बढ़ रहा है। मेरा ख्याल से ये बहुत बढ़िया मैसेज होगा और जनजाति के लिए लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी देते हुए 48 घंटे का समय दिया है। कमेटी ने कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। हजारों लोग कथित नाकाबंदी को समाप्त करने, संचार सेवाओं की बहाली, भोजन और दवाओं की निर्बाध आपूर्ति, गिरफ्तार नेताओं की रिहाई और 38 सूत्री लिखित समझौते के कार्यान्वयन की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद से प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 3 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। तटीय कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने कई जिलों, विशेष रूप से पालघर, ठाणे और पुणे तथा नासिक में बारिश के लिए चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुणे जिले के घाट क्षेत्र, लोनावला, माहौल, ताम्हिणी और भोर में लगातार तेज बारिश जारी है, जिससे नदियों और नाले उफान पर है। भूस्खलन और अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों से झरनों और पहाड़ों इलाकों में जाने से बचने की अपील की है। इस बीच मुंबई और पुणे के बीच सड़क संपर्क बहाल कर दिया गया है। नासिक के घाट क्षेत्र, जिनमें इगतपुरी और त्र्यंबकेश्वर शामिल है, में भी अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई है। मुंबई महानगर क्षेत्र में बारिश की तीव्रता में कुछ कमी आई है, हालांकि ठाणे और पालघर जिले के कुछ हिस्सों में अब भी भारी बारिश जारी है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उधर गुजरात में भी कई जगहों, खासकर सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्र में लगातार हो रही तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र के दौरान सपाट कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 46 अंक बढ़कर 78,331 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 10 अंक बढ़कर 24,440 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौतों, ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान विंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गीत है मियां बीवी राजी। इस फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में, शैलेंद्र के बोल, संगीत है SD बर्मन का।

जिस देश में गंगा बहती है। इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज़, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं बहुरानी फिल्म का गाना। लता मंगेशकर की आवाज़ है, गीतकार साहिल लुधियानवी, संगीतकार सी रामचंद्र।

मजरू सुल्तानपुरी का लिखा और चित्रगुप्त का संगीतबद्ध किया ये गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म का नाम ऊंचे लोग।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग

0: बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा होगी।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अब आपके लिए लेकर आए हैं सारंगा फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, भरत व्यास का लिखा हुआ गाना, संगीत है सरदार मलिक का।

लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज़ों में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गाना, सलील चौधरी का संगीत, फिल्म का नाम छाया।

0: जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
1: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, स्वर्ण सुंदरी फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, भरत व्यास के बोल, आदि नारायण राव का संगीत है।

अब आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। सखी सहेली कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। दीपा जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और हमारे सभी सुनने वाली सखियों सहेलियों और श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: हेल्दी नमस्कार, क्या हाल है भाई? हेल्दी से तो ये बात कहना जरूरी है कि सब लोग हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, सानंद रहें।
2: जी जी, और ऐसा होता है ना ममता जी, किसी एक को भी ये बात सुनकर अगर ऐसा लगता है, थोड़ा भी अगर वो इंस्पायर होते हैं या उनको प्रेरणा मिलती है कि हाँ हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, तो ये हेल्दी नमस्कार कहना कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप बदल ले लेता है।
1: बिल्कुल सही बात है। अगर एक नहीं बहुत लोगों तक हमारी बातें पहुँचती हैं, करोड़ों श्रोता हमारी बात सुनते हैं और बहुत सारे श्रोता लाभान्वित भी होते हैं। अब देखिए ना, बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में सभी बरखा रानी की बूंदों का आनंद लेते हैं, भीगने का आनंद लेते हैं, छतरियों का आनंद लेते हैं, लेकिन जो उसके खामियां हैं उस पर लोग कम ही ध्यान देते हैं कि बरसात आपके लिए खुशी तो लेकर आती है, फायदे लेकर आती है, लेकिन मुसीबतें भी लेकर आती है। और इन मुसीबतों के साथ, उन मुसीबतों पर किसी का ध्यान नहीं जाता। बहुत सारे लोग, ख़ास तौर से युवा वर्ग, बारिश जब होती है तो बस हाथ में मोबाइल उठाया और रीलें बनाना शुरू और सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू हो जाता है।
2: बिल्कुल।
1: और कई बार वो इसके पीछे छिपे खतरे को भूल जाते हैं, जैसे नदी के किनारे गए हैं, समंदर के किनारे गए, पहाड़ों पर
2: या
1: झरनों के पास,
2: जी डैम के पास चले जाते हैं, फिर एक तेज कहीं पे
1: लहर आती है,
2: लपट आती है, लहर आती है, वो वीडियो बन जाता है, वो रील जो है हर जगह,
1: वो रील मोबाइल से ही पानी में चला जाता है और खुद भी पानी के अंदर चले जाते हैं और घर वाले रोते रह जाते हैं, जिंदगी भर महसूसते रह जाते हैं मन कि भाई हमारी संतान चली गई। तो बारिश का आनंद ले, रील बनाने का आनंद ले, लेकिन उनके पीछे छिपे खतरों पर भी गौर करें। और ये रील बनाने की जो आदत है, रीलों से प्रसिद्धि पाने की जो आदत है, ये कई बार आपको मुश्किल में भी डाल देती है।
2: बिल्कुल, मुश्किल में भी डाल देती है, जान से भी कभी कभी हाथ गंवाना पड़ जाता है। कई लोगों का हमने देखा है, सुना, जाना है, अलग अलग जगहों से पता चला है,
1: लाइक कमेंट आपने रील डाली और हमने लाइक किया, अरे तुमने मेरे लाइक नहीं किया,
2: जी इस तरह के झगड़े भी हो जाते हैं। और सारा ध्यान फिर अपना दूसरे सब कामों को छोड़ करके अपने हैंडसेट पे चला जाता है कि इसका लाइक आया या नहीं, फलाने ने उसको सब्सक्राइब किया है या नहीं, किसी ने कुछ कमेंट लिखा है या नहीं, तो सारा ध्यान हमारा बस एकत्रित हो जाता है उस रील से संबंधित कमेंट्स आ रहे हैं या नहीं।
1: वक्त कितना चला जाता है दीपा जी, आपने ये नोटिस किया है, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि पूरे पूरे दिन जब तक वो जागते रहते तब तक मोबाइल में ये देखते रहते हैं या पोस्ट करते रहते हैं, पोस्टें देखते रहते हैं, लाइक कमेंट। तो ये जुनून है, एक तरह का जुनून है लोगों में, और जुनून कई बार बीमारी का रूप ले लेता है। और आज हम इस मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे, हमारे श्रोताओं की बहुत सारी टिप्पणियां भी आ रही हैं, तो आज हमने श्रोताओं को ये विषय दिया है, वायरल होने का जुनून। तो उनके क्या अनुभव हैं वो जरा बताएं कि अड़ोस पड़ोस बाल बच्चे जो इसके शिकार हैं,
2: कुछ आए हैं संदेश ममता जी, लेकिन हम चाहते हैं वो और अपने अनुभव या अपने आस, जैसे आपने कहा आस पड़ोस का कहीं देखा है, कुछ जाना है।
1: मैं तो डर गई दीपा जी कि आपने कहा अभी कि आज हमने भी एक पोस्ट की है और लाइक कमेंट देख रही थी भाई यहाँ हम लोग ना उलझ जाएं।
2: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है, लोगों ने अपनी राय दी है, अपनी बातें बताई हैं और क्या वो इस चीज़ को लेकर के उनके विचार हैं ये भी आए हैं, हम चाहते हैं लेकिन कुछ और भी बातें वो
1: देख तो रहे हैं हम भी,
2: जी
1: लाइक कमेंट देख रहे हैं कि हमारे श्रोताओं की कितनी सारी टिप्पणियां आई है। देखिए ना, इस समय 52 लोगों ने लाइक किया है और 112 कमेंट आ चुके हैं और 2 लोगों ने शेयर किए हैं, लेकिन हम इसके

0: कुछ प्रवासी भारतीय भी हैं, उन महिलाओं से बहुत सारी प्रेरणा मिलती है
1: जी,
0: बहुत सारे प्रेरक प्रसंग उनके जीवन में घटित हुए हैं। उन घटनाओं को जब हम पढ़ते हैं या पढ़वाते हैं या जानकारी देते हैं तो उससे बहुत सारी सखियों को प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की, और हर ज़्यादातर उन कामयाब महिलाओं के पीछे के लंबी संघर्ष की कहानी होती है। तो उन कहानियों को सुनना, जानना, बताना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो हम अपने श्रोताओं को इसलिए हार्दिका शाह के बारे में आज जानकारी दे रहे हैं
1: जी। ये ऐसा नाम है ममता जी, जिन्होंने इस बात को सही साबित किया कि व्यापार का असल उद्देश्य केवल लाभ अर्जित करना नहीं है, बल्कि समाज में उन वर्गों तक भी पहुंचना है जहां अक्सर लोग पहुंच नहीं पाते या उन तक कोई भी वित्तीय व्यवस्था पहुंच नहीं पाती है
0: जी।
1: तो एक मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार की हैं हार्दिका शाह, वहीं पली बड़ी, और अपने माँ को और अपने छोटे व्यवसाय के लिए उन्होंने बहुत पूंजी जुटाते हुए देखा था, खूब संघर्ष करते हुए उन्होंने बचपन में अपनी माँ को देखा।
0: संघर्ष इतना था कि 17 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अमेरिका के इलिनोइस स्थित नॉक्स कॉलेज से कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई करने के लिए घर छोड़ दिया। कोलंबिया के बहुत प्रसिद्ध बिजनेस विश्वविद्यालयों के संयुक्त कार्यक्रम से MBA पूरा करने के बाद उन्होंने एक प्रसिद्ध कंपनी में काम करना शुरू किया। साथ ही वो विदेश के बहुत जाने माने विश्वविद्यालय सहित अन्य तमाम कार्यक्रमों में निशुल्क मार्गदर्शक के रूप में भी वे काम करने लगी।
1: बिल्कुल, और वहाँ उन्हें अक्सर जो अपनी माँ, उनकी माँ जो पूंजी जुटाती थी ना, इकट्ठा करती थी, वो सारी चुनौतियां उन्हें अक्सर याद आया करती थी। तो मध्यम वर्गीय परिवार की वो थी, उस नाते दृष्टिहीन लेकिन महत्वाकांक्षी पिता और उद्यमी माँ की परवरिश में उन्होंने बचपन से ही बहुत संघर्ष देखा। लेकिन उनके पिता और गुजरात के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे, वे बॉम्बे विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के एक सफल प्रोफेसर बने और आज भी वे पढ़ाते हैं।
0: बहुत सारे संस्थानों में कार्य करते हुए उन्होंने महसूस किया कि भारत के छोटे उद्यमियों, विशेषकर सूक्ष्म और लघु व्यवसाय के लिए पूंजी तक पहुंचना बहुत कठिन है। इसी विचार ने उनके भीतर परिवर्तन का संकल्प जगाया। वर्ष 2011 में उन्होंने एक कैपिटल की स्थापना की, किनारा कैपिटल। इस संस्था का उद्देश्य उन छोटे व्यापारियों, महिला उद्यमियों और सूक्ष्म व्यवसायों को सरल और त्वरित ऋण उपलब्ध कराना था, जिन्हें पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था से सहायता प्राप्त करने में कठिनाई होती थी
1: जी। और उन्हें यह विश्वास था कि यदि कोई व्यक्ति सही समय पर आर्थिक सहयोग मिल जाता है तो केवल अपना जीवन ही नहीं बल्कि और भी कई लोगों का भविष्य भी बदल सकता है। और उनके नेतृत्व में किनारा कैपिटल, जो उनकी कंपनी है, आधुनिक तकनीक और मानवीय संवेदनाओं का सुंदर समन्वय स्थापित करता है। संस्थाओं ने हजारों छोटे उद्यमियों को वित्तीय सहायता देकर उनके सपनों को एक नई उड़ान दी है।
0: तो ये हम सबके लिए प्रेरणा की बात है। फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा
1: जी।

0: जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर यह है कार्यक्रम सखी सहेली
2: जी। और अपनी कंपनी जो हम बात कर रहे थे हार्दिका शाह के बारे में, उनकी कंपनी के हर विकास कार्यक्रम के माध्यम से वो महिला उद्यमियों को सशक्त बना रही हैं, वो जो कंपनी के CSR कार्यक्रम के माध्यम से महिला सूक्ष्म उद्यमियों को सहयोग देने के लिए बहुत प्रतिबद्ध है। उनका संघर्ष, दूरदर्शिता, समाज के प्रति समर्पण आज के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वे इस विश्वास की एक जीवंत मिसाल है कि दृढ़ संकल्प, अथक परिश्रम और सेवा भाव से असंभव भी हम संभव कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। तो ये अपने जहन में ज़रूर रखें, जब भी किसी काम की शुरुआत करें तो ये जहन में रखें कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं
2: जी।
0: तो काम सफल होता है। अब दीपा जी देखिए ना, हमने कार्यक्रम की शुरुआत में जो गाना सुनवाया था वो सजना बरखा बाहर आई फिल्म परख का, और उस पर एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि गाना इतना अच्छा लग रहा है कि इस गीत को सुनता हूँ तो मुझे वो दिन और याद आ जाता है। वह यूं कि गांव के तालाब में नहा कर आया था, ये आजकल के बरसात के दिन थे, वहां तालाब पर मैंने पपीहे को भी देखा था और घर आया तो ताऊ जी के रेडियो पर यही गीत बज रहा था तो मुझे वो दिन समय ये गीत याद आ गया। तो देखिए ना, रेडियो से बजते हुए गाने हमें कहां कहां पहुंचा देते हैं।
2: बिल्कुल, और हर एक के जीवन में जो रेडियो का प्रेमी है कहीं ना कहीं किसी न किसी गीत के साथ कोई याद तो उनकी जुड़ी ही है।
0: तो चलिए फिर बात गाने की है, सुन लेते हैं गाना।
2: चलिए।
3: हाय राम।

जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत।

0: ममता जी, आज का समय कुछ ऐसा हो गया है ना कि प्रसिद्धि पाने की लालसा हर एक के मन में कुछ हावी सी होने लगी।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
0: और कई बार ऐसा भी होता है कि वो सही या गलत का फर्क उस चक्कर में भूल जाते हैं कई लोग, है ना।
1: और आजकल सोशल मीडिया पर लाइक, कमेंट्स और फॉलोअर्स की संख्या अब कई लोगों के लिए आत्मसंतुष्टि का पैमाना बन गई है।
0: जी बिल्कुल।
1: कितने फॉलोअर्स हैं, कितने बढ़े, कितने नए घटे, ये भी देखते रहते हैं। अरे घट गए तो लोग तनाव में आ जाते हैं कि अरे बाप रे अब क्या करें। और दूसरी ओर वायरल पोस्ट लोगों को और अधिक लोकप्रियता की चाह में लगातार नए प्रयोग करने के लिए प्रेरित कर रही है। कई बार ऐसी बातें सिर्फ प्रसिद्धि पाने के लिए फैला दी जाती हैं जो ठीक नहीं होती हैं, सोशल मीडिया पर वो भी वायरल हो जाती हैं। वायरल से मतलब प्रसिद्धि है,
0: और
1: कुछ चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए उसे भी लोग अपनी प्रसिद्धि के तहत वायरल कर देते हैं।
0: बिल्कुल। और एक कोई पोस्ट अगर डाली और उस पोस्ट पर अगर उन्हें वो एक अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो निराशा बढ़ने लग जाती है, तनाव बढ़ने लग जाता है। किसी ने अगर जवाब नहीं दिया आपके पोस्ट, आपने कोई पोस्ट डाली और उस पर अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो इंसान एकदम लगता है किसी ने कुछ देखा नहीं, हमारे मेरे बारे में कोई जानना नहीं चाहता या मेरे इस लिखी हुई चीज़ को कोई पढ़ना नहीं चाहता, ये क्या हो गया, क्यों हो गया। और दोस्तों को फ़ोन लगा के पूछ भी लेते हैं, ऐसा भी हो जाता है।
1: यहाँ तक हो गया है कि अभी कई लोगों को ये देखा जाता है कि लोग आधी रात को, आप देखिए आधी रात को भी लोग सक्रिय रहते हैं सोशल मीडिया पर, आप ऑनलाइन दिख जाते हैं, हरी बत्ती आपको दिखाई दे जाती है।
0: और
1: रात को उठ के 2:30 बजे 3 बजे भी देखते हैं कि किसने हमारी पोस्ट को लाइक किया, किसने कमेंट किया और किसने दिल का साइन लगाया।
0: हाँ,
1: वो भी अब एक अलग पैमाना बन गया है कि अरे उसने तो सिर्फ लाइक करके छोड़ दिया, दिल का साइन नहीं लगाया। और अब लाइक करने के बाद जो कमेंट्स करते हैं, कमेंट्स करने वाले ये भी उम्मीद करते हैं कि उनके कमेंट्स को भी लाइक किया जाए।
0: जी।
1: फिर वो ये भी कहते हैं कि हमारे कमेंट्स को लाइक आपने नहीं किया, तो कमेंट्स को भी लाइक करने की एक प्रथा चल पड़ी है। तो इस प्रवृत्ति का सबसे चिंताजनक पहलू ये है कि कई लोग समाज, कानून और अपनी सुरक्षा की अनदेखी कर बैठते हैं। सड़क पर स्टंट, सार्वजनिक स्थानों पर अनुचित हरकतें और केवल ध्यान आकर्षित करने के लिए बनाई गई भ्रामक सामग्री डाल देते हैं, पोस्ट कर देते हैं। इससे न केवल व्यक्ति स्वयं जोखिम में पड़ता है बल्कि दूसरों की सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है।
0: कई बार सड़कों पर आप देखते हैं कि युवक युवती बैठे हैं बाइक पर और बहुत तेज़ी से गाड़ी चला रहे हैं, और हमने ये देखा कि पीछे जो महिला बैठी है वो फ़ोन हाथ में लिए हुए है और आगे बाइक की तरफ से कुछ इस तरह से वो कैमरा का सेटिंग करते हैं फ़ोन का कि वो चलती हुई गाड़ी नज़र आए, बाइक नज़र आए। तो ये खतरा दूसरों के लिए भी है, खुद के लिए सबसे ज़्यादा है। कब कहाँ बैलेंस बिगड़ सकता है इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं होती। उन्हें ऐसा लगता है ये सड़क पर इस तरह के स्टंट करके इस तरह से कुछ अलग ही तरीके से वीडियो डालना, ये शायद हमें और किस पता नहीं किस प्रसिद्धि की किस पीढ़ी तक लेके जा सकता है।
1: तो दीपा जी, ये मुद्दा बहुत बड़ा है, इस पर चर्चा और करेंगे और श्रोताओं की टिप्पणियाँ भी बहुत सारी आ रही हैं। एक गाना सुन लेते हैं,
0: चलिए
1: फिर उसके बाद चर्चा करेंगे।

0: बेचारा दिल क्या करे भाई, लाइक कमेंट देखे तो ना देखे कैसे, बेचारा दिल क्या करे, दिल पर वश नहीं होता है इस मामले में कि लोग कितना भी खुद को समझा लें।
1: देखिए जी बिल्कुल, हम कितना भी समझा लें लेकिन हमारी भी नज़र जब कार्यक्रम रहता है ना, चलता होता है ममता जी, तो हम ये देखते हैं कि और कितने कमेंट्स आए, और कितने कमेंट्स आए, ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे तो अच्छे से अच्छे जो कमेंट्स अपने
0: श्रोताओं तक
1: पहुँचाएँ हम।
0: लेकिन यहाँ पर उद्देश्य अलग है ना, लेकिन जो उद्देश्य गलत होता है अपनी प्रसिद्धि पाने का, वो एक अलग मुद्दा है, अब और बातें करेंगे, फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं।
1: चलिए।

0: विविध भारती से यह कार्यक्रम सखी सहेली और बातें हम कर रहे थे गाने से पहले और इस ब्रेक से पहले कि वायरल होने के जुनून में लोग न जाने क्या क्या करते हैं,
1: कम समय में कम समय में प्रसिद्धि पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि दुनिया भर में हमारा नाम हो जाए।
0: अब यही बात हमारे एक श्रोता ने भी लिखी है, देखिए इन्होंने लिखा है, आजकल वायरल होने की दौड़ में लोग कभी कभी ये भूल जाते हैं कि सबसे बड़ी पहचान कुछ पल की लोकप्रियता नहीं बल्कि अच्छे कर्म और अच्छा चरित्र है। जो चीज़ कुछ दिनों के लिए वायरल होती है वो समय के साथ भूल भी जाती है, लेकिन इंसान की अच्छाई, संवेदनशीलता और सादगी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहती
1: है। बिल्कुल सही कहा कि मेहनत, सादगी, सच्चाई ये ही हमेशा आगे तक चलती रहेगी। और एक और संदेश है, ममता जी ये कहते हैं कि आज के सोशल मीडिया के दौर में कई लोगों के लिए वायरल होना ही सफलता का पैमाना ये बन गया है। अधिक लाइक, व्यूज़ और फॉलोवर्स पाने की चाह में कुछ लोग ऐसे वीडियोज़ या पोस्ट बना देते हैं जो जोखिम भरे हो सकते हैं। ये जुनून कभी कभी उनकी पढ़ाई, काम, रिश्ते और मानसिक शांति पर भी असर डालते हैं। लोकप्रिय होना बुरा नहीं है, लेकिन उसके लिए जिम्मेदारी, सच्चाई, अच्छे मूल्यों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात है। और यहाँ तक हो गया है, ये एक तरह की ऐसी बीमारी बन गई है कि कई बार लोग बड़ी दुखद खबर पोस्ट करते हैं
1: जी।
0: वहाँ लोग जाकर हंसी का इमोजी लगा देते हैं भूल से
1: जी,
0: हड़बड़ी में, और ये देखना भी नहीं चाहते कि वो पोस्ट क्या है। कई बार लोग बिना पढ़े बिना जाने लाइक कर देते हैं कि फलाने की पोस्ट है तो यहाँ पे लाइक कर देते हैं। पता चलता है कि उससे आपकी सहमति नहीं, असहमति थी
1: जी।
0: और किसी जो वो बंदा मुसीबत में है तो आप भी मुसीबत में फंस गए क्योंकि आपने उसे लाइक किया था। कई बार सोशल मीडिया पर ये चर्चा भी होती है, कुचर्चा भी होती है, कई विवादास्पद बातें उस पर पोस्ट होती हैं, कई जैसे संगीत के बारे में, साहित्य के बारे में कुछ ऐसी पोस्ट लिखी जाती है जहां आपकी सहमति है ही नहीं, लेकिन आप लाइक करके आगे बढ़ जाते हैं। बाद में पता चलता है कि ये बात तो आपको मुसीबत में डाल गई है,
1: मुसीबत में डाल देते हैं। और कई बार बड़े अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। उन्हें क्या लगता है, इस तरह का हम लिख करके हमारे ऊपर ज्यादा ध्यान लोगों का जाएगा, हम पर ज्यादा आकर्षित होंगे लोग, और इस तरीके से हम कुछ अलग सा लिख दें। अलग सा लिखने में वो समझ ही नहीं पाते कि भाषा हम क्या इस्तेमाल कर रहे।
0: कुछ लोग ये भी करते हैं कि जो बात किसी ने कही नहीं उसे अपने नाम पर पोस्ट करते हैं।
1: हाँ, ये बात
0: कि फलाने ने हमें ऐसा कहा और इतना बुरा भला कहा, मेरी निंदा की, और हम तो हमेशा कटघरे में खड़े होते हैं, जबकि किसी ने कोई चर्चा ही नहीं की है। तो ये भी एक तरीका है लाइक कमेंट पाने का, लोग इस्तेमाल करते हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ सकारात्मक पहलू भी है, जब सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था तो जैसे कुछ अगर हम पढ़ने लिखने की बात करें, साहित्य की बात करें, संगीत की बात करें, तो किताबें जो छपा करती थी, प्रकाशित होती थी, तो अखबार पत्रिकाएं उसका माध्यम थी जानने के लिए
1: जी।
0: और उसके माध्यम से लोग जानते थे और चर्चा होती थी उन किताबों की। लेकिन अब ये आसान हो गया है कि अगर मान लीजिए किसी की चर्चित किताब है और अच्छी उत्कृष्ट किताब है तो आप जल्दी से सोशल मीडिया के माध्यम से, लाइक कमेंट्स के माध्यम से जान लेते हैं कि हाँ ये किताब चर्चित है, तो चलो हम भी खरीद लेते हैं, पढ़ लेते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। तो अगर कहीं पे बुराई है तो अच्छाई भी है, तो हमारे लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छी बातों को अपना करके उसमें आगे बढ़ें और जो नकारात्मक पक्ष है उस तक ना पहुँचे, ना ही लोगों को उसके लिए, उस तरफ जाने के लिए प्रेरित करें। एक और संदेश आया, वो हम यहाँ पढ़ना चाहेंगे कि ये कहते हैं, वायरल होने का जुनून जो कि एक वायरस का ही प्रकार है, जैसे वायरल बीमारियाँ फैलती हैं उसी तरह सोशल मीडिया रूपी शक्तिशाली ये जो वायरस है उसके कई लोग शिकार हो रहे हैं। अपनी खास पहचान बनाने के चक्कर में, उस चक्कर में जब बाहर नहीं निकल सकते तब खुद की गरिमा को काफ़ी नुकसान पहुँचा सकते हैं लोग, इस तरह का इनका एक कहना है।
0: जी बिल्कुल, तो वायरल होने के कुछ नुकसान ज़्यादा हैं और फ़ायदे कम हैं, तो जो फ़ायदे वाला हिस्सा है उसे ग्रहण कर लें, नुकसान वाला, जब वायरल होना आपका जुनून बन जाता है, पैशन बन जाता है, वो नुकसानदेह होता है, और क्योंकि वो जुनून एक बीमारी का रूप ले रही है। और ये हर वर्ग के लोगों में, ऐसा नहीं कि युवा वर्ग को हम कहते रहते हैं कि अगली पीढ़ी एडिक्शन की शिकार है, लेकिन हमने देखा है कि बड़े बुजुर्ग भी उसमें शामिल हैं। अभी जो हमारे घरों में दादी, नानी और चाची, जिन्हें बिल्कुल मोबाइल का इस्तेमाल नहीं आता था, वो अपने बच्चों से, अपने नाती पोतों से सीख कर बाकायदा अपनी रील पोस्ट करते हैं और कुछ लोग
1: और
0: अपना डांस
1: तो
0: का
1: लोकप्रिय भी हो रहे हैं
0: डांस का वीडियो ये दिखाते हैं कि हमें देखो हम इतनी उम्र में डांस करने में सक्षम है, और कोई गाना गा के पोस्ट कर रहा है, कोई अपनी कविताएं पढ़ रहा है, कोई कहानी का टुकड़ा कहानी का हिस्सा पढ़ के पोस्ट कर रहा है, मतलब कोई नई तो रेसिपी ही बता रहा है और किचन के टिप्स बता रहा है, योगा के बारे में, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में,
1: बहुत सारे
0: मतलब मुझे तो लगता है कि दुनिया का कोई हिस्सा बाकी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं बाकी, कोई ऐसा विषय नहीं है जो वायरल नहीं है सोशल मीडिया पर
1: नहीं आया है। और जिसको जिसमें हुनर हासिल है ना, वो उसी कला को चाहता है कि अब दुनिया तक पहुंचा, और उनके लिए सबसे आसान तरीका है सोशल मीडिया का इस्तेमाल
0: करना। और इसमें नुकसान क्या है कि कई बार जो नुस्खे बताए जाते हैं कि सुबह सुबह उठ के ये बीज खा लो, ये पानी पी लो तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, फिर कई लोग ये बताते हैं कि फला एक्सरसाइज, उंगली पाँचों उंगलियों को उस पर प्रेशर डालो तो आपके सिर दर्द ठीक हो जाता है, ये करो तो पेट दर्द ठीक हो जाता है, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि कई बार इस गफलत में आपकी बीमारी बहुत बड़ी बड़ा रूप ले लेती है।
1: जी,
0: तो अब हमारी बातें कहीं बहुत बड़ी बहुत दूर तक न जाए, इससे पहले हम यहाँ पर विराम देते हैं अपनी बात को और सुनाते हैं अपनी सखियों और सखाओं को ये गाना, बारिश वाला गाना, जहाँ पर बारिश नहीं हो रही है उनके लिए सुकून देगा ये गाना, इसलिए भी ये गाना।

0: दीपा जी, हर चमकती हुई चीज अनमोल नहीं होती, ये हमारी एक सखी कह रही हैं कि आज सोशल मीडिया पर वायरल होना आसान हो सकता है, लेकिन किसी के दिल में सम्मान की जगह बनाना कहीं ज्यादा बड़ी बात है। इसलिए ऐसा काम कीजिए जिस पर समय भी मुस्कुराए और आने वाली पीढ़ियां भी गर्व करें।
1: क्या बात है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि काम ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से सकारात्मकता हर तरफ फैले, है ना।
0: कुछ लोग लिख रहे हैं कि लोग वायरल होने के लिए अश्लील वीडियो भी डालते हैं, ये भी गलत है, बहुत गलत है। और अब देखिए ना, एक और मुद्दा है, वो है मोल भाव करने का। कुछ लोगों की आदत होती है कि किसी भी दुकान में गए तो मोल भाव ज़रूर करते हैं, जैसे कि कुछ फिक्स रेट की दुकानें हैं, कुछ ब्रांडेड चीज़ें जहाँ पर मिलती हैं, जहाँ पर एक पैसा भी नहीं
1: कम किया जाता है
0: कि 99 रुपए है तो वो 1 रुपए भी आपको अदा करना पड़ता है, लेकिन वहाँ भी लोग मोल भाव करते हैं। अरे 1 रुपए भी नहीं कम हो सकता है क्या, अरे 20 रुपए तो कम कर दो। तो ये कुछ लोगों की आदत सी बन जाती है, जहाँ पर ये भावना नहीं होती कि इससे बचत हो जाएगी, वो आदतन मोल भाव करते हैं।
1: उन्हें पता भी नहीं होता है ममता जी, उन्हें लगता है कि नहीं, अगर हमने ये 10 रुपए या 20 रुपए कम नहीं कराए तो ये तो मेरे कुछ खिलाफ सी बात हो गई है। ऐसा कैसे हो सकता है, मान लीजिए कि कोई 50 रुपए में चीज है और अगर मैं 30 में नहीं करके लेकर आई तो कहीं कुछ ऐसा लगता है कि मैंने तो कहीं कुछ कमी कर दी, ऐसे कैसे हो सकता है कि भाव मैंने नहीं किया, ऐसा हो जाता है।
0: और बहुत देर तक वो सोचती रहती है कि हम तो ठग गए, जबकि ऐसा नहीं होता है। एक श्रोता ने लिखा है कि मनोवैज्ञानिक रूप से मोल भाव करने से खरीदार को ये एहसास होता है कि उसे बेवकूफ नहीं बनाया गया है और उसने एक समझदारी भरा फैसला किया है। मोल भाव करना शुरुआत में एक आदत के रूप में शुरू होता है, लेकिन जब आप इसमें माहिर हो जाते हैं तो ये एक कला बन जाती है। ये केवल पैसे बचाने का जरिया नहीं, बल्कि ये मानव स्वभाव और संवाद का एक सुंदर हिस्सा है। मोल भाव करना दोनों पक्षों के बीच एक मानसिक कसरत भी है, ये समझने की कला है कि सामने वाले की सीमा क्या है। कई बार लोग जहाँ पर मोलभाव नहीं करना चाहिए वहाँ भी करते हैं, जैसे सब्जी वाले, सब्जी वालों से अगर उसने कहा कि ये 50 रुपए में आधा किलो या 1 किलो हम सब्जी दे रहे हैं जो भी है, तो वो ज़रूर कहेंगे कि अच्छा 50 रुपए में आधा किलो तो ठीक है, हम 1 किलो लेते हैं, कितने पैसे कम करोगे। तो सब्जी वाले भी आनंद लेते हुए कहते हैं अच्छा ठीक है ले लो, 5 रुपए कम दे देना। तो सब्जी वालों से आप मोलभाव क्यों कर रहे हैं, वो सड़क पर सब्जी बेच रहे हैं, उनको बेच के घर जाना है। मुझे लगता है कि उनसे कम से कम मोलभाव नहीं करना चाहिए।
1: लेकिन सबसे ज्यादा देखने में आता है सब्जी वालों से होती ही है,
0: बिल्कुल
1: ये भाव ताव तो चलता ही। अगर उसने वो गठरी बना के रखी है, मान लीजिए कि वो कह रहे हैं कि ये 15 रुपए की है गठरी, तो वो बोलेंगे नहीं 10 रुपए में दो या 15 की दो गठरी दो। इस तरह की बातें तो अक्सर देखने को मिलती हैं। और एक संदेश ये कह रहा है कि मोल भाव करना आदत है या कला, मोल भाव करना वैसे इसको करने में कोई बुराई तो नहीं है, मोल भाव करना ही पड़ता है, पर कुछ सामान इस तरह के होते हैं कि उनके मोल भाव करने ही नहीं पड़ते हैं, उनकी हर जगह की रेट फिक्स होती है, पर कुछ वस्तुएं इस तरह की होती हैं कि उनके मूल्य कहीं भी कम या ज़्यादा नहीं होते, इसलिए मोल भाव करना अच्छा रहता है। मैं कभी कभी सब्जी घर के लिए खरीद कर लाता हूँ, 2-3 दुकानों पर भाव पूछने से ही पता चल जाता है, ज़्यादा दुकानों पर मोल भाव करने की मैं आदत नहीं रखता हूँ।
0: हमारी एक सखी ने लिखा है कि मोल भाव करना मेरी तो आदत है, मैं चाहती हूँ कि ये छूट जाए पर जाती ही नहीं। जब भी मार्केट जाती हूँ घर से सोच कर निकलती हूँ कि आज वो भाव मिलेगा उसी में शॉपिंग करूँगी, पर वहाँ जाते ही आदत जोर मारना शुरू कर देता है। भाई ये बड़ी ईमानदारी से इन्होंने अपनी बात लिखी है, और हम चाहते हैं कि हमारे सभी श्रोता ऐसी ईमानदारी से बेबाकी से अपनी बात रखें।
1: जी एक गीत सुन लेते हैं ममता जी, करें
0: सुनते हैं
1: जी।

0: अब दीपा जी हमारे श्रोता तो मूल भाव पर तुल गए, मूल भाव पे लगे हुए, मतलब मूल भाव किए जा रहे हैं। अब एक श्रोता ने लिखा है कि हर हम महिलाएं मूल भाव करने के लिए बदनाम होती हैं, मूल भाव करने की आदत भी होती है। सब्जी वाले से जब तक धनिया और हरी मिर्च फ्री में न डलवा लें तब तक चैन नहीं पड़ता है। और भी शॉपिंग में बहुत सारे मूल भाव करती हैं, सच में पता नहीं क्या मिलता है उन्हें कि थोड़ी मिर्ची और डाल दो ना, अच्छा करी पत्ता भी डाल दो। वो फ्री में लेने में क्या मिलता है ये आज तक मुझे भी नहीं समझ में आया। मैंने भी देखा है सारी महिलाओं को। और एक श्रोता ने लिखा है कि मोल भाव करना आदत या कला, भाव करना कोई बुराई तो नहीं है, मोल भाव करना भी पड़ता है, पर कुछ सामान तो इस तरह के होते हैं कि उनके मोल भाव करने ही नहीं पड़ते, उनकी हर जगह एक ही रेट होती है, पर कुछ वस्तुएं इस तरह की होती हैं कि उनके मूल्य कहीं कम कहीं ज़्यादा होते हैं, इसलिए मोल भाव करना अच्छा रहता है। मैं कभी कभी सब्जी घर के लिए खरीदता हूँ तो दो या तीन दुकानों पर भाव पूछने से पता चल जाता है, ज़्यादा दुकानों पर मोल भाव करने की आदत नहीं रखता हूँ। एक श्रोता ने लिखा है कि बदनाम महिलाएं हैं मोल भाव करने के लिए, लेकिन पुरुष भी कम नहीं हैं मोल भाव के लिए।
1: ये बात तो सही है, आपने बिल्कुल सही कहा।
0: और आप ज़रा बताइए कि ये क्या कर रही हैं, डेढ़ चावल की खिचड़ी पका रही हैं?
1: बिल्कुल, आज डेढ़ चावल की खिचड़ी पका रही है। देखिए जहाँ पे कहीं पे कुछ एक ग्रुप बैठा हुआ है, बातें कर रहा है और किसी एक बात पर सब लोग ने हाँ कर दी और अचानक से कोई एक उसमें से कहता है नहीं ये इस तरीके से नहीं होगा, कुछ अलग तरीके से होगा। तो जहाँ जब कोई राय अपनी अलग देने लग जाता है या कुछ अलग थलग बात करता है या अपनी कहते ना एक टांग ऊपर रखना चाहता है, तो इस तरह की बात को बहुत सारे हमारे
0: मुर्गे की एक टांग, ये भी एक मुहावरा है। अब एक श्रोता ने लिखा है कि आज पता चला कि डेढ़ चावल की खिचड़ी पकती है, हमने तो बीरबल की खिचड़ी के बारे में सुना था।
1: बिल्कुल, ये भी होती है जहाँ अपना राग अलापना है या अपनी मनमानी करना, ये भी इस मुहावरे का अर्थ होता है, ऐसा हमारे एक श्रोता ने संदेश लिख के भेजा है। अच्छा, एक और संदेश आया कि खिचड़ी एक ऐसा व्यंजन है जो कई लोगों के साथ मिलकर बांटकर खाने या पकाने की परंपरा से जुड़ा है। ऐसे में डेढ़ चावल की खिचड़ी का अर्थ बहुत ही कम मात्रा में भोजन या एक छोटे समूह से है। जब कोई व्यक्ति समूह में शामिल न होकर खुद को अलग थलग कर देता है तब इस मुहावरे द्वारा उस व्यक्ति को अंकित करते हैं कि भाई ये देखो ये आ गया डेढ़ चावल की खिचड़ी वाला।
0: अब हमारी एक सखी है जिन्होंने अलग ही खिचड़ी पकाई है। अब सारे श्रोता तो ये कह रहे हैं कि डेढ़ चावल की खिचड़ी मतलब

0: कि सबकी अलग अलग राय रखना और अपनी अपनी राय ऊपर रखना, मतलब ये। अब हमारी एक सखी हैं जिन्होंने लिखा है कि डेढ़ चावल की खिचड़ी का मतलब कि किसी बात को एक ने दूसरे के कान में कहा, दूसरे ने तीसरे के और तीसरे ने चौथे के, हर एक ने एक दूसरे को कहा ये बात सिर्फ मैं तुमसे बता रही हूँ, तुम किसी से न कहना, मगर जब वो बात एक कान से होते हुए चौथे कान तक जाती है तो बात न होकर कुछ और ही हो जाता है, सीधा मतलब बात का बतंगड़ बन जाता है, कहा तो छोटे से शब्द में या अर्थ में, मगर जिसने सुना उसने दूसरा ही अर्थ लगाया और जिसको कहकर अपनी बात परोसी वो दूसरे ही अर्थ में कह दी, तो बात तो थी छोटी सी लेकिन एक से दूसरे तक जाते अर्थ का अनर्थ हो गया, या फिर कह सकते हैं कि बातों की ऐसी जुगाली हुई कि डेढ़ चावल की खिचड़ी बन गई। दरअसल मुहावरे का ये अर्थ भी सही है। कई बार हम ये भी कहते हैं जब जब हम छोटे थे तो जब माँ और दादी सुनाती थी नानी की इस तरह के मुहावरे, तो वहाँ पर अर्थ भी बताती थी, तो उसका यही अर्थ होता है कि क्या डेढ़ चावल की खिचड़ी पका रही हो, तो मतलब ये कि बातें जब उलट पलट हो जाती हैं और उसका एक अपना अपनी मतलब अपना मंतव्य हो जाता है, अपनी राय हो जाती है, तो अर्थ बदल जाता है।
1: अर्थ बदल जाता है। और देखिए यहाँ पर एक और खिचड़ी पक रही है, ये संदेश आया है कि हमेशा मिलजुल कर काम करना सफलता की कुंजी है, लेकिन कुछ लोग हर बात में डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाते हैं, वे दूसरों की राय को महत्व नहीं देते हैं और अपनी ही मनमानी करते हैं, ऐसे व्यवहार से टीम में मतभेद पैदा हो जाते हैं और काम भी प्रभावित होता है, इसलिए हमें अपनी बात अवश्य रखनी चाहिए लेकिन सबकी राय का सम्मान करते हुए मिलकर निर्णय लेना चाहिए, यही समझदारी है और अच्छे व्यक्तित्व की पहचान भी है।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि पता है हमें एक पुरानी बात याद आ गई, तब कुछ लेना होता था तो कुछ सहेलियों या घर की मौसी या चाची साथ होती थी, पर हम फिर हम एक दूसरे का मुंह देखते थे कि पहले कितना कम करवाएंगे मोल भाव के लिए, इन्होंने लिखा है, और फिर इशारे में बात करके बोलते थे, फिर खुश हो जाते थे कि इतना कम करवाया हो गया, फिर बोल के चले जाते थे कि इतने में दो, फिर मुड़ के देखते, दो नहीं तो हम नहीं लेंगे, फिर मुड़ के देखते थे वो बुला तो नहीं रहा, जाओ जाओ, पर अब नहीं करते, सब्जी वालों से तो बिल्कुल भी नहीं, फिर फिक्स रेट की शॉप पर भी जाना पसंद करते हैं। ये अक्सर जब पहले दुपट्टे का फैशन था बहुत सारा, तरह तरह के डिज़ाइनदार दुपट्टे हुआ करते थे, तो मैंने भी कई बार लड़कियों को देखा है कि दुपट्टे खरीद रही हैं और दुकानदार से कह रही हैं कि ठीक है इतने में दो, नहीं तो जा रहे हैं, और जा रहे हैं पूरी की पूरी झुंड में हैं लड़कियाँ और मुड़ मुड़ के देख रही हैं, फिर वो बुला रहा है आइए भाभी जी आइए ले लीजिए लड़कियाँ औरतें, फिर वापस लौट के आ रहे हैं, फिर 10 रुपए दे दिया एक्स्ट्रा। तो ऐसे
1: शहर, कई शहरों में ऐसे कुछ जगह होते हैं ममता जी, जहाँ पर कि आपको भेजते हैं ना, या हम जाते हैं जैसे कोई बड़े शहर में घूमने गए, तो हम किसी जो पहले ही जाकर आ चुका है, हम पूछते हैं कि कहाँ पर बार्गेनिंग होगी और कितनी होगी ये भी बता देना, तो वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो बताते हैं देखो वो अगर तुम्हें 200 रुपए बोले ना तो तुम 40 या 50 रुपए से शुरू करना, इतनी बार्गेनिंग होती है,
0: तो 100 रुपए में मिल जाएगा। आज तो हम सब की हम आप भी खिचड़ी ही पका रहे हैं, कभी मोल भाव कर रहे हैं तो कहीं खिचड़ी पका रहे हैं। अब कहीं हमारे एक श्रोता ने लिखा है कारी कारे बादरा, सचमुच अब तो चला जाए तो अच्छा, सूरत गुजरात में कल से बहुत तेज़ तूफानी बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है, दरअसल मुंबई में भी बहुत भारी बरसात हो रही है, शहर के देश के तमाम हिस्सों में बारिश हो रही है, लेकिन जहाँ पर बरसात नहीं हो रही है वहाँ के लिए क्या है, वो गर्मी से जहाँ परेशान हाल है, तो उनके लिए गाना ही सुकून देगा, तो सुन लेते हैं ये गाना।

0: इस गाने के साथ हम यही शुभकामना कर रहे हैं कि पूरे देश में बरखा दुल्हनिया आए और इतनी संतुलित बारिश लेकर आए कि किसी को कोई परेशानी ना हो। और अब घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोलें बतियाएं या गाना सुनवाएं, तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाज़त। आप सभी को ममता सिंह
1: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अभिनेता विपुल देशपांडे से। इनसे बातचीत की है जयंत पात्रीकर ने और ये है इस बातचीत का पहला भाग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के स्टूडियो में ऐसे कलाकार पधारे हैं जो आपके घर में भी आपसे मिल चुके हैं, आप सिनेमा हॉल में जाएं तो वहां भी आपसे मिल चुके हैं, और आपने अपने लैपटॉप के पर्दे पर या टीवी के पर्दे पर जब कभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आप गए होंगे तो वहां भी आपकी इनसे मुलाकात हुई होगी। जी हाँ, एक ऐसा अभिनेता जो सेल्यूलॉइड का कोई भी जरिया हो, कोई भी मीडियम हो, वहां अपना नाम रखते हैं और अपनी जगह उन्होंने बनाई है। आइए स्वागत करते हैं विपुल देशपांडे का। विपुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका विविध भारती में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। नमस्कार सभी श्रोताओं को भी।
1: विपुल जी, कहाँ से शुरू करें, शुरू से बात करते हैं, कैसे शुरुआत हुई, आप कहाँ के रहने वाले हैं, पैदाइश कहाँ की है और बचपन कहाँ बीता आपका?
2: वैसे मेरे पेरेंट्स मुंबई में ही रहते थे, तो मेरी पैदाइश आप कह सकते हैं कि मुंबई में ही हुई।
1: अच्छा।
2: लेकिन फर्स्ट स्टैंडर्ड तक मेरी पढ़ाई के बाद में हम लोग शिफ्ट हो गए मुंबई से नागपुर।
1: अच्छा।
2: तो नागपुर ये मेरा वैसे विदर्भ में हम लोग का घर है
1: जी।
2: वहीं पे सब रिलेटिव्स हैं और एंसेस्ट्रल अगर बोला जाए तो अमरावती के पास अकोलखेड़ नाम की एक जगह है जहां से हम बिलोंग करते हैं
1: जी। जी।
2: बट अभी हाल ही में सभी लोग जॉब के सिलसिले में सब बाहर आए और पिताजी बैंक में थे और मेरी माँ जो है वो लेक्चरर थी, तो उन लोगों ने फिर नागपुर में अपना जो है परमानेंट एड्रेस बनाया और मेरा स्कूलिंग नागपुर में ही हुआ।
1: अच्छा।
2: मैं पिताजी का पहले से हॉबी था कि वो स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स में इंटरेस्टेड थे, तो उन्होंने पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग ये सभी जरिए में अपना एक पैशन कायम रखा
1: जी।
2: और मुंबई में ये सब करने के लिए बैंक में जॉब करते हुए पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने नागपुर चुना।
1: अच्छा।
2: हालांकि एग्जैक्टली उल्टा मैंने किया कि मुझे मुंबई चुनना पड़ा वापस तो मैं वहां से वापस आया, बट वहां से आते आते बहुत समय लग गया। तो हालांकि मैं चाहता जरूर था कि मैं पढ़ाई करूं एनएसडी में या फिर ड्रामेटिक्स पढ़ूं या एफटीआई में जाऊं
1: जी,
2: बट एक्सपोजर कम होता है मुंबई के मुकाबले इस क्षेत्र के लिए स्पेशली। इसे हम लोग करियर नहीं मानते, मतलब एक्टिंग ये हॉबी करके देखी जाती है। मैं जिस शहर से आता हूँ वहां पे, तो मैंने उसके लिए थोड़ा सा क्रांतिकारी रवैया अपनाया था कि नहीं मुझे यही करना है। लेकिन पेरेंट्स ने कहा कि नहीं बेटा ऐसा है, पहले पढ़ाई भी कर लो ताकि, बड़ी अनसर्टन फील्ड है, आप नॉलेजेबल रहोगे तो आप कुछ कर पाओगे बाद में अगर ऐसा कुछ समय आया तो, बहुत अच्छी बात थी। तो उन्होंने मुझे इंजीनियरिंग के लिए सपोर्ट किया, देन मैंने एमबीए किया। फिर जॉब करते करते ऐसा हो गया कि वो एक होता है ना 99 का पढ़ा बोलते हैं, आदमी फंस जाता है, तो उसमें फंस सा गया था।
1: अच्छा।
2: बट देन फिर मैंने कहा कि नहीं यार करना तो पड़ेगा, तो फिर शुरू में नागपुर में जो भी थिएटर कर पाए हम वो मैंने किया
1: जी।
2: वहां पे कुछ महानाट्य थे, कुछ नॉर्मल नाटक थे, वो मैंने किए। लेकिन हालांकि मुंबई आना ही एक रास्ता था, तो मैं एक बार आके गया।
1: अच्छा।
2: मैं 2000 में मुंबई आया था, तो आज से 26 साल पहले की बात है
1: जी।
2: तब मैं 20 साल का था, लेकिन तब कुछ मुझे समझ नहीं आया क्योंकि कोई चीज का एक्सपोजर नहीं था, कुछ चीज के बारे में मालूमात नहीं थी, तो मुझे एक महीने बाद वापस जाना पड़ा। मैंने सोचा कि यार यहाँ पे बिना किसी नॉलेज के कुछ करना पॉसिबल नहीं है। देन आई वेंट बैक, आई कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग, आई कंप्लीट माय एमबीए।
1: अच्छा।
2: उसी के साथ कैंपस प्लेसमेंट हुआ, मैंने गोवा में एक साल जॉब किया। फिर मैं कैसे तो भी करके मतलब मिन्नतें करके मैंने कंपनी से बात की कि मुझे मुंबई जाना है, मालूम था कि मुंबई में ही करना पड़ेगा जो करना है, तो वो हुआ नहीं, वीडियोकॉन से ट्रांसफर नहीं मिली, सो आई टुक अ स्विच। मैं यहाँ पे हाइपरसिटी में जॉब करने आया।
1: अच्छा।
2: सो 2-2.5 साल लग गए, उसके बाद में फिर कहीं जाके एक जगह मैंने ऑडिशन
1: दिया। पहली बार आए तो एक नौकरी के लिए आए?
2: नौकरी के लिए।
1: अच्छा।
2: मुंबई में मैंने 2007 से लेकर 2009 तक नौकरी की। 2009 से मैंने स्विच किया, रिसेशन हिट हुआ था उस दौरान, नौकरियां सभी की थोड़ी सी डामाडोल में थी
1: जी जी।
2: तो फिर 2000 मैंने स्विच किया बिरला में, बिरला एजुटेक में मैं काम कर रहा था, 2 साल ऑलमोस्ट वहां पे काम किया। और उसी दौरान मैंने एक ऑडिशन के बारे में पता किया जो कि 4 इडियट्स नाम की एक फिल्म थी, जो पता चला
1: जी। ये मुंबई की जो आपकी अभिनय की यात्रा है और उसकी अब यहाँ शुरुआत होने जा रही है, उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि नागपुर में जो आपने थिएटर किया तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, किस तरह के नाटक वो हुआ करते थे जिनमें आपने अभिनय किया?
2: एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है एक कलाकार के लिए जब वो स्टेज पे जाता है या स्टेज से जुड़ी कोई भी हरकत करता है।
1: हाँ।
2: लेकिन सीखने के लिए बहुत ही लिमिटेड वहां पे स्कोप था
1: जी,
2: क्योंकि वहां पे जितने भी लोग थे या तो यहाँ पे आके वापस जा चुके थे कि उनका यहाँ पे शायद ना हो पाया हो, या फिर वहां से आए ही नहीं है और वहीं पे एक अपनी दुनिया बसा ली है।
1: हाँ।
2: एक पैरेलल इंडस्ट्री खड़ी करने की बात जहां पे होती है।
1: हाँ, हाँ।
2: तो नाटक नो डाउट बहुत अच्छे थे।
1: एक उम्र होती है जब हमें एहसास होता है कि भाई हाँ हम अभिनय की दुनिया में कुछ कर सकते हैं
2: जी,
1: और एक वो समय होता है कि जब हमें हमारे घर से प्रोत्साहन मिलता है या हमारे किसी शिक्षक ने हमें कहा कि चलो तुम तो बड़ा अच्छा कर सकते हो, तो वो हमें स्टेज पर धक्का दे देते हैं एक तरह से। तो ऐसा कभी हुआ है आपके साथ?
2: अभिनय मैं कुछ कर सकता हूँ ये मेरी जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं एक्टर ही बनना चाहता
1: हूँ। क्या बात है, क्या बात।
2: आई नेवर इमेजिनड एनी अदर
1: प्रोफेशन,
2: बट जरिया नहीं मिल रहा था तो नाटक हम करते रहते थे। फिफ्थ स्टैंडर्ड से नाटक हर साल मेरे स्कूल में करता था। जो स्नेह सम्मेलन गैदरिंग होता है उसमें हर साल करता था, जहां जहां पॉसिबल हो वहां पे करता था। और जैसे कहा आपने कि लोग सराहना करते हैं तो आपको अच्छा लगता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो वही है कि आप एक होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक होता है कि हाँ भाई लोग जब बोल रहे हैं समझ जाते हैं आपके, हाँ आप कर सकते हैं अच्छा। तो ये फिर वो धीरे धीरे बढ़ता गया
1: जी,
2: बिकॉज यू हैव परफॉर्म्ड वेल, पीपल हैव अप्रिशिएटेड, उन्होंने वो सराहना की और फिर आगे बढ़ती गई।
1: और फिर मुंबई आके

0: अपने आप को आजमाना, ये जो मन की एक इच्छा है, बाकी सारे काम करते हुए, नौकरी करते हुए या पढ़ते हुए भी हम जो है वो इच्छा मन में कुलबुलाते रहती है,
1: बहुत ज्यादा।
0: ये कितने
1: मैं
0: तने दिनों तक चला?
1: ये सर बहुत चला, ये बेसिकली अगर बात करें तो 2006 में मेरा MBA जब मेरा पास आउट हो गया,
0: जी
1: मैं
0: जी
1: पहली बार जॉब करने गया तो मैंने मेरे बॉस को कहा कि मुझे सर मुंबई में आप प्लेसमेंट दे दो। तो
0: अच्छा
1: मैं चाहता था कि जॉब करते हुए मैं कुछ ना कुछ यहाँ पे,
0: हाँ
1: लेकिन उस दौरान मुंबई में था नहीं, तो वो मेरा 1.5 साल जो है औरंगाबाद 6 महीने और फिर 9 से 10 महीने गोवा में, ऐसा मेरा बीता। और रोज रात को इसलिए क्योंकि दिन भर काम आपका समय कट जाता है, फिर जब आपको समय मिलता है शाम को 7-8 बजे, देन यू फील कि मैंने आज जो दिन भर किया क्या वो मुझे जो पसंद था वो किया
0: अच्छा
1: या फिर बस करना है इसलिए किया, या सरवाइव करने के लिए किया। तो वही एक बड़ी मशक्कत और बड़ा ही एक द्वंद होता था
0: जी जी
1: कि यार ये नहीं करना चाहता हूँ, ये खुशी नहीं मिल रही है लेकिन करना पड़ रहा है।
0: ओह
1: तो कुछ तो भी करके भगवान की दया से मुझे वो स्विच करना पॉसिबल हुआ और फिर मुंबई आया।
0: तो ये मुंबई का जो सफर है, हम उसकी बात करेंगे, मगर हमारे बातों के बीच में आपकी पसंद के गाने भी हम सुनेंगे। तो कौन सा गाना होगा सबसे पहला जो आपको पसंद है?
1: मैं जिंदगी को जिस नजरिए से देखता हूं, उस नजरिए से अगर बात करें
0: हाँ
1: तो जिंदगी को एक लाइटली और एक हंसते खेलते जितना पॉसिबल हो बिताना चाहिए, किसी को तकलीफ ना देते हुए, शायद वो ज्यादा जरूरी है। तो बच्चन साहब का एक गाना है,
0: हाँ
1: जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल,
0: वाह,
1: इसे खोना नहीं खोके रोना नहीं,
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया
1: ये
0: गाना।
1: एक बहुत खूबसूरत सा गाना है।
0: आइए सुनते हैं।
2: जिंदगी

0: जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, और ये जिंदगी जो अभिनय यात्रा के रूप में आपकी मुंबई में शुरू हुई, तो वो कैसी शुरुआत थी?
1: सर मैं जब नागपुर में था 2 साल के
0: हाँ
1: लिए,

0: सा एक्सपांड किया, 25 सेंटर्स हमने उसके बनाए नागपुर में, और फिर मैं यहाँ पे आने की मेरी जो एक बात हुई, तो मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी। मैंने सोचा कि जाति काम कैसे मिलेगा।
1: अच्छा,
0: तो आई नेवर हैड अ मुस्टैच इन माई लाइफ। यहाँ पे मैंने देखा कि क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, पुलिस फाइल्स, ऐसे कुछ क्राइम शोज आ रहे थे उस दौरान जो कि बहुत हिट होते थे, और हमेशा नए एक्टर्स उसमें दिखाई पड़ते थे और रिपीट भी होते थे कुछ
1: जी।
0: तो मैंने सोचा कि यार ये एक सही है, इन लोगों को नए नए बंदे लगते होंगे। तो यहाँ पे जाते हैं, और फिर मैंने सोचा कि मेरी हाइट है 6 फिट 2 इंच, भगवान ने दी हुई, तो उसका फायदा कॉप के रोल में किया जा सकता है। तो एटलीस्ट कॉप रिपीट भी ज्यादा होते हैं। सेम थिंग हैपेंड, बट इट टुक ऑलमोस्ट 7 to 8 months
1: अच्छा
0: टू लैंड इन अ पर्टिकुलर रोल। वो रोल ऐसे आसानी से नहीं मिल पाया, उसके लिए लाइन में लग के इंट्रोडक्शन देना पड़ा बहुत बार, कभी लाइन में लगने के बाद नंबर भी नहीं आता था। तो वो सब करते करते, बट मैंने मूंछ बढ़ाई और अच्छा। मैं थोड़ा फिजिक उस हिसाब से किया कि मैं एक ऑथोरिटेटिव कैरेक्टर में जा सकूं।
1: जी जी।
0: और वही हुआ कि फिर उसके बाद क्राइम पेट्रोल साउथर्न इंडिया, इसमें मैं रेगुलर तौर पे पुलिस ऑफिसर के दौर में दिखने लगा।
1: अच्छा,
0: तो एटलीस्ट मुझे पहले से कोई सीखने वाला, मैं ना कहीं जा पाया सीखने के लिए और कुछ कर पाया, बट कैमरा मुझे सीखने को वहां से मिला।
1: अच्छा,
0: मैंने बहुत करीब से इन सब चीजों को ऑब्जर्व किया
1: जी,
0: और बहुत अच्छे एपिसोड्स हुआ करते थे क्राइम पेट्रोल के। पहले सुब्बू सर उनको ऑप्टिमिस्टिक के थ्रू डायरेक्ट करते थे या देखते थे
1: जी।
0: तो ये उन्होंने बहुत अच्छा किया, तो वो मुझे समझने काफी मिला। आजकल सटल एक्टिंग ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं
1: जी, जी।
0: जिसको एक नैसर्गिक तरीके से हम लोग, जैसे आवापुर में अभी बात कर रहे हैं,
1: सहज और स्वाभाविक
0: अभिनय जिसको कहते हैं, तो वो मुझे वहां से ज्यादा अच्छे से सीखने को मिला। ऐसा लगता नहीं था कि अभिनय किया जा रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि अभिनय ना करो, आपको करना पड़ता है कि वैसा लगे ना कि वो अभिनय हो रहा है। तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट थिंग। तो ये मुझे वहां से सीखने को मिला और ये मेरी स्ट्रेटेजी थी, वो कंटिन्यू रही। तो दैट वाज माय स्टार्ट इन द मुंबई।
1: क्या बात है। और उन शुरुआती दिनों में आप मराठी में भी कुछ देख रहे थे कि कुछ करने को मिले ऐसा?
0: मैं सभी चीजों के लिए ओपन था, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, इंग्लिश हो। इंग्लिश तो खैर अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स नहीं होते, मराठी मेरी मदर टंग है
1: जी जी,
0: मी मराठी है। बट यही था कि जब आया तो मुझे सामने यही चीजें मिली हिंदी लैंग्वेज की, तो मैं हिंदी में फिर काम करता रहा। मराठी में मैंने एक दो बार ट्राई किया जहां जहां मुझे लगा, जैसे मैंने आने के बाद में वो 4 इडियट्स जो फिल्म की थी उसके बेसिस पे जस्ट गम्मत नाम की एक फिल्म की, लेकिन एक बड़ा ही छोटा सा किरदार मैंने निभाया जो कि शायद ही किसी को ध्यान में रहा हो
1: जी।
0: और बाकी जगह शायद ये लॉबी तो हर जगह है, ऐसा नहीं कि कोई गलत बात है। लॉबी मतलब एक ग्रुप जो साथ में मिलकर काम करता है। अब वो एक दूसरे के साथ में कंफर्टेबल हो जाता है, इसलिए वो साथ में काम करता है
1: जी।
0: तो ये थोड़ी स्ट्रांग लगी मुझे रीजनल के दायरे में, तो वहां पे मेरी एंट्री ज्यादा नहीं हो पाई। आज भी शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं मराठी अभिनेता हूँ, मैं मराठी कर सकता हूँ। बट आई वुड लव टू एक्सपांड माय थिंग। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे कुछ अच्छे किरदार मिले जो मराठी में भी नहीं हो पाऊँ। बट हिंदी में हमेशा मुझे साथ सबका मिला और हिंदी में मैं अब तक काम करते आ रहा हूँ रेगुलर।
1: चलिए यहाँ पे एक गाना सुनते हैं आपकी पसंद का, कौन सा गाना होगा?
0: एक मैं कंपेनियनशिप, एक सपोर्टिव एटमॉस्फेयर पे बहुत बिलीव करता हूँ
1: जी।
0: वो कितना पॉसिबल होता है सबकी लाइफ में ये अपने अपने नसीब की बात है, लेकिन जब कोई बात बिगड़ जाए, ये एक मेरा बहुत फेवरेट गाना है।
1: बहुत खूबसूरत गीत है, आइए सुनते हैं।
2: जब

0: जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए। ये
1: हाँ
0: मुश्किल पड़ने वाली बात संघर्ष के दिनों में तो कदम कदम पे जो है इसका सामना होता
1: जी
0: है ना?
1: जी
0: कैसे मुश्किलों का सामना होता था उन दिनों में, क्योंकि एक तरफ आप काम तो कर रहे थे
1: जी
0: मगर एक ही तरह की वो टेलीविजन सीरीज थी जिसमें पुलिस की ही भूमिकाएं ज्यादा होती थी
1: जी
0: और उसमें टाइपकास्ट होने का बड़ा डर था।
1: जी
0: कैसा था वो संघर्ष?
1: ये फील्ड ही ऐसी
0: किसी फिल्म का इंतजार कर रहे थे तब कि कोई फिल्म मिल जाए बस। हाँ, तो
1: हाँ
0: वो भी वाकया जो है कि पहली
1: जी
0: फिल्म कैसे मिली?
1: ये बेसिकली संघर्ष जो है, जैसे मैंने कहा था कि अब बोलने जा रहा था कि बच्चन साहब के जमाने में सुना हुआ था कि संघर्ष तो जिंदगी भर रहेगा, अगर संघर्ष नहीं चाहिए तो डाय वो कोई संघर्ष नहीं रहेगा। तो
0: बराबर
1: जब तक हम इस जिंदगी में हैं, इस दुनिया में, तब तक संघर्ष रहेगा। उसको हम
0: जी,
1: कितनी खूबसूरती से अपने मार्ग को क्रमण करते हैं उस पर
0: हाँ
1: डिपेंड है।
0: यस,
1: तो संघर्ष हमेशा रहा और शुरुआती दिनों में बहुत ज्यादा रहा। कभी कभी ऐसा हुआ कि 3 3 महीने मेरे पास काम नहीं था।
0: ओहो,
1: तो एक एक्टर के लिए जब 3 महीने काम नहीं है तो आप 3 महीने कुछ नहीं कमा रहे हो, वो एक बहुत बड़ी सिचुएशन थी। लेकिन ऊपर वाले की दया है कि बीच बीच में फिर उसके बाद कुछ ना कुछ काम आता गया और सस्टेन करता रहा, हैंड टू माउथ
0: अच्छा
1: वो चीज़ें चलती रही। और टाइपकास्ट आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि फिर उस दौरान लोगों को ऐसा होता है कि वो आपके डेटाबेस में ही फीड करके रखते हैं कि इंस्पेक्टर में ये 10 लोग हैं, पहला फोन जाएगा तो आपको इंस्पेक्टर के लिए आएगा, अगर
0: हाँ
1: डॉक्टर है तो डॉक्टर के लिए ये 20 लोग हैं।
0: जी
1: तो ये चलता रहा काफ़ी दिन, फिर हमें नहीं बोलना पड़ा। बहुत बार मुझे नहीं बोलना पड़ा कि मैं नहीं करूंगा, और वो बहुत बड़ी बात होती थी कि आपको मालूम है आपको काम मिल रहा है, उसी से आपका घर चलने वाला है,
0: लेकिन मना करना
1: लेकिन
0: पड़ता
1: मना करना पड़ रहा है क्योंकि यार उसके अलावा कुछ दे ही नहीं रहे हैं। एक अभिनेता के तौर पे अगर मैं
0: जी
1: वेरिएशन ना दे पाऊं
0: जी जी
1: तो कुछ खास मजा नहीं आता है जिंदगी में। तो वो नहीं करते करते कभी हाँ कभी नहीं, जब जरूरत है उस हिसाब
0: हाँ
1: से हमने काम किया, फिर कहीं ना कहीं लैंड हुए। हमने ये भी सोचा था कि कोई फिल्म जो है वो एटलीस्ट अच्छे इसमें मिल जाए,
0: जी
1: तो इट हैपेंड। और ये जैसे मैं वर्क ग्रेनरी पे मतलब बिलीव करता हूँ,
0: अच्छा
1: वर्क ग्रेनरी मतलब जैसे धान्य का कोठार होता है,
0: जी, अनाज का
1: अनाज का
0: कोठार।
1: कोठार होता है, उसमें एक बहुत बड़ा मतलब जो जो 20 20 25 25 फीट के कोठार होते हैं, जो
0: जी
1: पहले किले पे भी हुआ करते थे,
0: हाँ
1: जहाँ पे लोग आके उसमें धान्य डालते थे। कि मेरे एक भाई जैसे दोस्त ने मुझे बताया
0: हाँ
1: कि काम आप करते हो आप उसमें डालो, वैसे एक धान्य का जैसा वर्क ग्रेनरी है, तो उसमें आप डालोगे एक बार 2 बार 10 बार 100 बार कुछ नहीं होगा, लेकिन एक टाइम आएगा कि वो जो अनाज है वो उसका लेवल तक भर जाएगा।
0: जी
1: फिर आप जो भी डालोगे, एक भी छोटा गड़वा आप उसमें डालोगे
0: जी
1: अनाज, तो बाहर आएगा। सो वर्क ग्रीनरी, आप पहले कितने काम करो शायद उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन जब वो अनाज का जो कोठार है वो भर जाएगा तो आप छोटा भी कुछ करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा।
0: हाँ
1: तो इट इज लाइक दैट। तो शायद वो मेरे और सभी केस में काम करता है। तो पहली फिल्म मुझे जो मिली वो ऐसे ही बहुत जगह ऑडिशन इंट्रोडक्शन ऑडिशन
0: अच्छा
1: इंट्रोडक्शन दे दे के एक जगह से कॉल आया, और एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे जिन्होंने अर्जुन रेड्डी नाम की फिल्म साउथ में की थी,
0: जी
1: उनका नाम था संदीप सर, संदीप वांगा रेड्डी, उन्होंने मेरा वो ऑडिशन देखा,
0: अच्छा
1: मुकेश छाड़ा साहब के यहाँ से वो ऑडिशन आया था, एंड ही लाइक्ड इट फॉर द कैरेक्टर ऑफ द डीन ऑफ द हॉस्पिटल वेयर कबीर सिंह जहाँ काम करता है। और फिर वो फिल्म में मुझे एक किरदार मिला जो कि बहुत अच्छा किरदार था, सीन्स शायद कम थे लेकिन एक नोटिस करने लायक किरदार था,
0: जी
1: और वो फिल्म इतनी बड़ी हुई तो एक छोटे से छोटे किरदार को भी आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है।
0: बिल्कुल
1: तो दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म दैट हैपेंड इन माय लाइफ। तो अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो शायद कबीर सिंह के नाम से मुझसे जानते होंगे।
0: हाँ, बड़े सेलिब्राइट पर्दे का ये जो पहला अनुभव था,
1: जी
0: इसमें सारे बड़े नाम,
1: बहुत
0: तो कहीं किसी तरह का प्रेशर महसूस किया आपने या इन सब के साथ काम करते हुए क्या अनुभव क्या था?
1: मैं मेरे आर्ट से बहुत प्यार करता हूँ सर, तो मुझे बिल्कुल प्रेशर फील नहीं होता जब मैं परफॉर्म कर रहा होता
0: क्या बात, बहुत बड़ी बात आपने कही है, और मतलब जो भी इस क्षेत्र में आने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत सही बात है कि समझे इस बात को कि आप अपनी कला से कितना प्रेम करना चाहिए।
1: हूँ। बस वो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरी वही है,
0: हाँ
1: अगर
0: हाँ
1: आप आपकी कला में निपुण हो, आपने उसे सफिशिएंट टाइम दिया है,
0: जी
1: तो सामने मतलब मैं बच्चन साहब के साथ भी रूबरू हुआ हूँ पर मुझे कभी प्रेशर नहीं आया।
0: ओहो
1: तो और यही सब लोग हैं जो इस लेवल पे जा चुके हैं, जैसे बच्चन साहब को तो बचपन से हम देखते आ रहे हैं।
0: जी,
1: जब मैं उनके साथ पहली बार रूबरू हुआ, वागले की दुनिया के हमारे शो के थ्रू एक्सचेंज हुआ था,
0: हाँ हाँ
1: हमारा शो और उनका शो KBC, और वो हम
0: जी
1: लोग,
0: जी
1: तो हमें नसीब प्राप्त हुआ उनके इर्द गिर्द बैठने का, उनसे बात
0: हाँ
1: करने का।
0: हाँ
1: तो मुझे प्रेशर नहीं लगा, मुझे लगा कि

0: अपना ही कोई एक सीनियर, एक बहुत बड़ा
1: जी,
0: अभी मेरी आंखों में पानी आ रहा है, वो फील था वो अलग ही था। तो वो उनसे मिलने के बाद ऐसा लगा, और उनसे मैंने बात भी की, मैंने उनको कहा, आई रिक्वेस्टेड हिज मैनेजर कि मुझे एक मिनट अलग से बात करनी है।
1: अच्छा।
0: जैसे अरे आप दिन भर साथ में थे सर, क्या प्रॉब्लम है, बोले एक मिनट बात करनी है।
1: हाँ।
0: तो वो आए, पटेल साहब बहुत ही खूबसूरत इंसान है, बहुत ही अच्छे दिल से, वो आए, उन्होंने कहा हाँ हाँ बोलिए बोलिए। मैंने बोला सर एक प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में।
1: हाँ
0: अरे क्या हो गया?
1: अच्छा।
0: मैंने बोला सर वो बचपन से आपको देखते देखते बड़े हुए हैं, तो अभी जब भी एक्टिंग करते हैं तो मेरा कोई ना कोई दोस्त या कोई डायरेक्टर ऐसा बोलता है कि यार खुद से थोड़ा बच्चन कम कर ले। मुझे उनका एक बहुत खूबसूरत गाना आता है और जो मैं गाता भी हूँ बहुत सारे गेट टुगेदर्स में, शराबी फिल्म का दे दे प्यार दे। आई लव दैट सॉन्ग, इट स्टार्ट्स विद हम बंदे हैं प्यार के, तो एक बहुत खूबसूरत गाना है जो मैं हमेशा।
1: चलिए सुनते हैं।

0: शराबी फिल्म का गीत हम सुन रहे थे, दे दे प्यार दे। और ये प्यार जो आपने मांगा इंडस्ट्री से, वो आपको मिलता गया, बढ़ता गया ये प्यार, और इस प्यार की अब इंतहा होना बाकी है। मगर इस प्यार के बढ़त में जो अगला स्टेप है, वो कौन सी फिल्म थी, कौन सा प्रोजेक्ट था?
1: इस दौरान काफी फिल्में हुई। एके वर्सेस एके नाम की अनिल कपूर और अनुराग कश्यप जी के साथ एक फिल्म थी, नेटफ्लिक्स पे आई थी।
0: हाँ हाँ
1: वो मैंने एक फिल्म की, बहुत अच्छी फिल्म थी। अनिल जी और अनुराग जी के साथ काम करने का मौका मिला, दोनों इतने महान एक्टर्स भी हैं,
0: जी
1: तो बहुत सीखने को मिलता है इन सब लोगों के थ्रू। तो एके वर्सेस एके मेरी दूसरी फिल्म थी।
0: जी
1: फिर मैंने बागी 3 भी की, जो कि टाइगर श्रॉफ के साथ में थी, रितेश देशमुख साहब थे, वो थी। फिर उसके बाद में मेरी दो प्रोजेक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मड़गांव एक्सप्रेस एक फिल्म आई थी अभी, कुणाल खेमू उन्होंने वो डायरेक्ट की थी, लिखी थी।
0: जी
1: लाइट कॉमेडी फिल्म, बहुत ही खूबसूरत पिक्चर थी। जैसे

0: हेरा फेरी अंदाज अपना अपना, ये फिल्में कभी भी लगाओ कितनी भी बार देखो, वैसा ही मडगांव एक्सप्रेस भी आप कभी भी देखो, एक बड़ा ही लाइट कॉमेडी फैमिली के साथ देखने लायक
1: हाँ
0: वो एक फिल्म थी। और एक ताज़ा खबर नाम के वेब
1: वेब
0: सीरीज
1: सीरीज
0: जी, जो कि भुवन बाम अपने आप में एक बहुत बड़ा यूट्यूब स्टार है आज के दुनिया में,
1: जी।
0: तो उसके साथ की थी। वो दोनों सीजन मैंने उसमें किए, तो उसमें भी मेरा प्राइमरी कैरेक्टर रहा, नेगेटिव शेड है, ग्रे शेड है। पहले सीजन में विलन थे जेडी चक्रवर्ती साहब,
1: जी
0: जो कि साउथ से सत्या मूवी आई थी, उन्होंने उस सत्या का कैरेक्टर
1: हाँ
0: किया।
1: हाँ हाँ
0: और दूसरे में थे जावेद जाफरी साहब,
1: जी
0: तो ये दोनों के साथ मैंने वो कैरेक्टर किया था जो कि ग्रे शर्ट था, लेकिन काम करते हुए बहुत मजा आया। फिर बीच में गांधी गोड से एक युद्ध,
1: हाँ
0: जो राजकुमार संतोषी साहब की फिल्म थी, उसका किस्सा बड़ा खूबसूरत है। हुआ ये कि मैं रणजीत कपूर सर के साथ नाटक किया करता था।
1: अच्छा
0: रणजीत कपूर सर जो अन्नू कपूर साहब के बड़े भाई हैं, 9 साल बड़े,
1: हाँ हाँ
0: वो थिएटर की वन ऑफ द मोस्ट सीनियर पर्सनैलिटी होंगी आज इंडिया में।
1: जी जी
0: तो उनके साथ में नाटक करता था, चेखव की दुनिया, शेर अफगन भी हम करने वाले थे। तो सर को मैं बहुत मानता हूँ। लॉकडाउन खत्म होते ही मैंने सोचा कि मैं वापस आ जाता हूँ, फैमिली मेरी नागपुर में ही थी,
1: हाँ
0: लेकिन मैं आ गया, एटलीस्ट थोड़ा बहुत काम चालू हुआ था।
1: जी जी
0: मैं रंजीत सर को मिलने गया, रंजीत सर ने कहा कि विपुल कल आ जाओ, उस दौरान जो है वो सोसाइटीज लॉक हुआ करती थी, सबको एंट्री नहीं होती थी। बोले तुम्हारे पास गाड़ी है तो मुझे तुम छोड़ देना, मुझे जाना है जुहू,
1: अच्छा
0: तब हमारी रास्ते में बात भी हो जाएगी। मैंने बोला सर ठीक है। मैं गया, सर को पिकअप किया मैंने, हम जाते जाते बातें कर रहे थे, जो कुछ बातें थी मैंने भी एक फिल्म लिखी थी मैंने सर को बताई,
1: अच्छा
0: बातें हुई। मुझे पता नहीं वो कहाँ जा रहे हैं, उन्होंने कहा जुहू चलो,
1: अच्छा
0: बच्चन साहब के घर के सामने से जाएंगे। तो मैं वहाँ ले गया गाड़ी। फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मेरी मंजिल आ गई, मैं उतरता हूँ,
1: हाँ
0: मिलते हैं बाद में। मैंने बोला ठीक है सर। तो उन्होंने उतरते वक्त पूछा तुम राज जी से मिले हो? मैंने बोला कौन राज जी सर?
1: हाँ
0: अरे राजकुमार संतोषी।
1: अच्छा
0: अरे मैंने बोला सर मैंने तो नाम ही सुना है, आप राज जी से मिले हो, कैसे मैं मिलूंगा? अच्छा तो आ जाओ चलो। फॉर मी इट वॉज लाइक गूस बम्प,
1: ओहो
0: इतने बड़े इंसान से आ जाओ चलो मिलने। मैंने तुरंत मैंने ठीक है आता हूँ, मैंने गाड़ी लगाई, उनके साथ ऊपर गया।
1: हाँ
0: ऊपर गया तो राज जी नहीं थे, बाहर गए हुए थे कहीं।
1: अच्छा
0: उन्होंने कहा कि थोड़ी देर आप इंतजार कीजिए, और वो चले गए अंदर किसी वर्कशॉप टाइप डिस्कशन के लिए।
1: अच्छा
0: अब वो बहुत बड़ा सा फ्लैट टॉप फ्लोर पे मैं था, मैं वहां पे जाके, टेरेस ओपन था, वहां पे जाके बैठ गया। और एक इंसान बड़ा खूबसूरत ख्यालों में खो जाता है। मैंने सोचा मैं ऐसे बैठा हुआ, मेरे लंबे बाल हुआ, लॉकडाउन में मैंने कंधे तक बाल बढ़ा लिए थे।
1: अच्छा
0: मैंने सोचा मैं ऐसे बैठा हुआ और राज जी की एंट्री होती है, राज जी बोलते हैं अरे यार ये कौन है, इसको ले लेते हैं। ऐसे मैं कुछ सोच रहा था। हालांकि राज जी आए थोड़ी देर बाद, उन्होंने मुझे देखा नहीं, बाद में मुझे मिलाया गया उनसे।
1: हाँ
0: और एक कैरेक्टर उनके दिमाग में था, जो उनके एसोसिएट ने आके मुझे बताया
1: हाँ
0: कि डीएसपी राणा नाम के एक उस दौरान के अच्छा कैरेक्टर था,
1: जी
0: तो उनको बताया कि ये है विपुल देशपांडे। रंजीत सर ने बताया कि मेरा एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है, थैंक्स टू रंजीत सर फॉर दैट। और उन्होंने कहा कि आप इससे जो भी आपके पास काम हो आप कराइए, बहुत बढ़िया कलाकार है। तो उन्होंने कहा यार डीएसपी का कैरेक्टर है लेकिन इतने खूबसूरत बाल बढ़ा रखे हैं,
1: हाँ
0: काटने पड़ेंगे। मैंने बोला सर मैं काट लूंगा, बालों का टेंशन नहीं है, अब काम
1: बराबर
0: करना जरूरी है। देन ही गिव मी दैट कैरेक्टर एंड आई वर्क विद हिम, इट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम ऑल्सो।
1: ओटीटी की वेब सीरीज के लिए, फिल्मों के लिए आपने काम किया, टेलीविजन के लिए सीरीज की है और बड़े पर्दे पर भी काम किया है। ये तीनों अलग अलग मीडियम है मगर इसके शूटिंग की जो प्रोसेस है ऑलमोस्ट एक जैसी होती है।
0: जी
1: कुछ फर्क आपने एक एक्टर के रूप में महसूस किया है इसमें?
0: फिल्म और ओटीटी ऑलमोस्ट सेम है,
1: हाँ
0: क्योंकि इसके पहली बात आती है बजट की। आपके पास में एक थोड़ा अच्छा डिसेंट बजट है तो आपके पास टाइम होता है।
1: जी
0: टेलीविजन में क्या होता है कि आपके पास में टाइम थोड़ा कम होता है, क्योंकि आपको वो शूट करके पहुंचाना है
1: हाँ
0: आगे, और
1: उसकी एक तयशुदा तारीख है कि उस दिन वो
0: डेडलाइन
1: एपिसोड तो टेलीकास्ट होना ही
0: होना
1: है।
0: ही है।
1: जी
0: तो जैसे आपने कहा कि एक तयशुदा तारीख, तो उस वक्त आपको पहुंचाना है।
1: जी
0: और आपके पास में बहुत सारा काम होता है,
1: जी
0: बिकॉज
1: जी
0: महीने में अगर वो 28 दिन टेलीकास्ट हो रहा है, 28 दिन आपको काम करना पड़ेगा, 28 स्टोरीज आपको लगेंगी।
1: जी
0: तो मेरा एक बहुत ही बड़ा काम जो मैंने किया है आज तक, वो था वागले की दुनिया।
1: हाँ जी
0: मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझता हूँ कि जेडी सर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, जेडी मजेठिया सर, आतिश कपाड़िया सर, ये
1: जी
0: दोनों प्रोड्यूसर्स हैं। मुझे मौका मिला सुमित राघवन जैसे इतने सीनियर आर्टिस्ट के साथ भाई के करेक्टर में काम करने का, तो सुमित दा मेरे मेंटर जैसे हैं।
1: क्या बात
0: दो और हमारे आइकॉन थे, भारती मौसी, भारती आचरेकर,
1: जी
0: और अंजन सर, अंजन श्रीवास्तव, जो कि सीनियर कपल थे
1: जी
0: वागले। ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूट्स हैं,
1: बिल्कुल
0: इनसे सीखने को बहुत मिलता है। तो ये तीनों के साथ काम करने में बड़ा मज़ा आया, मुझे बहुत सराहना भी मिली इन लोगों के साथ काम करते हुए, बहुत सीखने मिला। ये मेरा पहला डेली शो था,
1: अच्छा
0: तब तक मैं फिल्म्स और ओटीटी ही करना चाहता था, तो मैं उसी पे फोकस ज़्यादा कर रहा था। बट ये कैरेक्टर बड़ा ही अपने आप में मुझे
1: ये मुझे
0: पसंद
1: लगता
0: है।
1: है 2022 की बात है।
0: जी, 2022 की बात है, आज से 4 साल पहले।
1: हाँ
0: तो ये मुझे फ़ोन आया, जैसे मैंने कहा वर्क ग्रीनरी,
1: हाँ
0: उसी कॉन्सेप्ट में मुझे कॉल आया। ये होता है कि आप जैसे कोई न्यू कॉमर भी आता है, वो सोचता है अरे यार मैं अभी ये ऑडिशन क्यों दूँ, वो क्यों दूँ। मुझे लगता है हर एक ऑडिशन जो आपके पास आता है वो कुछ ना कुछ मीनिंग लेके आता है, वो
1: हाँ
0: शायद कहीं ना कहीं ऐसे सर्कल में जाएगा जहां से आपको बाद में फ्यूचर में काम मिलेगा,
1: अच्छा
0: क्योंकि सबको चाहिए अच्छे काम करने
1: बिल्कुल
0: वाले। तो
1: बिल्कुल
0: कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, दे नीड गुड पीपल। तो आपके पास जो भी मौका, जो भी अपॉर्चुनिटी आती है, आप उसको छोड़ो मत। आपके पास में भले ही आपको लग रहा है कि ये इतना मजा नहीं आ रहा है, बट आप उसको शूट करके भेज दो।
1: जी
0: आजकल तो बहुत आसान हो गया है, पहले मैं जब आया था 2013 में, ये ऑनलाइन वीडियो बना के भेजने वाली बात नहीं थी।
1: बिल्कुल
0: आज ऐसा हो गया है कि आपको स्क्रिप्ट आती है, आपका मोबाइल में अच्छा कैमरा है, आप उसको स्टैंड पे लगाओ और खुद ही घर पे बैठ के शूट कर लो, आप
1: अपना
0: ऑडिशन भेज दो, सही लगा तो वो बुलाएंगे। ये पहले नहीं हुआ करता था, पहले एक भी ऑडिशन क्यों ना हो जाना पड़ता था, जहां जहां बुलाया जा रहा
1: जी
0: है
1: जी
0: वहां पे लाइन में खड़ा होना
1: वो
0: पड़ता था।
1: दर दर भटकने वाली बात है
0: बिल्कुल,
1: वो
0: हमने दर दर की ठोकरें खाई है। और बहुत जगह से बाहर से ही निकाला जाता था कि यहाँ कुछ काम नहीं है।
1: हाँ
0: कुछ जगह पूछा जाता था कि आपकी अपॉइंटमेंट है, तो नहीं सर पता करने आए, कुछ काम है क्या? नहीं नहीं कोई कोई काम नहीं है।
1: ओह
0: तो ये भी बहुत बार, बहुत साल हुआ है मेरे साथ। तो लेकिन उसका अपना एक मजा था, वो
1: हाँ
0: सफर है।
1: अच्छा
0: मंजिल पे पहुंचने का मजा तभी आता है जब सफर अच्छा हो,
1: हाँ
0: अगर सफर आप डायरेक्ट चले गए तो क्या मतलब फिर।
1: बराबर
0: तो एक अलग मजा रहा है, अभी भी मैं एंजॉय करता हूँ, स्ट्रगल अभी भी खत्म नहीं हुआ है,
1: हाँ
0: अभी भी ऐसे बहुत सारे किरदार हैं जो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन शायद वहां तक पहुंचने के लिए अभी समय होगा, बट जब भी मिलेगा ये सफर आनंददायी ही रहेगा।
1: क्या बात। कोई ऐसा गाना जो आपके इस संघर्ष के दिनों में बार बार आपके जहन में गूंजता हो।
0: देवानंद साहब का जो एक गाना मैंने उन पे फिल्माया हुआ गाना देखा था, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला
1: है,
0: गया
1: क्या बात है।
0: और फिक्र को धोए में उड़ाता
1: हम दोनों
0: चला।
1: फिल्म का गाना है,
0: हाँ जी
1: बेहद लोकप्रिय गीत।
0: बेहद लोकप्रिय
1: आइए सुनते हैं।
0: जी।

0: विपुल जी, जिंदगी का साथ निभाते निभाते आप वागले की दुनिया तक पहुंचे।
1: जी
0: हम उसकी बातें और थोड़ा विस्तार से करना चाहेंगे।
1: जी
0: अंजन जी जैसे वरिष्ठ और श्रेष्ठतम कलाकार के साथ काम करना, भारती जी आचरेकर और सुमित दादा के बारे में आप बता रहे थे, सुमित राघवन जी, कैसा इंटरेक्शन होता था ऑफ द कैमरा, कैसे सब माहौल होता था?
1: एक बहुत ही खूबसूरत बात सुमित दादा के साथ ये होता था
0: जी
1: कि मैं जब तक सेट पे जाऊं और हम लोग रिहर्सल करें
0: जी
1: तब तक मैं उसको बोलता था कि सुमित्रा ये करते हैं, सुमित्रा ये करेंगे, हाँ ये
0: हाँ
1: करेंगे। जैसे ही एक्शन होता है वो दादा मुझे बोलता था
0: जी,
1: क्योंकि
0: आपने बड़े भाई का रोल
1: मैंने
0: किया,
1: उनके बड़े भाई का रोल किया था।
0: मनोज नाम था
1: मनोज वागले मेरा, मनोज वागले मेरा नाम था।
0: जी जी जी
1: तो बड़ा एक अजीब सा वो लगता था,
0: हाँ
1: मुझे बड़ा मजा आता था उसमें सुनते हुए कि
0: जी
1: जब तक एक्शन नहीं हो रहा है तब तक मैं उनको दादा बोल रहा हूँ। सभी हम लोग सभी से
0: जी
1: सीनियर है। और फिर उसके बाद में जैसे ही एक्शन हो गया तो सुमित दादा की यहाँ से आवाज आती थी, अरे
0: हाँ
1: दादा। खैर ये तो हुई मजाक की बात, लेकिन जहां तक उनके साथ काम करने का सवाल है, सुमित दादा को भी 40+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। वो बहुत
0: जी
1: बचपन से काम कर रहे हैं,
0: बिल्कुल
1: फास्टर फेने वो
0: हाँ
1: शो किया करते थे 80s में शायद।
0: बिल्कुल
1: और अंजन जी और भारती मौसी का तो क्या ही कहना, मतलब वो मेरे फर्स्ट रील मदर फादर थे और
0: हाँ,
1: उन्होंने उतना ही प्यार दिया।
0: आपको वो पहला शॉट याद आ रहा होगा अंजन जी के साथ जो दिया था आपने?
1: अमेजिंग इट वाज, मतलब
0: हाँ
1: पहला शॉट सुमित्रा के साथ भी, अंजन जी के साथ भी। तो हालांकि सुमित्रा के साथ तो मेरा मॉक शूट भी हुआ था,
0: अच्छा
1: क्योंकि ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जिनको प्रोडक्शन बुलाता है, चैनल बुलाता है, एक ऑडिशन होता है, उसके बाद में देखा जाता है कि इनके साथ में केमिस्ट्री होगी कि नहीं होगी।
0: हाँ
1: तो मुझे बुलाया था मेरे ऑडिशन के बाद में, शॉर्टलिस्ट होने के बाद में प्रोडक्शन ने मॉक शूट के लिए।
0: अच्छा
1: तब सीन ये था कि माँ मतलब भारती मौसी एडमिट है
0: अच्छा
1: और ये जो कैरेक्टर है मनोज वागले का, ये थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड कैरेक्टर है
0: ओके
1: मेरा, जो कैरेक्टर मैंने जो प्ले किया था, और उतना ही कूल और उतना ही शांत सुलझा हुआ है राजेश वागले जो कि सुमित दादा प्ले करते थे।
0: हाँ
1: तो इतना उसमें डिफरेंस दिखाना था कि माँ के हॉस्पिटल में वो उधर बजर बजा रही, कोई आ नहीं रहा है और ये भड़का हुआ है। और फिर नर्स को बुलाता है, नर्स को झाड़ता है और वो डर के चली जाती है। इस टाइप का एक वो सीन था। मैं सीन प्रिपेयर करके आया, सुविधा को भी मैं पहली बार मिला था। तो बड़ी प्लीजेंट पर्सनालिटी है। जितने बड़े आर्टिस्ट होते हैं उतने ही डाउन टू अर्थ होते हैं, उतने ही दिल के खूबसूरत होते हैं, मैंने देखा हुआ है। ये तभी तो एक अच्छी एक्टिंग कर सकते
0: बिल्कुल
1: हैं
0: बिल्कुल,
1: इंसान, अगर दिल से अच्छा नहीं है तो हो
0: बहुत
1: जाएंगे।
0: बड़े कलाकार इसलिए क्योंकि ये बहुत अच्छे और बड़े इंसान हैं
1: जी जी जी
0: और बहुत विनम्र होते हैं।
1: बहुत विनम्र होते हैं, इनको कभी भी आप देखेंगे नहीं कि अननेसेसरी शॉर्ट टेम्पर हो कि इस पे चला रहे हैं कुछ भी।
0: जी।
1: तो ये बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो सुमित्रा के साथ वो भी मैंने जो एक मॉक शूट किया, एक्शन होने के पहले तक मैं बिल्कुल उस जोन में नहीं जाता,
0: जी
1: लेकिन एक्शन के बाद मैं चाहता हूं कि इंसान वही रहे जो कैरेक्टर है, वही मैं फील करूं अंदर से। और ये मुझे वहां सीखने को मिला। हमारे डायरेक्टर थे समीर कुलकर्णी सर, अमित कानेरे सर,
0: जी
1: दीपेश शाह, ये तीन डायरेक्टर्स थे वहां पे। इन तीनों ने भी जब तक सीन ओके नहीं होता तब तक वो आगे नहीं भेजते थे।
0: अच्छा
1: मेरे ख्याल से ऊपर से आया हुआ है, जेडी सर के थ्रू आया है कि यार ये चीज करनी है तो अच्छी करनी है, छापना नहीं है कि हाँ चलो हो गया आगे बढ़ो। हालांकि वहां पे जाके कोई रोक ही देगा आपको, या ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं ये सीन नहीं है, आप भी रोजमर्रा के आर्टिस्ट आप रोज कर रहे हो चीजें तो हो
0: जी
1: जाती है, लेकिन जो मूड आया है वो हम करते थे। जैसे अंजन सर मुझे मोस्ट ऑफ टाइम अगर मेरा और उनका सीन है वो मुझे उनके रूम में बुला लेते थे
0: अच्छा
1: कि यार विपुल आ जाओ अपना सीन है, रूम में बैठ के रिहर्सल करते हैं। वो भी थिएटर आर्टिस्ट है, मैंने भी थिएटर किया है, मुझे बड़ा पसंद है। तो वो बुला देते थे और मैं और अंजन सर फिर हम लोग रूम में ही उनके वैनिटी में ही पहले रिहर्स करते थे क्या मूड रहेगा। सिर्फ लाइन्स ही नहीं होती है एक आर्टिस्ट के लिए, न्यूएंसेस जो छोटे छोटे उसमें की हरकतें होती है
0: जी
1: वो ज्यादा मैटर करती है,
0: बिल्कुल
1: पॉजेस मैटर करते हैं। टीवी जो है आपके छोटे से छोटे एक्सप्रेशन को पकड़ लेता है, आई मूवमेंट हो, चाहे आपने कहीं बीच में हल्का सा कान मूव किया है,

0: या मराठी में आवंडा गेड़ा असं म्हणतो आपण,
1: एक घूट लेने की जो एक प्रक्रिया
0: वो है। तो ये छोटी छोटी बातें जो है कैमरा नोटिस करता है आपकी, तो ये चीज सीखने को मिलती थी। भारती मौसी के साथ इमोशनल सीन करने में बहुत कष्ट लगा था,
1: प्रयास करना
0: पड़ता था कि उस लेवल तक कैसे उसके आजू बाजू पहुंचा जाए।
1: हाँ।
0: लेवल तो पहुंचने की बात ही नहीं करता, सो सीनियर। तो भारती मौसी के साथ जब इमोशनल सीन एक माँ बेटे वाला होता था, और बहुत ज्यादा उनके साथ ही रहे इनिशियली, बाद में फिर अंजन जी के साथ भी रहे, लेकिन पहले माँ के साथ वो बेटे का बॉन्डिंग दिखाना था, तो एक अलग जोन में चले जाता था फिर मैं। मैं उतना जरूर समझता कि ये चीज उस राइटर ने इतने प्यार से लिखी है, इतने इमोशन सोच के लिखी है, मैं करने वाला हूँ एक बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट के साथ
1: जी,
0: तो वो उस लेवल पे जाना ही चाहिए, तो ही मजा आएगा।
1: हाँ।
0: तो आई यूज्ड टू हैव इट फॉर एन आवर टू आवर, मैं लिखता था, खुद मैं लिखता हूँ, जितने भी लाइंस आती है वैसे तो स्क्रिप्ट मिलती है, बट आई यूज्ड टू राइट इन माय वर्ड्स एंड देन रिपीट इट ऑन रेगुलर बेसिस। ये मैंने सीखा है शायद नाना पाटेकर साहब से भी सुना था, आमिर खान साहब से भी सुना था, कि वो खुद लिखते हैं एंड देन वो रिहर्स करते हैं 20 बार 25 बार।
1: जी जी,
0: उसी से फायदा होता है, आपके पास जो भी है वो स्क्रिप्ट है
1: जी,
0: वो स्क्रिप्ट में ही चीजें मिलेंगी आपको जो डिलीवर करनी है
1: जी।
0: तो ये इन तीनों के साथ मैंने सीखा है और बहुत मजा आया। बाकी भी मेरे जितने भी को एक्ट्रेस थे, मेरी वाइफ थी विद्या वागले, सुकन्या ने वो किरदार किया था, फिर हमारे पड़ोसी थे अमित और दीपक पारिक, और उनके साथ भी करने में बड़ा मजा आता था, एक अलग ही जोन में वागले जो है चलता रहा। वागले ने मुझे बहुत कुछ दिया
1: जी जी,
0: घर घर में पहचान मेरी मनोज वागले के नाम से।
1: हाँ, मैं अभी उसी सवाल पे आने वाला हूँ कि घर घर में आप पहुंचे, मगर ये वागले का शूटिंग करने के बाद जब आप अपने घर नागपुर पहुंचे तो कैसा रिएक्शन था?
0: मेरे बहुत सारे दोस्तों को पता तो था ही कि मैं ऑलमोस्ट 7-8 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ।
1: हाँ।
0: कुछ लोगों ने मेरे काम देखे थे, क्राइम पेट्रोल साउथ इंडिया, लेकिन वो छोटे मोटे काम थे जो ज्यादा दिखते नहीं थे।
1: अच्छा।
0: तो वागले करने के बाद जब घर घर में शील पहुंची तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने भी बताना चालू किया, ये हमारा दोस्त है, तो लोग यकीन नहीं करते थे।
1: हाँ।
0: कि ये तेरा रोज कहां से आएगा, जो नागपुर का था नागपुर में होगा, या ऐसा थोड़ी होता है। बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करते थे। एक बहुत ही मजाक किया सीन हुआ मेरे साथ।
1: अच्छा।
0: मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, 2023 की बात है, हॉस्पिटल में हम लोग थे। एक बार मैं नीचे से, मैं और मेरी शायद माँ थी मेरे साथ, हम लोग नीचे से लिफ्ट में ऊपर के फ्लोर पे जा रहे थे, वहां पे एक इंसान आए, उन्होंने मुझे थोड़ी देर घूर के देखा, फिर अपने आप में कुछ सोचा।
1: अच्छा।
0: और थोड़ी देर में बोलते हैं, आप ही के जैसा एक आर्टिस्ट है।
1: अच्छा।
0: दिखता बिल्कुल आपकी तरह। अच्छा
1: अच्छा।
0: किसमें? वो बहुत बड़ा एक शो है वागले की दुनिया।
1: हाँ, हाँ।
0: उसमें मनोज वागले का कैरेक्टर करता है।
1: अच्छा।
0: बिल्कुल हूबहू आपकी तरह दिखता है। अच्छा।
1: जी जी।
0: मैंने बोला, सर काम अच्छा करता है क्या?
1: हाँ।
0: अरे बहुत अच्छा, बहुत उम्दा।
1: अच्छा अच्छा।
0: बोला, चलो नाम तो नहीं खराब कर रहा है। I like that thing. फिर किसी ने बताया, शायद कोई और भी थे लिफ्ट में।
1: हाँ।
0: उनको बताया कि ये वही है, बट उन्होंने बिलीव नहीं किया। कि आप क्या करोगे आप?
1: ये बिल्कुल रोवेन एटकिंसन जैसा हो गया, वो कई बार अपने इंटरव्यूज में बता चुके हैं
0: जी,
1: कि कई लोग उनसे मिले हैं और वो उनसे पहली बार यही कहते हैं कि क्या आपको पता है आप मिस्टर बीन जैसे दिखते हैं।
0: ट्रू ट्रू।
1: जी जी जी। तो ऐसा ही वाकया आपके साथ?
0: बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हाँ। और मुझे बड़ा अच्छा भी लगा कि उसने बोला कि यार काम अच्छा करता है।
1: हाँ।
0: एक कलाकार के लिए सबसे जरूरी वही बात,
1: और क्या चाहिए,
0: और क्या चाहिए,
1: क्या बात है।
0: तो ये घर घर में नाम उसी वजह से पहुंचा, मेरे जितने भी रिश्तेदार है उनको भी अच्छा लगा।
1: हाँ।
0: दोस्त हैं उनको अच्छा लगा, और मैं जहाँ भी जाता था वो बड़े ही प्राउडली मुझे इंट्रोड्यूस भी कराते थे, बुलाते भी थे। तो ये एक प्यार है, अपनों का प्यार।
1: क्या बात।
0: मैंने एक फिल्म देखी थी, टॉपिक निकला नागपुर का इसलिए।
1: हाँ।
0: कि आर माधवन साहब की एक फिल्म थी, रामजी लंदन वाले।
1: अच्छा। हाँ।
0: ये बहुत खूबसूरत फिल्म है, उसमें ये कुक होते हैं इंडिया में, उन्हें US में लिख के जाया जाता है किसी फैमिली के थ्रू काम में।
1: अच्छा।
0: अब वहां पे उनके साथ जो स्टोरी होती है वो तो अलग, लेकिन वहां के शेफ कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेते हैं।
1: अच्छा।
0: और वर्ल्ड शेफ टाइटल जीत लेते हैं।
1: ओहो।
0: उन्हें वहां पर रेस्टोरेंट दिया जाता है खरीद के, उनको वहां पे सब दिया जाता है।
1: हाँ।
0: पर वो बोलते हैं कि यार ये सब मुझे अब मत दो, मैं तो वापस जाऊंगा ना। तो बोलते हैं, अरे सर आपको इतना बड़ा रेस्टोरेंट न्यूयॉर्क में, ये वो सब दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है।
1: हाँ।
0: गाड़ी रहेंगी आपके पास में। बोले, क्या मतलब वो गाड़ी का, अगर मैं अपने दोस्तों को ना घुमा पाऊं।
1: हाँ।
0: मैं अगर मेरे फैमिली के साथ चक्कर ना मार पाऊं, मैं उस सब सब चीजों को शेयर ना कर पाऊं अपने लोगों के साथ। तो मजा तो वही है।
1: बिल्कुल।
0: तो मुझे वही अच्छा लगता है कि जाओ तो एक अपने लोग मिले,

0: उन्हें अच्छा लगे,
1: क्या बात है,
0: दैट इज मोर इम्पोर्टेंट।
1: तो अब उन अपने लोगों के लिए जो नागपुर में बसते हैं, आपके दोस्त, आपके घर वाले, परिवार वाले, उनके लिए आप कौन सा गाना सुनवाना चाहेंगे?
0: वैसे अलग से तो बहुत सोचा नहीं, लेकिन देवानंद साहब का ये जो गाना था, है अपना दिल तो आवारा,
1: हो आइए सुनते हैं।

अभिनेता विपुल देशपांडे से जयंत पात्रीकर की बातचीत का पहला भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहायक काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते सेलुलॉइड के सितारे कार्यक्रम में।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार संगीत।
2: 5 बज चुके हैं, वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जकार्ता में इंडोनेशियाई संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी पर श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के पास विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाने के अपार अवसर हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में लियुगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए विनिर्माण संयंत्र का भूमि पूजन करेंगे। चीन की विनिर्माण उपकरण निर्माता कंपनी की भारतीय इकाई द्वारा किया जा रहा यह विस्तार प्रदेश को निर्माण उपकरण और विनिर्माण के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20,00,000 किसानों को सशक्त बनाना है। मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांवों और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज नई दिल्ली में टीबी मुक्त भारत अभियान को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने सभी मंत्रालयों से अपने प्रयासों को तेज करने का आग्रह किया और टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने आज टीटी नगर स्टेडियम में आगामी एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंगहम में भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, 5:02 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

कहते हैं बड़े बदलाव हमेशा बड़े कदमों से नहीं बल्कि छोटी छोटी अच्छी आदतों से शुरू होते हैं। जापान की एक खूबसूरत सोच है काइजन, जिसका अर्थ है हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना। जरा सोचिए, अगर हम प्रतिदिन अपने जीवन में सिर्फ एक छोटा सा सुधार करें, एक

प्लास्टिक की बोतल कम इस्तेमाल करें, एक पौधा अधिक लगा दें, या फिर अपने पुराने मोबाइल, चार्जर और खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान को कूड़ेदान में फेंकने की बजाय सही जगह जमा करें, तो क्या होगा? शायद आज यह बदलाव छोटा लगे, लेकिन कल यही आदत हमारे पर्यावरण के लिए एक बड़ी ताकत बन जाएगी। और इसी काइज़न की सोच से जुड़ा है आज का हमारा बेहद महत्वपूर्ण विषय, जिसका नाम है ई वेस्ट का प्रबंधन। नमस्कार साथियों, आवाज है आपके रेडियो दोस्त तुषार तमिल सेना की। स्वागत है आपका आपके मनपसंद कार्यक्रम में, जिसका नाम है युवाओं की वाणी, युववाणी। गुड इवनिंग।

शाहिद माल्या की आवाज में सुनाए गीत फिल्म मौसम से। गीतकार थे इरशाद कामिल और संगीत था प्रीतम का। साथियों, आज के आधुनिक समय में मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी, फ्रिज, बैटरी, चार्जर जैसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन जब ये उपकरण खराब हो जाते हैं या पुराने हो जाते हैं तो इन्हें ई वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहा जाता है। ई वेस्ट का सबसे बड़ा खतरा है इसमें लेड, मर्करी, कैडमियम और अन्य हानिकारक तत्वों का होना। यदि इन्हें सामान्य कचरे के साथ फेंक दिया जाए या खुले में जलाया जाए तो ये मिट्टी, पानी और हवा को प्रदूषित करते हैं और मानव स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग जितने अधिक समय तक हो सके उतने समय तक करें। छोटी छोटी खराबियों को ठीक करवाकर उन्हें दोबारा इस्तेमाल करें। यदि कोई उपकरण आपके काम का नहीं है लेकिन ठीक स्थिति में है तो उसे किसी जरूरतमंद व्यक्ति, स्कूल या संस्थान को दान दिया जा सकता है। जब कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु पूरी तरह अनुपयोगी हो जाए तो उसे केवल अधिकृत ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर या रिसाइकलिंग सेंटर पर ही जमा करें। नई वस्तु खरीदते समय भी अच्छी गुणवत्ता वाला उत्पाद चुनना ताकि बार बार इलेक्ट्रॉनिक सामान बदलने की आवश्यकता ना पड़े और वेस्ट कम बने। साथियों, बारिश के मौसम में ई वेस्ट का प्रबंधन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पानी के संपर्क में आने पर इलेक्ट्रॉनिक कचरा पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए अधिक हानिकारक हो सकता है। पुराने मोबाइल बैटरी, CFL, LED को खुले या गीले स्थान पर न रखें। इन्हें किसी बंद डिब्बे या सूखे कमरे में सुरक्षित रखें। ई वेस्ट को कभी भी घरेलू गीला या सूखे कचरे के साथ न मिलाएं। इसे अलग से संग्रहित करें। खासकर पुरानी बैटरियों को बारिश में खुला ना छोड़ें। इसमें लीकेज होने से आग लगने या रासायनिक प्रदूषण का खतरा बढ़ सकता है। साथियों, पर्यावरण की सुरक्षा केवल सरकार या किसी संस्थान की जिम्मेदारी नहीं है। यदि हम सभी अपने पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान का सही तरीके से रिसाइकलिंग करेंगे तो हम एक स्वच्छ, सुरक्षित और हरित भविष्य की दिशा में योगदान दे सकते हैं। क्योंकि बदलाव की शुरुआत किसी और से नहीं, हमसे और आज से होती है। तो साथियों, ये थी कुछ बातें ई वेस्ट के प्रबंधन के ऊपर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत।

मोनाली ठाकुर की आवाज में सुनाइए गीत फिल्म लुटेरा से। गीतकार थे अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत था अमित त्रिवेदी का। तो साथियों अब तैयार हो जाइए, अपने कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए, क्योंकि अब समय है रोजगार सूचना का। इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी द्वारा आईओबी अप्रेंटिस के कुल 750 पोस्ट के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन आज से यानी 7 जुलाई 2026 से प्रारंभ हो चुके हैं। अंतिम तिथि है 20 जुलाई। आवेदक की आयु 20 वर्ष से कम और 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए आप आईओबी की ऑफिशियल वेबसाइट www.iob.bank.in पर जाकर जानकारी प्राप्त और आवेदन कर सकते हैं। मैं पुनः इसको दोहराता हूं कि कुल पोस्ट हैं 750 आईओबी अप्रेंटिस के लिए, अंतिम तिथि है 20 जुलाई और आज से आवेदन शुरू हो चुके हैं। आवेदक की आयु 20 वर्ष से कम होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए और 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑफिशियल वेबसाइट है www.iob.bank.in। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत।

जावेद बशीर श्रेया घोषाल की आवाज में सुनाई गीत फिल्म भाग मिल्खा भाग से। गीतकार थे प्रसून जोशी और संगीत था शंकर एहसान लॉय का। दोस्तों जरा सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि सिर्फ 5 मिनट में आप एक नई स्किल सीखना शुरू कर सकते हैं तो क्या आप यकीन करोगे? आज की तेज रफ्तार दुनिया में बड़ी बड़ी किताबें और घंटों की क्लास ही सीखने का एकमात्र तरीका नहीं रह गई है। अब जमाना है माइक्रो लर्निंग का। माइक्रो लर्निंग का अर्थ है किसी विषय को एक साथ लंबे समय तक पढ़ने की बजाय उसे छोटे छोटे भागों में और कम समय में सीखना। उदाहरण के लिए, रोज केवल 10 से 15 मिनट देकर अपने विषय का एक नया टॉपिक सीखना, किसी सॉफ्टवेयर का एक फीचर समझना या किसी विषय का एक छोटा वीडियो देखकर नई जानकारी प्राप्त करना। इससे सीखना आसान भी हो जाता है और याद भी लंबे समय तक रहता है। और यही जो आपने सीखा है उसे आपकी जरूरत, आपकी रुचि और आपके करियर के हिसाब से तैयार किया जाए तो उसे कहते हैं स्किल कस्टमाइजेशन। यानी हर व्यक्ति के लिए सीखने का अपना अलग रास्ता। यदि कोई छात्र पत्रकार बनना चाहता है तो उसे लेखन, संवाद और कम्युनिकेशन स्किल यानी संचार कौशल पर अधिक ध्यान देना चाहिए। यदि कोई तकनीकी क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या डिजिटल स्किल सीखने चाहिए। आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और डिजिटल तकनीक की मदद से अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी गति से और अपनी रुचि के विषय चुनकर सीखना पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है। इसलिए आज के दौर में केवल डिग्री ही नहीं बल्कि सही समय पर सही स्किल सीखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। माइक्रो लर्निंग हमें कम समय में प्रभावी ढंग से सीखने का अवसर देती है, जबकि स्किल कस्टमाइजेशन हमें अपनी क्षमताओं को सही दिशा में विकसित करने में मदद करता है। यही शिक्षा और रोजगार की दुनिया में एक नया बदलाव ला रहे हैं और हमें बदलती दुनिया की चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं। तो ये थी कुछ बातें माइक्रो लर्निंग और

सोनू निगम, श्रेया घोषाल की आवाज में सुने गीत फिल्म मैं हूं ना से। गीतकार थे जावेद अख्तर और संगीत था अनु मलिक का। साथियों, घड़ी की सुई अब हमें इशारा कर रही है कि आपसे विदा लिया जाए। आशा उम्मीद है कि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। पढ़ते रहिए, अपने स्किल पर ध्यान दीजिए और सुनते रहिए आपका मनपसंद कार्यक्रम युवाओं की वाणी युववाणी। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ रोचक विषयों के साथ। तब तक के लिए अपने रेडियो दोस्त तुषार तमिल सेना को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओ, ये आपके अपने रेडियो सेट पर आपका अपना पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी सागर। हम आपको बताना चाहेंगे इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए, अब आपकी खिदमत में पेश है गीत, गजल और कव्वालियों से लबरेज कार्यक्रम संगीत सरिता।

अभी आपने ये जो गज़ल सुनी इसे आवाज़ दी थी चित्रा सिंह ने, इस गज़ल को लफ्ज़ दिए थे मुजफ्फर वारसी ने और संगीतबद्ध किया था जगजीत सिंह ने। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है FM एंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, जिस पर आप इस वक्त संगीत सरिता कार्यक्रम का लुत्फ ले रहे हैं। और आइए इस गज़ल के बाद अब हम आपको लिए चलते हैं कव्वाली की तरफ। ये कव्वाली जिसे आवाज़ें दी हैं उस्ताद जाफ़र हुसैन ख़ान बदायूनी और उनके हमनवाओं ने।

0: और श्रोताओ, नुसरत फतेह अली खां के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम संगीत सरिता यहीं पर संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6 बजने को हैं, अब से थोड़ी देर में मुंबई केंद्र से हम रिले करेंगे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, AI और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदुर तक फैली हुई है।
2: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग अदिपुणा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि एरोड्रोम लाइसेंस मिलने के बाद भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उद्घाटन के लिए तैयार है। हवाई अड्डे का निरीक्षण करने के बाद श्री नायडू ने कहा कि ये परियोजना केंद्र सरकार, राज्य सरकार और GMR समूह के आपसी सहयोग से निर्धारित समय से पहले पूरी कर ली गई है। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं। वायनाड के मिपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर

0: तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया और उन्हें मेपड़ी के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। इस बीच वायनाड और कोझिकोड जिले के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड के शिक्षण संस्थान कल बंद रहेंगे। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार वर्षा के कारण आज सुबह डोडा जिले के थथरी क्षेत्र में एक बादल फट गया, जिससे कई घरों में दुकानों को नुकसान पहुंचा। हालांकि बादल फटने से कोई हताहत नहीं हुआ है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में आज दोपहर 2 विस्फोट हुए। इनमें 4 पुलिसकर्मियों सहित 18 लोग घायल हो गए। ये विस्फोट फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुअल मैक्रों और सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा की राष्ट्रपति भवन में होने वाली बैठक से ठीक पहले हुए। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंघम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। तराने नए पुराने कार्यक्रम में आप सभी का फिर से हम स्वागत करते हैं। सुनाते हैं आपको विरासत फिल्म का ये गीत।

0: कुमार सानू और जसपिंदर नरूला की आवाजों में जावेद अख्तर का लिखा हुआ गीत आप सुन रहे थे विरासत फिल्म से। तराने नए पुराने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
1: तराने नए पुराने।

0: रेफ्यूजी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाज़ें थीं सोनू निगम और अलका याग्निक की, जावेद अख्तर के बोल थे, अनु मलिक का संगीत था।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमने सरकती
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
5: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
4: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: दिल तो पागल है फिल्म का ये गाना आशा भोसले की आवाज में।

0: आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में आप ये गीत सुन रहे थे। इसे आनंद बख्शी ने लिखा था और उत्तम सिंह ने संगीत तैयार किया था। फिल्म का नाम दिल तो पागल है। इस गीत के साथ ही आज का तराने नए पुराने कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: तराने नए।

0: फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, ये आपके अपने रेडियो सेट पर आपका अपना पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी सागर। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम सदाबहार गीत। इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। श्रोताओं, आज के ये सदाबहार गीत का कार्यक्रम समर्पित है उस महान फिल्मी कलाकार को जिसे लोग एक्टिंग की यूनिवर्सिटी कहा करते थे, जिसने अपनी वर्सेटाइल एक्टिंग के माध्यम से बरसों लोगों का मनोरंजन किया। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार साहब की, जिनकी आज पुण्यतिथि है।
1: बड़ा कठिन है प्रश्न ये भैया, आए बारंबार, इस उम्र में पूछे बीवी क्या करते हो प्यार, मुझसे क्या करते हो प्यार। अरे पूछे मेरी बीवी, डू यू लव मी, डू यू लव मी,
2: तो क्या कहा आपने?
1: अरे बरसों से तो कहता आया आई लव यू, आई लव यू,

यशोदा एक्टर डायरेक्टर और गायक दिलीप कुमार साहब का जन्म 11 दिसंबर 1922 को पेशावर में जो कि अब पाकिस्तान में है वहां हुआ था। उनका असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था जिन्हें मशहूर एक्ट्रेस देविका रानी ने दिलीप कुमार नाम दिया था। दिलीप साहब की पहली फिल्म थी ज्वारभाटा जो आई थी 1944 में। आपको भारतीय सिनेमा में मेथड एक्टिंग के प्रणेता और पहले सुपरस्टार आपको माना जाता है।

श्रोताओ, दिलीप कुमार साहब को 1953 में फिल्म दाग के लिए इतिहास का पहला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था। कालजयी फिल्म मुगले आजम, जो कि 1960 में रिलीज हुई थी, और साथ ही साथ शहजादा सलीम का रोल इसमें उन्होंने निभाया था, और 1955 में रिलीज हुई थी फिल्म देवदास, ये कालजयी इसमें जो किरदार थे उन किरदारों ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था।

0: श्रोताओ, दिलीप कुमार साहब को भारतीय सिनेमा में अतुलनीय योगदान के लिए 1994 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार और 2015 में पद्म विभूषण से नवाजा गया था।
1: लागा गोरी गुजरिया से

श्रोताओ, दिलीप कुमार साहब की प्रसिद्ध फिल्में रहीं नया दौर, गंगा जमुना, क्रांति, विधाता, सौदागर, राम और श्याम और शक्ति।

0: बधाई हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है।
1: सच?
0: हाँ हाँ सच। लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके कंधों पर। आपको माँ और उसके होने वाले बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा और जल्दी से जल्दी HIV की जांच भी करवाना, क्योंकि HIV का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
1: डॉक्टर, अगर HIV पॉजिटिव आए
0: तो बिना कोई देरी किए ART केंद्र से ART ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
1: डॉक्टर, हम आज ही जाकर HIV की जांच कराते हैं।
0: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
2: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, 7 जुलाई 2021 को इस महान कलाकार ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें नमन करते हैं।

0: तो श्रोताओ, आज का ये सदाबहार गीत केंद्रित था दिलीप कुमार साहब पर।
1: सलामी ले ले।
0: और इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम एंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए अब सुनिएगा बुंदेली लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग।

0: रिमझिम बरसत कारी बदरिया, ये लोकगीत अभी आपने सुना। इस लोकगीत को आवाज दी थी नत्थू सिंह ने।
1: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पर, जिस पर आप इस वक्त ट्यून किए हुए कार्यक्रम लोकरंग। और आइए कार्यक्रम लोकरंग को आगे बढ़ाते हैं और एक और वर्षा गीत हम आपको सुनवाते हैं काशीराम अहिरवार की आवाज में।

आदि कार्यक्रम लोकरंग यहीं पर संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, शाम के 7 बजने को हैं। अब से थोड़ी देर में दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, AI और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदूर तक फैली हुई है।
1: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदूर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
0: प्रधानमंत्री इस समय जकार्ता में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इसे अतुलनीय भारत की जीती जागती तस्वीर बताया है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदि पूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20,00,000 किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांवों और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि एरोड्रोम लाइसेंस मिलने के बाद भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उद्घाटन के लिए अब तैयार है। हवाई अड्डे का निरीक्षण करने के बाद श्री नायडू ने कहा कि यह परियोजना केंद्र सरकार, राज्य सरकार और GMR समूह के आपसी सहयोग से निर्धारित समय से पहले ही पूरी कर ली गई है। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4,00,000 से ज्यादा गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इस साल मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSE सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं। वायनाड के मेपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को

मचा लिया गया है। इस बीच वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड के शिक्षण संस्थान कल बंद रहेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंघम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अटलांटा में आज मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला मिस्र से होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी का सागर केंद्र एफ एम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। हम आपको बताना चाहेंगे समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:05 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। तो आइए श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण के तहत हम आपको बता दें हमारे केंद्र से कल दिनभर प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। कल सुबह की शुरुआत आप कर सकते हैं कार्यक्रम अर्चना से। भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम आप तक पहुंचेगा कल सुबह 6:05 पर। श्री रामचरित मानस का संगीत में पाठ हम आपको सुनवाएंगे कल सुबह 6:30 पर। इसका हम आपको 42वां भाग सुनवाएंगे। गायक स्वर होगा वाणी जयराम का। कार्यक्रम भूले बिसरी गीत आपके रेडियो सेट तक पहुंचेगा सुबह 6:40 पर। सुबह सुबह ये दैनिक वैचारिक चिंतन का कार्यक्रम आप तक पहुंचेगा सुबह 7:00। कृषि संकेत कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सुबह 7:05 पर। सुबह 7:20 पर मनचाहे गीत कार्यक्रम में हम अपने श्रोताओं के पसंद के कुछ फिल्मी गीत सुनवाएंगे। गीत गजल और कव्वाली का कार्यक्रम संगीत सरिता होगा कल सुबह 7:45 पर।

कल सुबह 8:15 पर बुंदेली लोक गीतों का कार्यक्रम लोक संगीत आप सुन सकते हैं। सुबह 8:45 का वक्त होगा कार्यक्रम चित्रपट संगीत का। जिले की चिट्ठी भोपाल केंद्र से हम रिले करेंगे सुबह 10:00। प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन, यह आप सुनेंगे कल सुबह 10:05 पर। फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने का पुनः प्रसारण होगा कल सुबह 10:10 पर। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनिएगा कल सुबह 11:00। युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी होगा भोपाल केंद्र से रेले कल शाम 5:02 पर। संगीत सरिता कार्यक्रम आप सुन सकते हैं कल शाम 5:30 पर। कल शाम 6:30 पर होगा फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम सदाबहार गीत कार्यक्रम। लोक रंग सुनिएगा कल शाम 6:45 पर और शाम 7:20 पर। शाम 7:30 पर भोपाल केंद्र से हम रिले करेंगे ग्राम सभा। कल रात 8:00 फिल्मी गीतों से लबरेज कार्यक्रम चित्रपट संगीत आप सुन सकते हैं। संगीत सरिता कार्यक्रम का समय होगा रात्रि 8:20 पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम में श्रोता अपने पसंद के फिल्मी गीत सुनेंगे कल रात 9:00। और कल रात 9:30 पर मुंबई केंद्र से हम रिले करेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। तो श्रोताओं, ये थे हमारे कल दिनभर प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। और इसके बाद आइए अब हम आपको जानकारी दे रहे हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। शाम 7:20 पर आप सुनेंगे खेती गृहस्थी पर आधारित कार्यक्रम किसान वाणी। रात्रि 8:00 फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रपट संगीत। गीत गजल और कव्वाली से लवरेज कार्यक्रम संगीत सरिता आप सुनेंगे रात्रि 8:20 पर। कार्यक्रम मनचाहे गीत आपके रेडियो सेट तक पहुंचेगा रात्रि 9:00। और रात्रि 9:30 पर मुंबई केंद्र से हम रिले करेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। और श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम विवरण यहीं पर संपन्न होता है।

0: प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किया सम्मानित। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रगति परियोजना का किया शुभारंभ। 20 लाख किसानों को मिलेगा फायदा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से की मुलाकात। और कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव धार जिले के पीथमपुर में चीनी कंपनी के नए विनिर्माण संयंत्र का करेंगे भूमि पूजन। अब समाचार विस्तार से। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे बड़े सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। श्री मोदी ने कहा कि यह सम्मान करोड़ों भारतवासियों का है और भारत इंडोनेशिया के ऐतिहासिक व आत्मीय संबंधों का प्रतीक है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशियाई संसद को संबोधित करते हुए दोनों देशों के बीच सदियों पुराने संबंधों, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य की साझा दृष्टि का उल्लेख किया।
1: आज के युग में टेक्नोलॉजी की सप्लाई चेन रेजिलियंस बहुत मायने रखती है। क्रिटिकल मिनरल्स और स्टील के क्षेत्र में सप्लाई चेन को अधिक मजबूती देने के लिए भी अहम समझौता हुआ है। हमारी कंपनीज के बीच स्टेनलेस स्टील और रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर साझेदारी की नई शुरुआत हो रही है।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली सरकार के 70 लाख पौधरोपण अभियान का शुभारंभ किया। श्री शाह ने बताया कि 1994 में अधिसूचित 7,784 हेक्टेयर रिज क्षेत्र में अब तक 5,000 हेक्टेयर को वन क्षेत्र घोषित किया जा चुका है और जल्द ही पूरे क्षेत्र को कानूनी सुरक्षा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगले 3 वर्षों में पीपल, बरगद, नीम, गुलर, अर्जुन और जामुन जैसे दीर्घजीवी पेड़ लगाकर रिज को दिल्ली के ग्रीन लंग्स के रूप में विकसित किया जाएगा।
2: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को कपास उत्पादकता मिशन की जानकारी दी। उपराष्ट्रपति ने भारत के कपास क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए मिशन की समग्र कार्य योजना की सराहना की। उन्होंने प्रति एकड़ कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए स्पष्ट एवं मापने योग्य लक्ष्य तय करने की भी बात कही। वहीं दूसरी तरफ श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि प्रगति कार्यक्रम के तहत 26,000 लघु कृषि उद्यमियों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जो एक गांव में 100 से 200 किसानों के साथ मिलकर कृषि कार्य में बदलाव लाने का काम करेंगे।
3: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से

आगे बढ़ता है और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं जो एक गांव में काम करते हैं और

0: आयोजित हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल धार जिले के पीथमपुर में लियुगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए विनिर्माण संयंत्र का भूमि पूजन करेंगे। ये चीन की अग्रणी निर्माण उपकरण कंपनी का 20 एकड़ में विकसित होने वाला नया संयंत्र है। इस प्रोजेक्ट में करीब 27 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। संयंत्र में प्रारंभिक चरण में प्रतिवर्ष 6500 एक्सकवेटर के निर्माण की क्षमता विकसित की जाएगी। कंपनी 2008 से पीथमपुर में अपनी विनिर्माण इकाई संचालित कर रही है, जहां 3000 व्हील लोडर और मोटर ग्रेडर का उत्पादन होता है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रदेश में लंबित प्रमोशन में आरक्षण मामले में आज प्रदेश के उच्च न्यायालय में एक बार फिर सुनवाई टल गई। सुनवाई के दौरान सपाक्स संस्था के अधिवक्ताओं ने मांग की कि जब तक अंतिम फैसला नहीं आता तब तक राज्य में सभी पदोन्नति प्रक्रियाओं पर रोक लगाई जाए। संस्था ने विधानसभा सचिवालय द्वारा हाल ही में जारी 15 पदोन्नति आदेशों पर भी आपत्ति जताते हुए इन्हें न्याय संगत नहीं बताया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया की खंडपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पष्ट किया कि इसे अधिक लंबा नहीं खींचा जा सकता। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मंत्रालय में प्रदेश की मेडिकल सप्लाई चेन व्यवस्था की कार्ययोजना की समीक्षा की। उन्होंने सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में गुणवत्ता युक्त दवाओं की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आयुक्त स्वास्थ्य धनराजू एस ने बताया कि प्रदेश के सभी संभागीय मुख्यालयों पर 10 वेयर हाउस स्थापित किए जाएंगे, जहां हाई एंड तकनीक से दवाओं की रियल टाइम ट्रैकिंग की जाएगी और NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में गुणवत्ता परीक्षण के बाद ही दवाओं का वितरण किया जाएगा। प्रदेश में सामान्य प्रशासन विभाग ने 190 तहसीलदार एवं प्रभारी डिप्टी कलेक्टरों को डिप्टी कलेक्टर पद पर नियमित पदोन्नति दे दी है। ये पदोन्नति मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियमों तथा विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर की गई है। प्रदेश के राज्य शिक्षा केंद्र ने कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इनमें कक्षा 5वीं में 80.42% और कक्षा 8वीं में 74.16% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। मुख्य वार्षिक परीक्षा और पुनः परीक्षा को मिलाकर कक्षा 5वीं का कुल परिणाम 98.89 और कक्षा 8वीं का 98.19% रहा है। प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावासों में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए अंतिम चरण में 20 जुलाई तक आवेदन किए जा सकते हैं। इस वर्ष से प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई है। प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने टीटी नगर स्टेडियम में आगामी एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों से आज मुलाकात की। मंत्री ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में खिलाड़ियों का चयन पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। एशियन गेम्स के लिए प्रदेश के 22 खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स, शूटिंग और घुड़सवारी सहित विभिन्न खेल विधाओं में क्वालिफाई किया है। 23 जुलाई से 2 अगस्त तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ी और टीम सदस्य जूट से तैयार विशेष परिधान पहनेंगे। इसे वस्त्र मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जूट बोर्ड ने जूट विस्कोस मिश्रित कपड़े से विकसित किया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण के तहत इस पहल का उद्देश्य जूट उद्योग को नई पहचान देना और पर्यावरण अनुकूल वस्त्रों को बढ़ावा देना है। मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने भारत में अपने प्रस्तावित यूजर नेम फीचर को फिलहाल लॉन्च नहीं करने का फैसला किया है। कंपनी ने सरकार को भरोसा दिया है कि अधिकारियों के साथ चल रही बातचीत पूरी होने तक ये फीचर देश में शुरू नहीं किया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। महापौर मालती राय ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत राजधानी भोपाल के 3EME सेंटर में पौधरोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। खंडवा के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर में छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम और विधिक सहायता की जानकारी दी गई। नीमच में कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद्र गहलोत ने सपरिवार संकटमोचन हरकियाखाल मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। सीहोर में RTE के तहत निजी स्कूलों की खाली 1651 सीटों पर तीसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। अशोकनगर कलेक्टर ने साप्ताहिक जनसुनवाई में 408 आवेदकों की समस्याओं को सुनकर समय सीमा में निराकरण के निर्देश दिए। आगरमालवा कलेक्टर ने बाढ़ के खतरे को देखते हुए बाढ़ प्रभावित पुल और रपटों पर ड्रॉप गेट लगाने के निर्देश दिए हैं। बैतूल कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक कर लंबित पेंशन प्रकरणों को प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए। झाबुआ में डायरिया से बचें हर बार अभियान के तहत ग्राम कालापीपल में जनजागरूक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जबलपुर के नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के वेटनरी कॉलेज में श्वानों के लिए कृत्रिम आंख लगाने की तकनीक का सफल प्रयोग किया गया है और भोपाल और राजगढ़ को जोड़ने वाले बैरसिया नरसिंहगढ़ मार्ग पर पार्वती नदी के अस्थायी वैकल्पिक मार्ग से आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। SDM आशुतोष शर्मा ने नदी में बढ़ते जलस्तर और तेज बहाव को देखते हुए ये आपातकालीन आदेश

यह आकाशवाणी का सागर केंद्र एफएम एंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 7:20 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है खेती गृहस्थी पर आधारित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने बारे सभी किसान भैया पंचों को और बिन्ना पंचों को सतीश साहू
1: और शशि की
0: राम
1: राम, राम।
0: और शशि बिन्ना
1: हाँ।
0: इतने सारे कागज आप लेके आई हो और बड़ी देर से हम देख रहे हैं आप लिख रही हो और खूब पूरे मनोयोग से, जो अपन सब जनों की आदत ही रहते कि किसानों तक एक एक बात बिल्कुल अपन सही पहुंचाए, है ना?
1: बिल्कुल भैया।
0: इतनी देर से आप तैयारी कर रही हो, बताओ तो कि लेके काका आई हूँ।
1: भैया देखो, पहले तो हम है ना एक छोटी सी कविता लिखी अपने किसान भैयाओं के लिए।
0: अरे वाह,
1: पहले तो बात सुना दे रहे हैं कि चारों तरफ फैली हरियाली, चारों तरफ फैली हरियाली, मनमोहक छटा सबसे निराली।
0: अरे वाह,
1: सवई जने चौमासे के गुण गावे और जो मौसम सवई के मन को भावे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हरी हरी चदरिया पूरी धरती पे बिछ गई है, खूब दूबा और सब किस्म के पेड़ पौधा वनस्पतियां जो है हरे हरे चारों तरफ आ गए।
1: बिल्कुल भैया, देखो बरसात को मौसम सभी मौसमों में से बहुत ही सुहावनो मौसम रहते हैं।
0: बिल्कुल,
1: कहे कि जैसा ही पानी बरसत है सो ऐसा लगता है कि धरती ने हरी सी चूनर ओढ़ ली हो। भैया बाबा तुमने पहले ही कह दी है, और सभी पेड़ पौधों पे रौनक आ जाते हैं।
0: बिल्कुल
1: भैया, सावन के बादलों से भी ज्यादा कीमती रहते हैं असड़ा के बादल।
0: अच्छा।
1: और खेत खलियानों में अपने किसान व्यस्त हो जाते हैं, और भैया ऐसा लगन लगा थे कि जैसे उनके लाने तो आए दिन बाहर की कि नहीं,
0: शब्दों को बड़े सजा समार के लिए भाई हम कह रहे हैं कि बहुत देर से आप तैयारी कर रही हो।
1: बिल्कुल भैया, और देखो चारों तरफ जैसे ही गर्मी रहते और उमस रहते, सो ये सभी चीजों से जैसे ही चौमासु आउट है और पानी की बूंदे अपन सबको राहत देने लगती हैं, तो सभी को मन प्रसन्न हो जाते हैं।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: और भैया जैसे कि वन महोत्सव सप्ताह 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाओ गौ है, तो आज 7 जुलाई है,
0: आखिरी दिन कहा।
1: बिल्कुल, सो सभी जनों ने जो सप्ताह वन महोत्सव को जो सप्ताह रहो है खूब उत्साह और उमंग से मनाओ।
0: हाँ,
1: सभी ने खूब पेड़ पौधा लगाए, और कोनू ने फलदार पेड़ पौधा रोपे, तो कोनू ने औषधीय पेड़ पौधा रोपे, और भैया बाल बच्चों ने तो खूब फूल वाले पौधा लगाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और वैसे तो देखो जो बरसात को मौसम अब चल ही रहो है, तो जाने सोचे कि भाई वन महोत्सव सप्ताह हतो और 7 दिन को हतो, तो देखो अब तो 4 महीना की बरसात है।
0: हाँ।
1: सो खूब ही जमीन में नमी रहे थे, सो चाहे जितने पेड़ पौधा वे लगा उतरे वे, वो कहे कि भैया जब खूब ज्यादा नमी रहे थे सो बस ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं रहे थे, बस एक गड्ढा करो और पौधा रोप दो, सो वो बड़ो होने लगा थे। बस जरूरत एक बात की रहे थे कि जैसे अब तो पानी नहीं देने, जरूरत जा रहे थे कि पानी बरसत है सो ऐसो ना होवे कि कहूँ उके आसपास खूब पानी भर जावे, या फिर ज्यादा पानी से वो पौधा सड़ जावे, गल जावे, और ऐसे में क्या होता है कि पत्ता पीले पड़ पड़ के गिर जाते हैं, सो ही समझ जाओ कि पौधा मतलब सूखन वालों है, और मतलब वो पनप नहीं पा रहा है। तो इन सब चीजों को अपन को खूब ध्यान रखने का हो।
0: बिल्कुल,
1: तो भैया अपन तो यही कहे हैं कि खूब पेड़ पौधा लगावे, ज्यादा पानी की जरूरत रहता ही नहीं है, और ये मौसम को खूब ही पेड़ पौधा यदि लगा रहे हैं अपन, तो पर्यावरण को अपन सुंदर बना रहे हैं और स्वच्छ भी बना रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: और भैया जैसे कि आज है 7 जुलाई, तो 7 जुलाई को मशहूर साहित्यकार और कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जयंती है। भैया मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के गुलेर गांव के होवे के कारण नाम के आगे गुलेरी लिखते,
0: जैसे अपन सागरी लिखन लगत कई जने, है ना?
1: बिल्कुल भैया। और 1915 में प्रकाशित उनकी कालजयी रचना उसने कहा था हिंदी की पहली शिल्प वैज्ञानिक कहानी मानी जाती है।
0: बिल्कुल।
1: चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने जीवन में महज सिर्फ 3 कहानियां लिखी। उसने कहा था सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, और हिंदी साहित्य में भी अमर हो गए।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: वे नागरी प्रचारणी पत्रिका के संपादक और संस्कृत प्राकृत और भाषा विज्ञान के प्रकांड विद्वान थे। उनके निबंध कछुआ धर्म और मारीसी मोहि कुटाव हिंदी गद्य के अनमोल रत्न रहे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राच्य विद्या विभाग के प्राचार्य रहे, और प्राचीन इतिहास पे उनने गहन शोध कर।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिन्ना, तो ऐसी महान शख्सियत हो आज अपने कार्यक्रम में बहुत बहुत नमन करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। और शशि बहन अब आगे बताओ के आगे अपने श्रोताओं को अपन का लेके आए हैं, तो हम ही बताएं देते हैं कि आज अपने जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भी अपन एक कार्यक्रम में चर्चा करते हैं, तो आज कैप कैप्टन विक्रम बत्रा 7 जुलाई के दिन इनकी पुण्यतिथि अपन मनाते हैं, तो इनकी पुण्यतिथि पे भी अपन निश्चित रूप से इनकी चर्चा कर हैं। भारतीय सेना की जांबाज टुकड़ी 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स के अधिकारी जे हते कैप्टन विक्रम बत्रा, और कारगिल युद्ध में उनकी अदम्य वीरता और साहस को देखत भय पाकिस्तानी सेना ने उन्हें शेर शाह नाम दौतो। पॉइंट 5140 जो कहा थे वो पे तिरंगा फहरा के रेडियो पर दौगो उनको विजय उद्घोष, ये दिल मांगे मोर इतिहास में अमर होगो। गंभीर रूप से घायल होवे के बावजूद उनने राजनीतिक रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट 4875 जो अब इन्हीं के नाम से बत्रा टॉप कहा थे ओखों दुश्मनों से मुक्त कराओ, तो अपने साथी सैनिक की जान बचात भय 7 जुलाई 1999 को जे वीरगति को प्राप्त भय थे। मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से इनको सम्मानित करोगा। तो
1: बिल्कुल भैया, तो आज इनकी जयंती पे अपन इन्हें सशत नमन कर रहे हैं अपन सभी जने। और भैया जैसे कि आज 7 जुलाई है, तो 7 जुलाई को आधुनिक हिंदी के शीर्ष कवि केदार सिंह की भी जयंती है, तो इनके बारे में भी अपन अपने किसान भैयाओं को थोड़ी सी जानकारी दे दे रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल शशि बिन्ना, मनो इनकी जानकारी अपन देवे होके पहले कछु संदेश अपन सुनत हैं और उसके बाद अपन निश्चित रूप से इन केदारनाथ सिंह जी पे चर्चा कर हैं।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
1: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: तो शशि बिन्ना अपन कार्यक्रम में लौट के एक बार फिर से अपने सभी श्रोताओं को, भैया हरों को, बिन्ना हरों को बहुत बहुत एक कार्यक्रम में स्वागत करते हैं।
6: बिल्कुल भैया।
5: और जैसो के इन संदेशों के पहले आप कह रही थी कि आधुनिक हिंदी के शीर्ष कवि जो अपने देश में रहे हैं केदारनाथ सिंह, इन पे चर्चा करने हैं, तो आज निश्चित रूप से इनकी जयंती अपन मनाते हैं और इनको सादर अपन सरस्वत नमन भी करते हैं। इनके बारे में अपने किसान श्रोताओं को अगर अपन बताएं तो उत्तर प्रदेश के बलिया में जन्मे केदारनाथ जी तीसरा सप्तक 1959 के प्रमुख स्तंभ हते। उनकी कविताओं में गाँव शहर को द्वंद्व और जमीनी संवेदनाएँ सरल बिंबों में उभर के आते हैं। वर्ष 1913

0: में हिंदी साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको नवाजो गो। उनकी जानी मानी काव्य कृति अकाल में सारस के लाने उनको 1989 को साहित्य अकादमी पुरस्कार दो गो।
1: हाँ
0: और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भारतीय भाषा केंद्र के प्रोफेसर और अध्यक्ष जी रहे। उनकी बाघ और बनारस जैसी रचनाएं समकालीन हिंदी कविता के मील के पत्थर माने जाते हैं। और भी अगर प्रसिद्ध रचनाओं की शशि बिन्ना अपन बात करें तो अकाल में सारस अभी बिल्कुल अभी जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, उत्तर कबीर, ऐसी बहुत सी इनने कालजयी रचनाएं लिखी।
1: बिल्कुल भैया, तो आज इनकी जयंती पे अपन सभी जने ने शत नमन करते हैं भैया।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और भैया, जैसे कि अपन अपने किसान भैयाहरों के लाने तरह तरह की जानकारी हैं और बहुत बढ़िया से मनोरंजन से भरी लोकगीत लेके आते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल हैं,
1: तो देखो चर्चा तो हो ही गई और अपने किसान भैयाहर हैं, लोकगीत तो सुनते ही हैं, संग संग गुनगुनात सोई है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और इंतजार कर रहे हैं हम, समझ गए। हाँ,
1: तो आज देखो अपन सुनवा रहे हैं पुरुषोत्तम नायक और उनके संगी साथियों को गाओ भाव जो बढ़िया सो लोक भजन।
0: बिल्कुल।

0: पुरुषोत्तम नायक को गाव भाव जो बड़ो उम्दा सो आपने सुनवाओ लोकगीत
1: बिल्कुल
0: और एक बाद बिना अब जानकारी के क्रम की बेरा आ रही है तो जानकारी के क्रम में कहा लेके आई हूँ
1: भैया आज अपन लेके आए हैं बढ़िया सी जानकारी जो अपने किसान भैयाओं के लाने बहुत ही लाभ को धंधा रहे है और जानकारी है कि औषधि फसल अश्वगंधा की उन्नत खेती कैसे का करने है
0: बिल्कुल और इसमें विशेषज्ञ आए थे राजेश मिश्रा और उनसे बतकाओ करो तो आपने तो अपन जो बतकाओ सुनवाते हैं सुनवे वालों को
1: बिल्कुल भैया आज हमारे स्टूडियो में सेवानिवृत्त उद्यान की अधिकारी राजेश मिश्रा जी पधारे हैं जो आज हमारे किसान भैयाहरों को खरीफ मौसम की औषधि फसल अश्वगंधा की खेती के बारे में जानकारी दे रहे हैं। मिश्रा जी आपको हमारे कार्यक्रम में खूब ही खूब स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: जैसे कि जानकारी तो है ही किसान भैयाहरों को कि अबे जून के महीना में कम बारिश भई तो ऐसे में ऐसी फसलों की जरूरत महसूस हो रही है कि कम लागत और कम पानी में कछु फसलें ले सकते हैं। मिश्रा जी आप हमारे किसान भैयाहरों को बतावे इस समय कम बारिश को अनुमान जैसे कि मौसम वैज्ञानिक भी हाँ, बतला रहे हैं कम बारिश होने हैं इस साल में तो कौन सी ऐसी औषधि फसल है जिन्हें कम पानी की जरूरत रहते है और किसान भैया खरीफ में लगा सकते हैं।
2: किसान भाइयों इस वर्ष जून माह में 42% कम वर्षा हुई है जिससे किसान चिंतित है। अतः परंपरागत फसलों की अपेक्षा ऐसी फसलों की आवश्यकता महसूस की जा रही है जो कम पानी में और कम समय में व कम खर्च में बिना रासायनिक खाद का उपयोग किए अधिक आय व उत्पादन दे सके एवं जिनमें कीट व्याधियों का प्रकोप भी न हो। अतः हम आज आपको खरीफ मौसम में लगाई जाने वाली ऐसी ही औषधि फसल अश्वगंधा की खेती की संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। किसान भाइयों अश्वगंधा एक महत्वपूर्ण औषधि फसल है। इसे अश्वगंध के नाम से भी जाना जाता है। इसे अंग्रेजी में विंटर चेरी कहते हैं। इसका बीज बैंगन के बीज के समान होता है। औषधि पौधों में वाइल्ड जीन्स पाए जाने के कारण ये सभी प्रकार की भूमि में लगाए जा सकते हैं एवं इनमें किसी भी प्रकार के रोग एवं कीट नहीं लगते हैं एवं इनमें केवल जैविक खाद का उपयोग किया जाता है। रासायनिक खाद का उपयोग इनमें नहीं किया जाता है। भारत सरकार के औषधि पादप बोर्ड ने अश्वगंधा की खेती के लिए किसानों को प्रेरित करने के लिए अभियान चलाया है। गत वर्ष सरकार द्वारा किसानों को निःशुल्क अश्वगंधा की पौध भी वितरित की गई है। अतः किसान भाई जुलाई से सितंबर तक इसकी खेती कर अच्छा लाभ कमा सकते हैं।
1: तो किसान भैयाहरों के लाने कितनी बढ़िया सी जानकारी मिली है। कम लागत और रासायनिक खादों की भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो मिश्रा जी आप हमारे किसान भैया को बताएं कि अश्वगंधा को औषधि उपयोग का है इसके बारे में जानकारी दे दें।
2: इसका उपयोग देशी चिकित्सा आयुर्वेद व यूनानी पद्धति में होता है। इसकी ताजी जड़ों से तीव्र गंध आती है इसलिए इसे अश्वगंधा कहते हैं। इसका पौधा शुष्क जलवायु में अच्छी तरह उगता है इसलिए शुष्क क्षेत्र की बेकार भूमि को हरा भरा बनाने के लिए और भूमि को उत्पादक बनाने के लिए यह एक व्यावहारिक फसल है। आयुर्वेदिक कंपनियों को इसकी जड़ों की अत्यधिक मांग रहती है क्योंकि इसकी जड़ों से अश्वगंधा चूर्ण व शक्तिवर्धक जितने भी टॉनिक और कैप्सूल हैं वो बनाए जाते हैं जो कि शक्तिवर्धक और स्फूर्ति प्रदान करने वाले रहते हैं। इसकी सूखी जड़ों का उपयोग टॉनिक बनाने व कई रोगों में किया जाता है। अश्वगंधा रिष्ट टॉनिक इसकी सूखी जड़ों से ही बनता है। इसकी सूखी जड़ों की मांग की अपेक्षा आपूर्ति कम है अतः इसकी खेती लाभ का धंधा है। इसकी हरी पत्तियों का प्रयोग सूजन कम करने में किया जाता है। इसका प्रयोग हर्बल चाय व पाउडर बनाने में भी किया जाता है।
1: अब मिश्रा जी हमारे किसान भैयाओं को बताएं इसकी खेती के लाने कैसी जलवायु चाहिए और कैसी जमीन चाहिए पड़त है।
2: अश्वगंधा को खरीफ के मौसम में देर से लगा जमीन में अच्छी नमी व शुष्क मौसम होना चाहिए। इसकी खेती सभी प्रकार की भूमि में की जा सकती है किंतु भुरभुरी हल्की काली या बलुई दोमट मिट्टी जिसका पीएच 7 से 8 हो और जल निकास का प्रबंध हो सबसे अच्छी रहती है। अधिक आर्द्रता व छायादार स्थान में

0: इसकी बढ़वार कम होती है, अतः शुष्क जलवायु इसके लिए उपयुक्त है।
1: बहुत बढ़िया जानकारी दई देखो किसान भैयारों के लाने मिश्रा जी ने। अब हमारे मन में एक प्रश्न और आ रहा है कि अश्वगंधा की खेती किलाने खेत की जमीन है वह कैसे तैयार करें।
0: मुख्य रूप से इसकी खेती ऐसे खेतों में करते हैं जहां सिंचाई का अच्छा साधन नहीं तथा परंपरागत फसलें उगाना लाभप्रद नहीं है। वर्षा होने से पहले 2-3 बार खेत की अच्छी जुताई करके पाटा लगा देते हैं। बीज की बुआई के समय खेत को जोतकर मिट्टी भुरभुरी कर देते हैं और पाटा से खेत को समतल कर देते हैं। इस प्रकार भूमि तैयार कर लेते हैं।
1: अब मिश्रा जी आप हमारे किसान भैयारों को बताएं कि अश्वगंधा की जो खेती करबो चाहत हैं तो उके लाने कौन सो समय अच्छो रहे और बीज की मात्रा कितनी लगाते हैं इके लाने और बीज उपचार कैसे करने हैं, कौन सी दवाई से करने हैं, बीज की बुवाई के बारे में भी सारी जानकारी हमारे किसान भैयारों को दे देवे जिसे वे भी मन बना लें अश्वगंधा की खेती करवे के लाने।
0: अश्वगंधा की खेती जुलाई माह से सितंबर माह तक की जाती है। सीधे बीज से बुवाई के लिए 4 से 5 किलो बीज प्रति एकड़ लगता है व प्रति हेक्टर 8 से 10 किलो बीज लगता है। बीज को खेत में बोने से पहले डाइथेन M45 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित कर लेना चाहिए। मुख्यतः किसान अश्वगंधा को छिटकाव विधि से बोते हैं। यदि बीज को लाइनों में बोया जाए तो उपज अच्छी मिलती है एवं उसकी निदाई गुड़ाई में भी सरलता रहती है। इसे रोपाई विधि से भी लगाया जा सकता है। इसके लिए जुलाई में नर्सरी डालते हैं। 1 हेक्टर खेत में अश्वगंधा लगाने के लिए 500 वर्ग मीटर भूमि में 5 किलो बीज की नर्सरी डालते हैं। 5 से 8 सप्ताह में पौधे रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। रोपाई ऐसे समय करते हैं जब मिट्टी वर्षा के पानी से पूर्ण रूप से संतृप्त हो जाए। रोपाई शाम के समय की जाती है।
1: इसके बाद बात आउत है मिश्रा जी कि अश्वगंधा की उन्नत किस्में के बारे में बता दें और खाद उर्वरक के बारे में भी जानकारी दें और निदाई गुड़ाई जो रहते हैं और सिंचाई सभी चीजों के बारे में भी जानकारी दे दें।
0: अश्वगंधा की उन्नत किस्में JS 20 व जवाहर अश्वगंधा 134, पोसिता, नागौरी, रक्षिता, राजविजय, RBA 100 आदि हैं। ये किस्में अच्छी पैदावार देती हैं व सूखे को सहन करती हैं व औषधीय गुणों से युक्त होती हैं। खाद उर्वरक में बिजाई से पूर्व 2 ट्राली गोबर खाद या कंपोस्ट खाद प्रति एकड़ खेत में मिलाएं। यदि किसान भाई चाहें तो बुआई के पहले खेत तैयार करते समय 15 किलोग्राम नत्रजन प्रति हेक्टर डाल सकते हैं। सामान्यतः रासायनिक खाद का उपयोग किसान भाई इसमें नहीं करते हैं। बोने के 20 से 25 दिन बाद समय समय पर निंदाई गुड़ाई करते रहें जिससे खरपतवार ना हो सके। यदि वर्षा समय समय पर होती रहे तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि आवश्यकता हो तब ही सिंचाई करें।
1: या तो बहुत अच्छी बात बताई मिश्रा जी आपने, औषधि अश्वगंधा की खेती के बारे में आप बता रहे हो तो उसमें रासायनिक खाद को उपयोग नहीं करने हैं और सिंचाई की भी ज्यादा जरूरत नहीं है कि अश्वगंधा की जड़ों को खुद भी कुछ समय और भंडारण और उके उत्पादन के बारे में भी जानकारी दें।
0: दिसंबर के माह से पौधों पर फल फूल आने लगते हैं। जब पौधों की पत्तियां पीली पड़ने लगें तथा फल भी पीले हो जाएं तब फसल खुदाई के लिए तैयार हो जाती है। फसल की खुदाई जनवरी से मार्च के मध्य करते हैं। बुआई के लगभग 150 से 170 दिन बाद फसल पककर तैयार हो जाती है। पूरे पौधे को जड़ सहित खोदना चाहिए। पौधों को उचित गहराई तक खोदकर निकाल लेना चाहिए जिससे जड़ें कटने ना पाएं। खुदाई के समय जमीन में नमी होना चाहिए। पौधों को ऊपर से काटकर टुकड़ों में काट लें। नमी पर हल चलाकर भी जड़ें एकत्र की जा सकती हैं। खुदाई के बाद जड़ों को धोकर 7 से 10 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काट लें। इन टुकड़ों को धूप या छाया में सुखा लें। जड़ों को इतना सुखाना चाहिए कि नमी 10 से 12% रह जाए। जड़ों के टुकड़ों को टीन के डिब्बों में भंडारण करें जिससे फफूंद आदि ना लगने पाए। अश्वगंधा की जड़ों की औसत उपज 3 से 4 क्विंटल प्रति हेक्टर है।
1: अब हमारे किसान भैयारों को आप बताएं अश्वगंधा की जड़ों को बाजार भाव का है और किसान भैयारे जैसे मान लो अश्वगंधा की खेती कर रहे हैं इसकी बिक्री कहाँ पे हुई है।
0: ये आपने अच्छा प्रश्न किया है। अश्वगंधा की जड़ों का भाव गुणवत्ता पर निर्भर करता है। इस समय अच्छी क्वालिटी की सूखी अश्वगंधा

0: रजनीगंधा की जड़ों का भाव 25,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपया प्रति क्विंटल है, अर्थात 250 से 400 रुपया प्रति किलो के बीच है। मोटी और अच्छी गुणवत्ता की जड़ों की कीमत 45,000 रुपया प्रति क्विंटल तक हो सकती है। किसान भाई औषधि मंडी नीमच में व आयुर्वेदिक कंपनियों में संपर्क कर इसकी बिक्री कर सकते हैं और लाखों रुपए की आय 4 माह की फसल से अर्जित कर सकते हैं। इसका बीज भी महंगा बिकता है, मंदसौर मंडी में भी इसकी बिक्री होती है। किसान भाइयों, अश्वगंधा की लंबी मोटी और सफ़ेद जड़ों की कीमत सबसे अधिक मिलती है।
1: बहुत अच्छी बात बताई मिश्रा जी ने हमारे किसान भैयाहरों के लाने कि 4-5 महीना की जब फसल कहाई ये फसल लेवे से अच्छी मोटी कमाई हो सकत है। और किसान भैयाहरों के लाने अश्वगंधा की खेती के बीज कहाँ से मिल सकत है, हमारे किसान भैयाहरे भी बीज तैयार कर सकत है?
0: हाँ, कर सकते। किसान भाई कृषि विश्वविद्यालय व बीज भंडार व उद्यानिकी विभाग से संपर्क कर इसकी खेती करने वाले किसानों से भी संपर्क कर इसका बीज प्राप्त कर सकते हैं। केंद्रीय औषधि पादप बोर्ड से सहायता प्राप्त औषधि नर्सरी कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से भी बीज प्राप्त कर सकते हैं। और किसान भाई अश्वगंधा का उत्पादन करते हैं तो जड़ों की खुदाई के साथ ही बीज भी निकलता है, तो इसके बीज का भी उत्पादन करके बीज की भी बिक्री किसान भाई करके 2 गुना लाभ ले सकते हैं। जड़ों की भी बिक्री से लाभ ले सकते हैं और बीज की बिक्री से भी लाभ ले सकते हैं, तो यह किसानों के लिए लाभकारी फसल है।
1: और जैसे कि आपने बताया कि बीज खुद तैयार कर सकते हैं, तो बीज तैयार करने में कोई समस्या तो नहीं आती?
0: कोई समस्या नहीं आती। जिन किसानों ने इसकी खेती की है उन्होंने बीज भी तैयार किया और बीज की भी वो बिक्री करते हैं और जड़ों की भी बिक्री करते हैं। बीज तैयार करने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं।
1: तो देखो किसान भैयाहरों, आज हमारे स्टूडियो में पधारे राजेश मिश्रा जी ने कितनी बढ़िया जानकारी दी औषधि फसल अश्वगंधा की खेती के बारे में। मिश्रा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे किसान भैयाहरों को इतनी बढ़िया जानकारी दी, आपके लाने बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: वाह शशि बिन्ना, देखो आपने एक एक प्रश्न अपने किसान भैया बिन्ना हरों के लाने उनसे करो मिश्रा जी से, और मिश्रा जी ने बड़े विस्तार से अश्वगंधा की खेती की जानकारी दी। और एक बात में खास हमें जा लगी शशि बिन्ना के इनने कही के जो समय बहुत उचित होते है नर्सरी लगावे को अश्वगंधा की, तो हमारे किसान भैया बिन्ना हरे जो भी अश्वगंधा की खेती करो चाहत हो, जो ने सुनी हुए और जो उत्सुक हुए के प्रति, तो बे निश्चित रूप से पूरी तैयारी करके और भी सलाह मशविरा करके विशेषज्ञों से और अबे एक और रोपा डार देवे तो वो निश्चित रूप से समय पर जब डार है तो समय पर वो सही उत्पादन दे है, अच्छो लाभ दे है।
1: और भैया जैसे कि मिश्रा जी ने जावाद भी बताई कि मैं रासायनिक उर्वरक की जरूरत नहीं है, जैविक उर्वरक से भी अच्छी बढ़िया खेती हो जाए है और बहुत ही ज्यादा लाभ को धंधा है।
2: बिल्कुल बिल्कुल, और निश्चित रूप से औषधीय फसलों में जितनी भी जे अश्वगंधा है और भी दूसरी फसलें हैं इनकी तरफ किसान भैया बिन्नाहरे बढ़ रहे हैं। और जो पारंपरिक खेती अपन करते रहते हैं बोई सोयाबीन बोई गेहूं बोई चना बेबी लगाओ, लेकिन एक तो जो रहते हैं सो फसल चक्र भी ऐसे में नहीं, अगर अपन बेबी फसलें लेते हैं तो नहीं हो पात, तो अपन को फसल चक्र के हिसाब से तो फसलें बदलो ही चाहिए, संगे ही संगे अपने लाभ और उन्नत जो अपनी वैज्ञानिक खेती है वो करबे के लाने भी अपन को फसलें बदलो चाहिए।
1: बिल्कुल भैया, और देखो जब भी जो अपने किसान विशेषज्ञ पधारत हैं वो तरह तरह की अपने किसान भैयाओं को जानकारी देते हैं। और भैया देखो जब जब अच्छी बढ़िया सी जानकारियाँ मिलती हैं और जब कोनो किसान भैया बताऊ थे कि हमने फला जानकारी रेडियो के माध्यम से सुनी और रेडियो के माध्यम से हमने वो जानकारी को उपयोग में लाओ, हमने जा वाली खेती करी जा औषधि फसल की खेती करी, जब भी बता जाते हैं अपने ते आके और कभी आउते हैं भैया, पता है कभी आउते हैं? वे एक प्रगतिशील कृषक बन के आउट है।
2: बिल्कुल बिल्कुल आउट है,
1: है ना? और बड़े अच्छे से जब भी जानकारियां देते हैं कि हमने फला जानकारी सुनी थी, इतने साल हो गए इतने महीना हो गए और हमने ऐसी खेती करी और वो खेती से हमें बहुत ज्यादा लाभ मिलो।
2: बिल्कुल, और जब भी ऐसे आके बताते हैं तो निश्चित रूप से मन को मन के संगीत के तार छिड़ जाते हैं।
1: बिल्कुल भैया, अब हम समझ गए हैं कि आप क्या कह रहे हो।
2: बिल्कुल,
1: कि बहुत अच्छी सी जानकारी तो अपन ने सुनाई ली है और अपने किसान भैया हरे इस जानकारी सुनकर जरूर अश्वगंधा की खेती के बारे

0: में विचार कर रहे हैं, योजना बना है, और तो बस सुनवा रहे हैं हम हंसी खुशी के संग बढ़िया सुजो रज्जू राजा को गाओ भाव बन्ना गीत।
1: बिल्कुल बिल्कुल।

0: तो बिन्ना एक तो अच्छो जो ब्याह गीत आपने सुनवाओ रज्जू राजा को गाओ भाव, और बिन्ना जो बस्कारी को जो समय चल रहा है, जो खेती बाड़ी के हिसाब से, अब जैसे अश्वगंधा की खेती के हिसाब से अपने मिश्रा जी बता रहे थे, ये हिसाब से तो महत्वपूर्ण होता ही है। अपने जो पालतू पशु रहे थे
1: बिल्कुल भैया,
0: इनकी देखरेख के लिहाज से भी जो मौसम जो है बहुत महत्तम को रहे थे बिन्ना।
1: बिल्कुल भैया, और बहुत ही ज्यादा सावधानियां की जरूरत रहत है ये मौसम
0: बिल्कुल
1: में, चाहे देखो इंसान होवे और चाहे जानवर, तो सावधानियां अगर अपन रखत हैं तो मौसम सुहावनो हो जाते
0: सही कह रही, सही कह
1: हैं,
0: रही
1: तो
0: बिन्ना।
1: तभी अपन को हंसी खुशी से मतलब जी पाऊ थे वो मौसम में।
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल
1: जैसे ही परेशानियां आती हैं, सोई लगन लगत कि अरे राम बरसात, ऐसी बरसात आई कि हमारा जब समस्या आ गई, जब परेशानी हो गई।
0: बिल्कुल। और आपने इंसानों की बात करी तो हम जो भी बता दें कि अबे जो मौसम टीकाकरण को रहे थे, और टीकाकरण बिल्कुल वही तरीके से जो तरीके से इंसानों में होते हैं,
1: बिल्कुल भैया,
0: बच्चा पैदा होते तो अपन देखो खसरा को टीका लगवाओ तो अपन हर साल पल्स पोलियो को भी चलत है। तो ऐसा ही अगर पशुओं को रोगों को लंबे समय के लाने बचाने हैं तो टीकाकरण के लाने जो समय बड़ो उपयुक्त तो मानो जाते
1: बिल्कुल
0: और
1: भैया,
0: सरकार द्वारा करो भी जाते, और इनमें या तो निशुल्क करो जाते और या अगर पैसा लगत भी है तो बहुत नाम मात्र की शशि बिन्ना राशि लगत है।
1: बिल्कुल
0: तो पशुपालक भैया बिन्ना हरों को चाहिए कि बिल्कुल इनमें आनाकानी न करें, लापरवाही न बरतें, टालम टोल न करें, और अपने जितने भी पशु उनके पास हैं, पालतू पशु हैं, दुधारू पशु हैं, उनके बारे में विशेषज्ञों से जानकारी लेके और उनको जो है टीकाकरण के लाने लुआ जाके टीका उनको जरूर लगवा चाहिए।
1: बिल्कुल भैया, पशु चिकित्सक से सलाह लेने हैं, और जो अपने पशुओं को बीमारी हो रही हो या समस्या हो रही हो, नहीं भी हो रही हो, तो टीका जरूर लगवा लेना।
0: बिल्कुल बिन्ना। और अब
1: और
0: घड़ी कह रही है शशि बिन्ना के अनाज भाव बता दे जाए।
1: बिल्कुल भैया, तो गेहूं रहो है 2250 से 2645 रुपये प्रति कुंटल, चना 4670 से 5715 रुपये प्रति कुंटल, सोयाबीन 4300 से 7500 रुपये प्रति कुंटल, मसूर 4700 से 9095 रुपये प्रति कुंटल, मूंग 5805 से 6820 रुपये प्रति कुंटल, सरसों 5000 से 7200 रुपये प्रति कुंटल, मटर 2200 से 2300 रुपये प्रति कुंटल, बटरी रही 2720 से 3340 रुपये प्रति कुंटल, और तेवड़ा रहो 1900 से 3095 रुपये
0: प्रति
1: कुंटल।
0: कुंटल। और शशि बिन्ना अब हम मौसम की भी जानकारी दे देवे।
1: बिल्कुल भैया,
0: तो आज के मौसम की बात करें तो अधिकतम तापमान रहो 28.3 जो सामान्य से 3 डिग्री कम रहो, न्यूनतम तापमान रहो 23.6 जो सामान्य से 1 डिग्री कम रहो, आर्द्रता सवेरे की 95 और संजा की 91%, और कल की वर्षा की बात करें तो 14.7 मिलीमीटर भाई, आज भाई वर्षा 14.6 मिलीमीटर, और ए मौसम की अबे तक की कुल वर्षा की बात करें तो 182.3 मिलीमीटर रही। तो शशि बिन्ना इन्हीं सूचनाओं के संगे अब चलवे की बेरा हो गई है, तो सभी जनों से अपन अनुमति लेते हैं। सभी जनों को सतीश साहू
1: और शशि की
0: राम
1: राम, राम।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
3: अरे सुन तो,
4: मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को।
3: किसको?
4: अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं।
3: अच्छा ये बात है?
4: हाँ, क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या?
3: अब तो झट से बात हो जाती है।
4: ऐसा क्या?
3: हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया।
4: अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म?
3: हाँ।
4: तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है।
5: कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर

किसान वाणी, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम में 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। हम आपको बता दें, इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

0: इतिहास गवाह है। जब भी शादीशुदा मर्द का बीवी से फोकस हटाए।
1: अभी आपने ये जो गीत सुना, कार्यक्रम चित्रपट संगीत की ये पहली प्रस्तुति थी, और हम आपको बता दें ये गीत हमने चुना था मस्ती 4 फिल्म से। इस गीत को आवाजें दी थी मीट ब्रॉस, अमित गुप्ता और आदित्य जैन ने, और इसे लिखा था दानिश साबरी ने, संगीतबद्ध किया था मीट ब्रॉस ने।
2: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, जिस पर आप इस वक्त ट्यून किए हुए कार्यक्रम चित्रपट संगीत। और आइए कार्यक्रम चित्रपट संगीत का अगला जो गीत है उसे हमने चुना है द ट्रेन फिल्म से। इस गीत को आवाजें दी हैं के और मिथुन ने।

इस वक्त श्रोता हो आप अपने रेडियो सेट पर ट्यून किए हुए हैं अपना मनपसंद रेडियो चैनल आकाशवाणी सागर FM 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, साथ ही साथ आप अपने मोबाइल पर भी न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी हमारा आकाशवाणी सागर का लाइव प्रसारण सुन रहे हैं। और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत, और आइए इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं फाइटर फिल्म में विशाल मिश्रा, शिल्पा राव और विशाल ददलानी, साथ ही शेखर रावजियानी की आवाज़ों

102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आपके अपने रेडियो सेट पर आकाशवाणी सागर। और इस वक्त लीजिए कार्यक्रम चित्रपट संगीत में। अब हम आपको सुनवाते हैं डंकी फिल्म में अरिजीत सिंह की आवाज। इस गीत को लिखा है प्रीतम और संगीतबद्ध किया है शेखर राव जियानी और प्रीतम ने।

आपने चुना है अपने रेडियो सेट पर आकाशवाणी सागर एफएम एंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। हम आपको बता दें इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:20 हुए हैं। लीजिए अब आपकी खिदमत में पेश है कार्यक्रम संगीत सरिता।

कार्यक्रम संगीत संगीता की ये पहली प्रस्तुति, ये कव्वाली अभी आपने सुनी हनीफ आगरेवाला और उनके हमनवाओं की आवाज़ों में। इस कव्वाली को शब्द दिए थे शकील बदायूनी ने।

श्रोताओ, ये आकाशवाणी का सागर केंद्र FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। अभी आपने जो ये कव्वाली सुनी हनीफ आगरेवाला की आवाज़ में, इस कव्वाली को लफ्ज़ दिए थे कतील शिफाई ने। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए, अब हम आपको सुनवाते हैं ये गीत। गीत और संगीत, संगीत और आवाज़ शंकर महादेवन की है और गीत है जावेद अख्तर का।

Tık tık tık tık tık tık tık.

शुदा हुई आपके अपने रेडियो सेट पर आपका अपना पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी सागर एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज पर, जिस पर आप इस वक्त आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम संगीत सरिता का। और आइए कार्यक्रम संगीत सरिता में अब हम आपको सुनवाते हैं गुलाम अली की आवाज में अहमद फराज की लिखी हुई ये गजल।

और श्रोता इसी गजल के साथ कार्यक्रम संगीत सरिता यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब से थोड़ी देर में दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे समाचार संध्या।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया, कहा भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया, कहा इससे आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया, कहा 6000 हेक्टेयर से अधिक हरित रिज क्षेत्र को वन क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता, वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग का अगले 4 दिन में उत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। और नॉटिंघम में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के तीसरे मैच में आज भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।
1: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, एआई और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदुर तक फैली हुई है।
1: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक विकास को गति देने में भारतीय अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत 1 अरब से अधिक लोगों के सपनों को साकार करने वाला राष्ट्र है और ऊर्जा तथा कनेक्टिविटी से लेकर सेमीकंडक्टर विनिर्माण तक कई क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ओर भारत की यात्रा न केवल इंडोनेशिया बल्कि पूरे आसियान क्षेत्र के लिए प्रेरक शक्ति बन रही है। उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया विकास के लिए एक समान दृष्टिकोण साझा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मात्र 20 रुपए प्रति माह से शुरू होने वाली किफायती बीमा योजनाओं जैसी पहलों ने वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है। वहीं यूपीआई और एक्सप्रेसवे के तेज विस्तार ने भारत की अर्थव्यवस्था को रूपांतरित किया है और लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडोनेशिया द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ मित्रता का प्रतीक है।
1: आज सुबह ही मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। ये 140 करोड़ भारतीयों का यश है। ये भारतीय समुदाय के आप सभी साथियों का सम्मान है और सबसे बड़ी बात, ये पुरस्कार इंडोनेशिया और भारत की घनिष्ठ मित्रता का एक और प्रतीक है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी।
2: बेंगलुरु IIM वैश्विक स्तर पे ग्लोबल स्टैंडर्ड में QS रैंकिंग में 29th पोजीशन पे अभी है। एशिया की सूची में ये 5th नंबर पे है। इस प्रकार के एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को, भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विकरण करने में, इंटरनेशनलाइज करने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है, जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।
3: श्री गडकरी ने कहा कि वैकल्पिक ईंधनों के अधिक उपयोग से प्रदूषण कम होगा, ईंधन आयात में कमी आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रमुख परियोजनाएं देश में संपर्क व्यवस्था को मजबूत कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने जम्मू श्रीनगर मार्ग पर बन रही 36 सुरंगें, केदारनाथ रोडवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे देश के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिल रही है। श्री गडकरी ने यह भी कहा कि राजनीति सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का माध्यम होना चाहिए। शिवांकी रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने अगले 4 वर्षों में 6,300 हेक्टेयर हरित रिज क्षेत्र को पूर्णतः वन भूमि में विकसित करने और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है।
4: रिज के अंदर 70 से ज्यादा तालाब भी होंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी होंगे और यहाँ पर जितनी भी हमारी आर्कियोलॉजी की संरचनाएं हैं उसको भी हम सुरक्षित करेंगे।
0: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में 129 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू हो गए हैं। गृहमंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया।
5: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है विकसित भारत के लिए। विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान। उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं, जो एक गांव में काम करते हैं और गांव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
0: आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4,00,000 से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं।
6: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह योजना पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक स्थिति से प्रभावित व्यवसायों को तेजी से और बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान कर रही है। मंत्रालय ने बताया कि योजना ऋण देने वाली संस्थाओं को उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण देने के लिए जोखिम कम करने हेतु बनाई गई है। इससे व्यवसायों को नकदी प्रवाह में व्यवधान से उबरने और संचालन जारी रखने में मदद मिलती है। इसने वित्तीय संस्थानों को अधिक आत्मविश्वास के साथ ऋण देने में भी सक्षम बनाया है। इससे एमएसएमई के लिए अतिरिक्त ऋणों पर 100% और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए 90% गारंटी कवरेज प्रदान करके जरूरतमंद क्षेत्रों तक तरलता पहुंच सुनिश्चित होगी। वित्तीय सेवा विभाग ने योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में एक अभियान भी चलाया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों पर स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले बच्चों की दर में पिछले 3 वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने आज देश में स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना प्रणाली एजुकेशन प्लस 2025-26 की रिपोर्ट जारी की। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड को ताड़ीचेरला 2 कोयला ब्लॉक के सीधे आवंटन की घोषणा की। सहकारी संघवाद के महत्व पर उन्होंने कहा कि सिंगारेनी की वित्तीय स्थिति को सुधारने, बढ़ते कर्ज का सामना करने और घटते कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने इस निर्णय को मंजूरी दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। वायनाड के मेपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। एक रिपोर्ट।
7: केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा है कि वायनाड जिले में भूस्खलन स्थल पर बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 20 जून को ही सुरंग बनाने के काम के दौरान जमा हुई मिट्टी को हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ठेकेदारों ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया। घटनास्थल के लिए रवाना हुए राज्य के मंत्रियों ने कहा कि अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता भूस्खलन में फंसे लोगों को बचाना है। इस बीच मौसम विभाग ने आज वायनाड और पड़ोसी जिले कोझिकोड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कन्नूर और कासरगोड़ जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 4 अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पालरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: महाराष्ट्र में आज भी मॉनसून की तेज वर्षा के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़, भूस्खलन और यातायात बाधित रहा।
8: नासिक के घाट इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। रायगढ़ जिले में भी भारी बारिश जारी है, जिससे मुंबई गोवा हाईवे के कई हिस्सों में पानी भर गया है। हालात से निपटने के लिए NHAI ने हाईवे पर क्विक एक्शन टीम तैनात की है। घाट क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से नदियों और बांधों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने अगले आदेश तक मानसून टूरिज्म, ट्रैकिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स पर रोक लगा दी है। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक उत्तरी, आंतरिक, कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंघम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया। कहा, भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता। वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोता हो ये आपके अपने रेडियो सेट पर आपका अपना पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी सागर एफएम में 102.6 MHz पर हम आपको बता दें इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के ठीक 9 बजे हैं। लीजिए अब आपकी सेवा में प्रस्तुत है फिल्मी गीतों से सजा फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम मन चाहे गीत।

0: कार्यक्रम मनचाहे गीत की ये पहली प्रस्तुति आप समझ ही गए होंगे किस फिल्म से थी। जी हाँ, फिल्म का नाम था आन मिलो सजना। आवाजें थी लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और उनके साथियों की। इस गीत को लफ्ज़ दिए थे आनंद बख्शी ने और तर्ज बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। पसंद करने वाले आप सभी लोग थे। ये हमें मिला पत्र कंवर कॉलोनी बड़वाह से, प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूराज श्रीमाली। ये खत है रिंगिनी छत्तीसगढ़ से, दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। साथ ही एक पत्र और है आशा रेडियो श्रोता संघ मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से, अभिजीत गवाणकर राही, श्रीमती सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवाणकर, प्रणीता गवाणकर, अर्जुन गवाणकर, टुक टुक, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर महाराष्ट्र से वैशाली, शैलेश गवाणकर, सुमित गवाणकर, कुमारी धोनी गवाणकर परी। और ये खत हमें मिला है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत मध्य प्रदेश से, मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री।
1: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार तक। समय होता है सुबह 11 से 11:30 बजे तक।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: ये आपके अपने रेडियो सेट पर आपका अपना पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी सागर FM एंड 102.6 MHz पर। और हम आपको बताना चाहेंगे मनचाहे गीत कार्यक्रमों का आप लुत्फ ले रहे हैं। और आइए अगला गीत हमने चुना है, एक बार फिर आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और फिल्म का नाम है नगीना, आवाज मोहम्मद अजीज की। फरमाइश करता आप सभी लोग छत्रपति संभाजी नगर से, राजेश सावली पाटिल, राजीव राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, ये पत्र है। एक और पत्र है डोंगर गांव से, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से ये पत्र है। हरदेव मीका, बलविंदर बिरग, जैतिक बिरग, मीका बिरग। और साथ ही ये पत्र है आदर्श नगर मालोड से, राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी शर्मा, सौरव शर्मा, शायना शर्मा और निवान शर्मा।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, जिस पर आप इस वक्त ट्यून किए हुए कार्यक्रम मनचाहा गीत। और लीजिए, आपका मनचाहा गीत हाजिर है फिल्म दीदारे यार से, लता मंगेशकर।

पूरा शिवात्रि परिवार। ये पत्र सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से मिला है। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवरीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा मध्य प्रदेश से ये पत्र में मिला है। मोहम्मद रफीक पंवार, मोहम्मद साकिब पंवार, मोहम्मद हसनैन पंवार, बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनीता गंगराड़े, छोटू पूजा, रोशनी अजय और वामिका गंगराड़े, ग्राम छैगांव देवी जिला खंडवा से अशोक कुमार वाघे, वंदना वाघे, भूपेंद्र वाघे, झवर वाघे, तनुश्री आरोही और काना वाघे। सागर मध्य प्रदेश से राजेश तिवारी, दीनानाथ रावत, शिवम मिश्रा, आशा मिश्रा, डॉक्टर आयुष तिवारी, लड्डू अथर्व तिवारी, यशस्वी तिवारी, साथ ही राजेश मिश्रा और प्रदीप तिवारी। तो आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म दीदारे यार का ये गीत।

श्रोताओं, हम आपको बता दें इस वक्त आप अपने रेडियो सेट पर चुना है आपने आकाशवाणी सागर FM 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। और लीजिए कार्यक्रम मंचाए गीत के अंत में अब हम आपको सुनवाते हैं मेरे हमसफर फिल्म में लता मंगेशकर की आवाज, आनंद बख्शी के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का ये संगीत है। और अनुरोध करता आप सभी लोग हैं, पटेल नगर मालोड पंजाब से हमें ये पत्र मिला है, डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया। और ये पत्र है बेमेतरा से, छत्तीसगढ़ से सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत सारथी, वीरेंद्र ब्रजकांत सारथी, पैंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटाई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा दामिनी वर्मा छत्तीसगढ़ से, और यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से ये पत्र में मिला है, दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार, जितेंद्र, धर्मेंद्र मालाकार। ये इस कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति है।

और श्रोता, इसी के साथ कार्यक्रम मनचाहे गीत यहीं पर संपन्न होता है। हम आपको बता दें, आज का ये फरमाइशी फिल्मी गीतों का सफर आपने तय किया अपने रेडियो मित्र मासूम आलम के साथ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर एफ एम बैंड 102.6 MHz पर। रात्रि के 9:30 होने को हैं। अब से थोड़ी देर में मुंबई केंद्र से हम रिले करेंगे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

0: ये है विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हो, जब कर

0: जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
1: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक बहुत ही वरिष्ठ और अलबेले संगीतकार की। आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम नमन कर रहे हैं संगीतकार अनिल बिस्वास को।
1: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: अनिल बिस्वास का जन्म 7 जुलाई 1914 को बारीसाल ईस्ट बंगाल में हुआ था। आज ये जगह बांग्लादेश का हिस्सा है। अनिल बिस्वास के पिता थे जेसी बिस्वास। बहुत कम उम्र में बालक अनिल को संगीत का चस्का लग गया था। दिन रात वो संगीत के सुरों में खोए रहते थे। इसके अलावा एक और क्रांति हुई थी और वो ये कि बालक अनिल स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। वे जुगांतर पार्टी का हिस्सा बन गए थे और भारत के स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए 14 बरस की उम्र में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। जब वो जेल से रिहा हुए तो घर से केवल 5 रुपए लेकर कोलकाता भाग निकले। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था। कोलकाता आने के बाद उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। छोटे मोटे काम उन्होंने किए और आगे चलकर उनकी मुलाकात सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित पन्नालाल घोष से हुई। आगे चलकर अनिल बिस्वास की बहन पारुल घोष का विवाह पन्नालाल घोष के साथ हुआ था। यही वो दिन थे जब अनिल बिस्वास रंगमहल थिएटर से जुड़ गए। यहाँ वो एक्टिंग करते, गाने गाते और सहायक संगीत निर्देशक के तौर पर काम भी किया करते थे। इसके कुछ बरस बाद काजी नजरुल इस्लाम के लिए उन्होंने हिंदुस्तान रिकॉर्ड कंपनी की ओर से एक रिकॉर्ड भी तैयार किया था और इस तरह अनिल बिस्वास का खूब नाम हो गया था। फिर आया साल 1935। अनिल बिस्वास कोलकाता से

मुंबई की ओर रवाना हो गए। मुंबई में अनिल विश्वास ने फिल्म धर्म की देवी में संगीत दिया। सन 1936 में वो सागर मूवी टोन से जुड़ गए। ये सागर मूवी टोन रामानंद सागर के सागर आर्ट से बिल्कुल अलग है और इसके मालिक हुआ करते थे चिमन लाल देसाई। यहां अनिल विश्वास ने कई फिल्मों में संगीत दिया, जैसे डेक्कन क्वीन, हम तुम और वो, एक ही रास्ता और वतन वगैरह। उस जमाने में अनिल विश्वास का काम अच्छी तरह चल निकला था और इसकी वानगी कुछ इस तरह से कि साल 1940 तक आते आते अनिल दा ने 26 फिल्मों में संगीत दे दिया था। इनमें से कुछ हैं मनमोहन, एक ही रास्ता, बहन, औरत, जागीरदार और अली बाबा। इन्हीं दिनों में उन्होंने सुरेंद्र और वहीदन बाई से गवाया फिल्म अली बाबा में।

सन 1940 में आई फिल्म अली बाबा का ये गाना आपने सुना सुरेंद्र और वहीदन बाई की आवाजों में। इस गाने को लिखा था आह सीतापुरी ने। इसके बाद आया साल 1943। ये वो दौर था जब अनिल विश्वास हिमांशु रॉय और देविका रानी की बॉम्बे टॉकीज से जुड़ गए थे। सन 1943 में उन्होंने फिल्म किस्मत में संगीत दिया। अशोक कुमार और मुमताज शांति के अभिनय वाली ये फिल्म कोलकाता के रॉक्सी सिनेमा में 3 साल और 8 महीने चली थी और आगे चलकर फिल्म शोले ने इसका रिकॉर्ड तोड़ा था। फिल्म किस्मत के गाने बेहद लोकप्रिय हुए थे।

0: दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है, दूर हटो है दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है।
1: सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। पूरा देश अंग्रेजों को देश से खदेड़ने के लिए तत्पर था। फिल्म किस्मत का ये गाना युवाओं का एंथम बन गया था। ये गाना युवाओं की प्रेरणा था। जहां कहीं भी प्रभात फेरियां या जुलूस निकलते, नौजवान गाते, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। अंग्रेज सरकार इतनी खौफजदा और नाराज हो गई थी कि उन्होंने कवि प्रदीप और अनिल बिस्वास के नाम के वारंट तक निकाल दिए थे और इन दोनों कलाकारों को भूमिगत होना पड़ा था। फिल्म किस्मत में सिर्फ यही एक हिट गाना नहीं था। इस फिल्म का ये गाना सुनिए।

0: सो रहा है शोरगुल न मचा धीरे धीरे।
1: इस फिल्म में अनिल बिस्वास की बहन और सुप्रसिद्ध गायिका पारुल घोष ने ये मीठा गाना गाया था।

अनिल बिस्वास की खासियत ये है कि उन्होंने शास्त्रीयता का दामन कभी नहीं छोड़ा। उनके संगीत में आपको अतिरिक्त वाद्य बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ेंगे। जिन वाद्यों की जरूरत है बस वही वाद्य उनके संगीत में होते हैं। कभी पन्नालाल घोष की बांसुरी सुनाई देती है तो कभी पंडित राम नारायण का सारंगी। बड़े बड़े गुणी और माहिर शास्त्रीय संगीतज्ञों ने उनके लिए साज बजाए थे। महबूब खान के लिए अनिल बिस्वास ने 3 फिल्मों में संगीत दिया था। सन 1940 में आई थी औरत। आगे चलकर इसी फिल्म को दोबारा महबूब खान ने मदर इंडिया के नाम से बनाया था, लेकिन तब संगीत नौशाद का था। अनिल बिस्वास ने महबूब खान की अगली फिल्म में संगीत दिया, सन 1941 में आई बहन, और सन 1942 में फिल्म रोटी आई जो अनिल बिस्वास के संगीत से सजी थी। फिल्म रोटी में अनिल बिस्वास ने अख्तरी बाई फैजाबादी यानी बेगम अख्तर से गाने गवाए थे। सुनते हैं ये गाना।

अनिल विश्वास एक ऐसे संगीतकार हैं जिन्होंने कई गायकों के करियर को सहारा दिया, उन्हें पहला मौका दिया या उन्हें कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ाया। सुप्रसिद्ध गायक तलत महमूद को पहला ब्रेक सन 1949 में फिल्म आरजू में उन्होंने दिया था।

दरअसल तलत महमूद और अनिल बिस्वास से जुड़ी हुई एक घटना है। फिल्म आरजू के गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी और तलत महमूद बहुत ज्यादा दबाव और तनाव में थे, इसलिए अपनी आवाज की मशहूर लर्जिश के बिना गा रहे थे। उनकी आवाज का वो कंपन गायब था। अनिल बिस्वास ने तलत महमूद को डांटते हुए कहा था कि तुम्हारी आवाज का ये कंपन ही तुम्हारी खासियत है और इसे तुम्हें कभी छोड़ना नहीं है। फिल्म आरजू के जरिए तलत महमूद की गायकी की कामयाबी की यात्रा शुरू होती है। इसके बाद तलत महमूद ने अनिल बिस्वास के लिए कई गाने गाए।

सन 1940 में फिल्म औरत में अनिल बिस्वास ने जो गाना गाया था वो है ये।

वैसे इसके अलावा अनिल बिस्वास ने कई फिल्मों में गाने गाए हैं। विविध भारती के गानों के खजाने से फिल्म

0: सौतेला भाई के इस गाने का अंश सुनिए जिसमें अनिल विश्वास मन्ना डे के साथ गाना गा रहे हैं।
1: ऐसे का भरोसा न है वैसे का भरोसा, सच्चा है मेरे यार तो पैसे का भरोसा, कि पैसा ही मालिक पैसा ही दाता, पैसा ही तेरा यारम तो प्यारे।

1945 में फिल्म पहली नजर में मुकेश से उन्होंने ये गाना गवाया। इसे लिखा था आह सीतापुरी ने। मुकेश को कुंदनलाल सहगल की छाया से बाहर लाने में और अपनी आवाज का एक मुहावरा खोजने में बहुत मदद की थी अनिल बिस्वास ने। सुनते हैं पहली नजर फिल्म का ये गाना।

सन 1948 में फिल्म अनोखा प्यार के गानों की रिकॉर्डिंग के दौरान अनिल बिस्वास की मुलाकात मीना कपूर से हुई। सन 1959 में उन्होंने मीना कपूर से शादी कर ली।

लता मंगेशकर ने अपने कई इंटरव्यूज में ये कहा है कि अनिल बिस्वास ने उन्हें ये सिखाया कि गाना गाते हुए सांस का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से छिप कर सांस ली जाती है कि सुनने वाले को पता भी नहीं चलता गायक ने कब सांस ली और कब सांस छोड़ी। सन 1949 में जब लता मंगेशकर कामयाबी के पथ पर आगे बढ़ रही थी, अनिल बिस्वास ने फिल्म लाडली का ये गाना गवाया।

दिलचस्प बात यह है कि फिल्म फरेब के एक गाने की रिकॉर्डिंग से पहले अनिल विश्वास के घर पर दिलीप कुमार और अशोक कुमार किसी कारण से बैठे थे। महफिल चल रही थी। अनिल विश्वास ने अपने हारमोनियम पर ये गाना इन दोनों कलाकारों को गाकर सुनाया और पूछा कि इस गाने में महिला स्वर कौन होना चाहिए। दोनों ने तपाक से जवाब दिया कि ये गाना तो लता ही गा सकती हैं। जब पुरुष स्वर की बात आई तो दिलीप कुमार का कहना था कि ये गाना तलत महमूद से गवाया जाना चाहिए, लेकिन अनिल विश्वास ने कहा मैं ये गाना किशोर कुमार से गवा रहा हूं। दिलीप कुमार इस बात से सहमत नहीं थे, लेकिन अनिल विश्वास का कन्विक्शन और उनकी पहचान देखिए कि किशोर कुमार की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गाना कितना खिला।

मुकेश को न केवल अनिल विश्वास ने पहला मौका दिया बल्कि उनके करियर के कुछ यादगार गाने हैं अनिल विश्वास के नाम। फिल्म आराम का ये गाना।

अब सुरैया की बात कर ली जाए। सुरैया ने अनिल बिस्वास के लिए दो मशहूर गाने गाए हैं। एक है फिल्म जीत का ये गाना, जिसे लिखा प्रेम धवन ने।

हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि गोपाल सिंह नेपाली का लिखा गीत फिल्म गजरे, आवाज सुरैया की, साल 1948।

सन 1965 में फिल्म छोटी छोटी बातें का संगीत देने के बाद मुंबई से अनिल बिस्वास का मन उचाट हो गया था। वो दिल्ली चले आए और दिल्ली में आकाशवाणी के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के निदेशक बन गए। यहाँ उन्होंने कई समूह गान कंपोज किए।

भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास में अनिल बिस्वास की हैसियत फिल्म संगीत के एक पितामह सरीखी है। उन्हें हमारा विनम्र नमन।

0: आज की फनकार कार्यक्रम जो केंद्रित था संगीतकार अनिल विश्वास पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह और प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। रूठना एक शब्द नहीं है, रूठना एक सजा है। जब जिंदगी रूठ जाती है तो सजा बन जाती है जिंदगी। रूठी हुई जिंदगी को मनाना बहुत मुश्किल होता है। जिंदगी हरी भरी होती है, फूलों सरीखी मुस्कुराती है जिंदगी, लेकिन एक आंधी आती है और सारे फूल मुरझा जाते हैं। जिंदगी रूठ जाती है। प्यार दो लोग करते हैं, बेवफा दोनों नहीं होते हैं। फिर क्या होता है जो जिंदगी रूठ जाती है।

की भीड़ में कभी कभी सारे चेहरे अजनबी हो जाते हैं। ऐसे में सीधी सादी सड़क टेढ़ी हो जाती है, रास्ते नजर नहीं आते, चेहरे पर घिर आए उदासी परेशान करती है। जिंदगी को मुट्ठी में बंद कर उससे बतियाना चाहते हैं, लेकिन जिंदगी रेत की मानिंद सरकती जाती है। ऐसे में हम जिंदगी को बुलाते हैं, मनहार करते हैं।

रूठी हुई जिंदगी जब मान जाती है तो लम्हे मोती से चमक उठते हैं, दिल खिल जाता है, आंखों में प्यार बेशुमार होता है, खुशियों का खजाना बन जाती है जिंदगी जब जिंदगी खुश होती है।

मोहब्बत की इनायत सबको नहीं मिलती। जिन्हें मिलती है मोहब्बत, उनकी जिंदगी फूलों की झालर जैसी हो जाती है। जिंदगी का सफर आसान हो जाता है जब मिल जाता है किसी का भला सा साथ। नदी में तैरती कश्ती पर दो चाहने वाले एक साथ अपनी जिंदगी का सफर तय करते हैं। वे कांटों की परवाह नहीं करते, खुशनसीब होते हैं वे जिनकी जिंदगी मोहब्बत से भरी होती है।

0: कभी कभी।
1: कुछ लम्हे कभी बूढ़े नहीं होते, उन लम्हों पर अतीत की गर्द नहीं होती, न ही वो धूमिल होते हैं। वो लम्हे ताजी धुली आंखों की तरह चकमक रहते हैं। वो लम्हे बारिश में धुली पत्तियों की तरह हरे रहते हैं। कौन से लम्हे हैं वो जिन्हें हम अपनी पलकों की कोरों में सहेज लेते हैं।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहाँ कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनिए
3: कहिए
0: सुनिए एक खुशखबरी
3: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
4: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: मेरी रात।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा आदेश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।

रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं मंजू द्विवेदी, आप सभी को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति आवारगी इस एल्बम से, कैलाश खेर की आवाज, हसन रिजवी के बोल, संगीत नरेश परेश का,

0: यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोबो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने

इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान विंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज बहरीन के उप प्रधानमंत्री खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। कामराज पोर्ट 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला देश का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बन गया है। बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि यह उपलब्धि आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर है, जो भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देगा। श्री सोनोवाल ने कहा कि मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के विजन से प्रेरित होकर देश विश्व स्तरीय बंदरगाह बना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। गृह मंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है, जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। फीफा विश्व कप में अटलांटा में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और मिस्र के बीच राउंड ऑफ 16 का मैच चल रहा है। फिलहाल मिस्र 2-0 से आगे है। इसके बाद राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में वैंकूवर में स्विट्जरलैंड का सामना कोलंबिया से होगा। राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में बेल्जियम ने सिएटल में अमेरिका को 4-1 से हराकर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में भारत ने इंग्लैंड के साथ तीसरे T20 क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 12 ओवर में 3 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।